मीडियम वेव 188.32 यानी 1593 किलोहर्ट्स के साथ डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 3 जून सन 2026। सुबह के 5:56 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के भीतर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में बताया कि उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री भी होंगे और वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी।
1: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
2: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
1: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की भूमिका को खारिज कर दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने लंबित सीमा विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है।

0: है सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की दो दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। यह आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक नगरपालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों गुजरात ओडिशा राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली उत्तराखंड पश्चिमी उत्तर प्रदेश सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।
3: प्रातः बेला की आराधना वंदना।

आरंभ करते हैं देशभक्ति रचना से। मां की ममता का दूसरा रूप है हमारी धरती माता। आइए सर्वप्रथम प्रणाम करते हैं मां समान अपनी जन्मभूमि को।

प्रकृति परमात्मा का ही दूसरा रूप है और समस्त प्राणी इस प्रकृति का अंग। ईश्वर सदैव अपनी कृति को अपने नजदीक रखता है। बीज से पेड़ का पैदा होना, फिर उससे बीज बनना, ये सब प्रकृति के माध्यम से ही उस परमात्मा का चक्र है जिसमें हम सब शामिल हैं। आइए आराधना करें परमपिता परमेश्वर की।

सबसे अधिक तृष्णा मानव स्वभाव में ही पाई जाती है। फिर भी अचरज इस बात का है कि मनुष्य स्वयं को सबसे समझदार प्राणी कहता है। इसे हम क्या कहें, मानव का अतिरेक या प्रभु की लीला? लेकिन उसी परमेश्वर की आराधना हमें इस तृष्णा से, इस माया से विरक्त कर सकती है।

ये जीवन पथ अनिश्चित है, फिर भी हर कोई अपने लिए लंबी आयु की कामना करता है और प्रभु से यही प्रार्थना करता है। कितना अच्छा हो यदि प्राणी ये समझ जाए कि लंबी आयु के बजाय उसे उस परमात्मा से वे पल मांगने चाहिए जिनमें परमात्मा का साथ हो, उसका आशीर्वाद हो।

जीवन में हम सब सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन स्थायी सुख प्रभु चरणों की वंदना से ही प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य अपने कर्मों से, अपनी योग्यता से अपना भाग्य स्वयं बदल सकता है, क्योंकि उसके कर्म हरि नाम में आस्था से संस्कारित होते हैं और उसका भाग्य इन्हीं सद्कर्मों से बनता है।

0: आज के इस कार्यक्रम में आपने समूह स्वर में
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्रोताओं, अब आपको बता देते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। आपसे कुछ देर बाद 6:35 पर किसान भाई सुनेंगे एजेटू वेक्टर कल्चर का उपयोग, इस विषय पर जानकारी। 6:40 पर श्री रामचरितमानस गान का संगीतमय पाठ गायक शोभा जोशी और संगीत संयोजन सतीश भाटिया का होगा। 6:50 पर चिंतन। 7:20 पर हिंदी महकमे सलीम खान से उनका हिंदी काव्य पाठ। 7:30 पर फिल्म संगीत। 8:30 पर धारावाहिक गीत गाता का 11वां भाग शीर्षक शिवरूप दर्शन योग। 9:00 आप सुनेंगे लोक रंग में संगीता चौधरी के गाए हुए कुछ बुंदेली लोकगीत। 9:30 पर फिल्म संगीत में एक ही फिल्म से के अंतर्गत जानवर फिल्म के कुछ फिल्मी गाने हम आपको सुनाएंगे। 10:00 भोपाल से जिले की चिट्ठी। 10:05 पर प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन हम आपको सुनाएंगे।

10:30 पर आप सुनेंगे श्रोताओं के पत्रों, ईमेल और फेसबुक पेज पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। 11 बजे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति में, 12 बजे आपकी फरमाइश आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति में, 1 बजे महिला कार्यक्रम महिला सभा, इसमें बहनें सुनेंगी भुवनेश्वरी पाठक से उनकी कहानी संगिनी। 1:30 पर लोक संगीत आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की प्रस्तुति में, 1:45 पर सुगम संगीत आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति में। हमारी सांध्यकालीन सभा में शाम 5 बजे युववाणी में युवा साथी सुनेंगे जय कुमार प्रजापति से उनकी वार्ता, महिला सुरक्षा में युवाओं की सोच, साथ ही युवाओं के लिए होगी रोजगार सूचना। शाम 5:40 पर फिल्म संगीत, शाम 6 बजे भोपाल केंद्र से NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम, इसमें आज सुनेंगे भाग 1298। शाम 6:30 पर बुंदेली लोक गीतों का कार्यक्रम लोकधारा, कलाकार होंगे मीना गोड। शाम 7:20 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में हमारे ग्रामीण भाई सुनेंगे धारावाहिक अटकन चटकन का 9वां भाग, एक भेंट वार्ता होगी गहरी जुताई से किसानों को फायदा, विषय पर मस्तू पटेल से रविन्द्र कुमार प्रजापति की बातचीत। आज की सीख में जात पात को पावना जात पात में जाए। 8:00 भोपाल से सुर्खियों में, 8:15 पर रसावतरण में कवि गोष्ठी प्रतिभागी होंगी धीरेन्द्र सिंह परिहार, महेंद्र कुमार चौधरी और वीरेंद्र कुमार तिवारी। 9:15 पर दिल्ली से स्पॉटलाइट, 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से ही चर्चा का विषय है। 10 बजे आप सुनेंगे श्रोताओं के पत्रों, ईमेल और फेसबुक पेज पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। श्रोताओं आप AIR छतरपुर 1976@gmail.com

0: इस मेल पर हमें मेल करके अपनी फरमाइशें सुन सकते हैं। साथ ही आप डाक से भी ईमेल, डाक के माध्यम से भी खत और अपनी फरमाइशें हम तक भेज सकते हैं। डाक का पता है कार्यक्रम मन भावन द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी छतरपुर मध्य प्रदेश पिन 471001। साथ ही आकाशवाणी छतरपुर का फेसबुक पेज है आकाशवाणी छतरपुर, आप हैशटैग आकाशवाणी छतरपुर भी सर्च करेंगे, आकाशवाणी छतरपुर को फॉलो कर ले, आप अपने मैसेज उसमें कमेंट बॉक्स में लिख पाएंगे और सीधे सीधे आप अपनी फरमाइश हम तक पोस्ट कर पाएंगे। तो ऐसे आप सुन लेंगे अपनी फरमाइश की गाड़ी। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, सुबह 7:20 पर हिंदी महक में आज कवि होंगे सलीम खान, इनसे उनकी काव्य रचनाएं हम आपको सुनाएंगे। 7:30 पर फिल्म संगीत, सुबह 8:30 पर धारावाहिक गीत गाता का 11वां भाग शीर्षक विश्व रूप दर्शन योग, 9 आप सुनेंगे लोक रंग में संगीता चौधरी से उनके गाए हुए कुछ बुंदेली लोकगीत, 9:30 पर फिल्म संगीत में हम आपको जानवर फिल्म के कुछ फिल्मी गाने आज सुनवाएंगे, 10:05 पर प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन का 8वां भाग आप सुनेंगे, 10:10 पर सामुदायिक गान के प्रशिक्षण पाठ के क्रम में कन्नड़ भाषा के गीत का प्रशिक्षण पाठ होगा, गीतकार होंगे बीआर गीता, 10:30 पर श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद, और हमारे श्रोता मित्र इस समय AIR छतरपुर 1976@gmail.com यानी 10:30 से आपकी पसंद में अपनी फरमाइशें हमें भेजकर अपने ही पसंद के गाने सुन सकते हैं। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए खेती किसानी, आज का विषय है एजेटू वेक्टर कल्चर का उपयोग।
1: पंच भैया, आज हम अपन का जानकारी दे रहे हैं एजेटू वेक्टर जैव उर्वरक के बारे में। कौन सा भैया? एजेटू वेक्टर जैव उर्वरक, जो भी एक ऐसा उर्वरक है भैया कि जो स्वतंत्र जीवी नत्रजन का स्थिरीकरण कर दे थे, यानी कि खुद ही वातावरण में मौजूद जो नत्रजन है उखा पौधा की पत्तियों के माध्यम से अपने पौधा में जो गांठे बनाऊ तो उमे स्थिर करके फिर जमीन में पहुंचा दिए थे। तो ई की एक और विशेषता है भैया कि ई के 1 ग्राम जैव उर्वरक का अगर अपन लें तो ई में 10 करोड़ जीवाणु होते। कितने भैया? 1 ग्राम में 10 करोड़ जीवाणु। तो जो बहुत ही अच्छा और तेज उर्वरक है जैव उर्वरक, कोनो भी फसल बस दलहनी भरना हो दलहनी फसल खा छोड़ के कोनो भी फसल में ई जैव उर्वरक एजेटो वेक्टर को अपन उपयोग कर सकते हैं। ई किलाने वैज्ञानिक भैया ने जो बताओ है कि एजेटो वेक्टर जो जैव उर्वरक है ई की विशेषता जा है कि भैया 10 से लेकर 20% तक तो पैदावार बढ़ जात, और जो न अपने फल हैं या दाने हैं उनको जो प्राकृतिक स्वाद है वो बिल्कुल ज्यों को त्यों बनो रात। जो निया के अपन ने जैसे मान लो कछु किसान पंच रासायनिक खाद और रासायनिक दवाइयों को प्रयोग करते हैं तो उसे फलन को जो प्राकृतिक स्वाद है वो कछु अलग ही छो लगन लगत। अकेले भैया अगर अपन कछु एजेटो वेक्टर जैव उर्वरक को प्रयोग करें तो प्राकृतिक स्वाद अपन जाकोता मिले। ई को सबसे बड़ा फायदा एक और है कि ई के प्रयोग से 20% से लेकर 30% नाइट्रोजन नत्रजन जो कहू थे ई की भैया बचत करी जा सकते है, मतलब उनको कम उपयोग अपन करने पड़े। ई के प्रयोग करवे से भैया जो अपनो बीज है उनकी अंकुरण क्षमता बढ़ जात और ज्यादातर बीजन को जमाव हो जात, और अपनी जो फसल फल के रूप में अपन कम मिला थे वे स्वस्थ मिले, जड़न को विकास अच्छे हो गए और पौधा में बढ़वार भी अच्छी हो जाए। इन जो फसलन में अपन एजेटो वेक्टर उर्वरक को प्रयोग कर रहे उग फसल में भूमि से फास्फोरस को ज्यादा उपयोग कर लेती, जिसे उग भैया कल्ले भी जैसे गेहूं में करें अपन धान में करें अपन तो जो फसल में कल्ला फूटत वे बहुत ज्यादा मात्रा में फूटन लगत, जब कल्ले ज्यादा फूटे तो उत्पादन भी ज्यादा हो गए। जैव उर्वरकन के जीवाणु बीमारी फैलावे वाले जो रोगाणु होत उनका भी यह नष्ट कर देते हैं, जिसे कि अपनी फसल में बीमारियों से बचाव हुए और अपने पौधा के अंदर रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ा देते भैया। जो जो एजेटो वेक्टर उर्वरक है वो अपने पौधा के अंदर जाके रोग प्रतिरोधी क्षमता मतलब बीमारियों से लड़ावे की क्षमता बढ़ा देते भैया। ऐसे जैव उर्वरक को प्रयोग करने से जो जड़े हैं तना हैं

0: को खूब विकास हो, जिसे पौधा में तेज हवा, ज्यादा पानी सोखने की क्षमता और अच्छा उत्पादन, अच्छे फूल बढ़ जाते हैं। जे जो उर्वरक हैं, जे उर्वरक जे सस्ते आउत हैं, अकेले बस बीज में अपना उपचारित करके इका प्रयोग करने हैं। इमें जो सावधानी है वे भी यही है बीया के उखन जब अपन ई जैव उर्वरक से उपचारित करें तो अपन का 10-15 मिनट तक उखन छायरे में सुखा लेने है कि नहीं, धूप में नहीं जाने, ज्यादा गर्म स्थान पे नहीं रखने, नहीं तो ई के जो जीवाणु होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। इमें जब अपन का बीज उपचारित करने हैं तो उके लाने विधि वही है के अपनो पैकेट जो उनमें के एजेक्टिव वेक्टर जो उर्वरक अपन ले हो वो पैकेट का खोलें और अपने बीज में थोड़ा सा पानी छिड़क के और उके ऊपर डाल के 50 ग्राम गुड़ के संगे अच्छी प्रकार से उनको घोल तैयार करें। अच्छी बढ़िया साफ जांगा में जहाँ बीज डालें उके ऊपर से इको छिड़काव कर देवे, फिर बीज का अच्छी तरह से उल्टे पलटे, जिसे के जो भी बीज अपन बह रहे उके ऊपर ई एजेक्टिव वेक्टर जो उर्वरक की अच्छी परत जम जाए तो निश्चित है कि अपन का फसल में अच्छा उत्पादन जरूर मिले।
1: हमारे किसान भाई अभी सुन रहे थे एजेटिव वेक्टर कल्चर का उपयोग, इस विषय पर जानकारी। तो हमारे किसान भाई और हमारे जो बहने हैं किसान बहने, वो जरूर एजेटिव वेक्टर कल्चर का उपयोग करके अपनी कृषि में अधिक से अधिक उत्पादन ले सकेंगे। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर जो आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान का संगीतमय पाठ। आज 10वीं कड़ी हम आपको सुना रहे हैं, गायक शोभा जोशी और संगीत संयोजन सतीश भाटिया का है।

श्री रामचरितमानस के आरंभ में देवताओं, संत, असंत तथा वाल्मीकि जैसे सरस्वती पुत्रों की वंदना के पश्चात तुलसीदास जी ने श्री राम के भक्तों, बंधु बांधवों, सहयोगियों आदि की अभ्यर्थना की है और उसके बाद किया है प्रभु के नाम की महिमा का गान। राजा जनक, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, पवन पुत्र हनुमान, सुग्रीव, जामवंत आदि की वंदना कर भक्त कवि ने अपने आराध्य के चरणों में मस्तक नवाया है। उन्होंने माता सीता को भी प्रणाम निवेदित किया है। श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करते हुए र, आ तथा मां अक्षरों में उन्हें ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के दर्शन हुए हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान का संगीतमय पाठ। आज कलाकार थी गायक शोभा जोशी और संगीत संयोजन सतीश भाटिया का। जो आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है, लीजिए प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: विचारों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। विचारों में बड़ा जादू है, वो हमें उठा भी सकता है और गिरा भी सकता है। अपने सुख दुख हानि लाभ उन्नति अवनति सफलता असफलता सभी हमारे अपने विचारों पर ही निर्भर करते हैं। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है। अच्छे विचारों से मनुष्य के गुप्त मन, उसके वर्तमान जीवन और उज्ज्वल भविष्य का निर्माण होता है। विचारवान मनुष्यों के लिए सचमुच इस संसार में कोई कठिनाई नहीं है। शोक दुख चिंता और भय का एक कण भी उन तक नहीं पहुंच पाता। प्रत्येक दशा में वे प्रसन्नता संतोष और सौभाग्य का अनुभव करते रहते हैं। सच पूछा जाए तो स्वर्ग नर्क कहीं अन्यत्र ही है, इनका निवास हमारे विचारों में ही है। संत कल्प वृक्ष है, इसकी छाया में बैठकर हम जो भी विचार करते हैं या करेंगे वैसा ही परिणाम प्राप्त होगा। जो भी अपने आप को सत विचारों से भरे रखते हैं वे पग पग पर जीवन के महान वरदानों से विभूषित होते हैं। सफलता महानता सुख शांति प्रसन्नता के परिणाम उन्हें मिलते हैं। इसके विपरीत जो अपने आप में दीन हीन अभागा और बदनसीब समझते हैं उनका जीवन भी दीन हीन बन जाता है। तभी कहते हैं ना कि अशुभ सोचो न दोष ढूंढो न अंधकार में भटको। मनुष्य को वैसा ही मिलता है जैसे उसके विचार होते हैं। विचारों की शक्ति को समझो क्योंकि वे ही हमें अपने प्रवाह के अनुरूप चलने के लिए बाध्य करते हैं। सद्विचार और सत्कर्म ही जीवन का राजपथ है। पवित्र विचारों से ओतप्रोत व्यक्ति की ईश्वर और प्रकृति के नियम सहायता करने लगते हैं। मनुष्य का विचार एवं मनोबल एक प्रकार का कल्प वृक्ष ही है। मनुष्य के विचार ही उसे अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाते हैं। विचार शक्ति व्यक्तित्व को निखार देती है। उत्कृष्ट विचार व्यक्ति को शिखर पर ले जाते हैं। पुस्तकें पढ़ने से विचार परिपक्व होते हैं, वहीं सत्संग से विचारों में दृढ़ता आती है। विचारों के प्रभाव से व्यक्ति का समग्र विकास होता है। अच्छे विचार आदमी को नए पथ दे सकते हैं। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं विचारों की ऊर्जा से ही उनकी महानता प्रकट हुई है। परमार्जित विचारों से ही परम तत्व की अनुभूति होती है। सुविचारों से मन विनम्र और पवित्र होता है। विचारों की शक्ति शब्दों की अभिव्यक्ति को निखार देती है। विचारों से ओतप्रोत ज्ञान का हर पहलू कल्याणकारी होता है। विचार जब आत्मविभोर करते हैं तो जीवन फूलों की मानिंद सुरभित होता है। आत्मविश्वास की यात्रा उत्तम विचारों से पल्वित होती है। विचारों की कसौटी पर व्यक्तित्व की परख होती है। अच्छे विचार सद्गुणों का पोषण करते हैं। आत्मनियंत्रण की प्रेरणा उत्तम विचार

0: उल्लेखनीय है कि व्यक्तित्व के उत्थान में विचारों की अहम भूमिका है। विचार जीवन को धीर और गंभीर प्रशांत बनाते हैं। जीवन के संग्राम में दृढ़ विचार एक ढाल के मानित रक्षक सिद्ध होते हैं। वैचारिक क्रांति से जीवन कुंदन सदृश हो जाता है। विचारवान व्यक्ति अहिंसक और धैर्यवान होता है। बाधाएं उसके पथ से हटने को विवश हो जाती हैं। विचारों की मोतियों की आभा से जीवन में आशा का संचार होता है। सुंदर विचारों की छाती से जीवन की बगिया महक जाती है। जो विचार करने के पश्चात पथ पर पग धरता है वो ठोकरों की संभावना को टाल देता है। तभी तो कहा जाता है कि जो विचार करके करते हैं वो शूर हैं और जो करके विचारते हैं वो धूर हैं। अतः अपने विचारों की धरोहर को सहेज कर रखें। अपने विचार श्रृंखला को कलुषित कदापि न होने दें, क्योंकि उत्तम पवित्र विचारों से जो लाभ तथा हानिकर विचारों से जो हानि होती है उसका ज्ञान साधारण मनुष्यों को बहुत कम होता है और विशेषकर अपढ़ लोगों में तो उसका ज्ञान शून्य के बराबर होता है। इसीलिए संसार में असंख्य लोग जीवन में परेशानी का अनुभव कर रहे हैं। सलोमन नामक एक बड़े विद्वान के कथन में भारी सत्यता है। वे कहते हैं कि मनुष्य अपने मन में जैसे स्थायी भाव रखता है, नित्य प्रति जैसा सोचता है, सोचा करता है, वो क्रमशः वैसा ही बन जाता है। प्रत्येक विचार उसके मन के सूक्ष्म केंद्रों का निर्माण करता है।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। श्रोताओं, आज के चिंतन में विचारों पर आपने महत्वपूर्ण जानकारी ली और अब हम उम्मीद करते हैं हम सभी अपने विचार बहुत अच्छे रखेंगे। इसी के साथ ही चिंतन अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से होंगे।

0: सूर्यकान्तः गतवासरे सर्वोच्च न्यायालयस्य पञ्च न्यायाधीशेभ्यः पदगोपनीयतायै प्रतिश्रावितवान्। न्यायमूर्तिः शीलनागो, श्रीचन्द्रशेखरः, संजीव सचदेवा, अरुणपल्ली, वरिष्ठाधिवक्त्री वी मोहना च सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशत्वेन शपथवचनं स्वीकृतवन्तः। अवधेयं यत् केन्द्रेण सर्वोच्च न्यायालयीय न्यायविद समितेः अनुशंसाम् आलक्ष्य एव एतेषां नियुक्ति विषयणे स्वीकृतिः दत्ता। राष्ट्रिय पंचायत पुरस्कार समारोहः अद्य नवदिल्ल्याम् आयोजयिष्यते। एते पुरस्काराः देशस्य द्विचत्वारिंशत् संख्याकेभ्यः उत्कृष्ट पंचायतेभ्यः प्रदास्यन्ते। समारोहावसरे दीनदयालोपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कारः इत्यस्यां श्रेण्यां चतुस्त्रिंशत् ग्राम पंचायतेभ्यः, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार श्रेण्यां च अष्ट पंचायतेभ्यः पुरस्काराः प्रदास्यन्ते। भारतीयर्थ विभागेन सूचितं यत् अद्य कर्णाटकस्य आभ्यन्तरीणेषु भागेषु, केरल माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कराईकलेषु च तीव्रवृष्टिः भविष्यति। आगामि दिवसद्वयपर्यन्तं हरियाणा, चण्डीगढ़, दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमोत्तर प्रदेशेषु तीव्र झंझावातेन सह गर्जनस्य, तडितपातस्य च संभावना वर्तते। अन्ते क्रीडावार्तासु, महिलानां अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडा मालिकायां गतरात्रौ इंग्लैण्ड देशस्य टाउनटन नगरे काउंटी क्रीडांगणे आयोजिते तृतीये अन्तिमे च द्वन्द्वे इंग्लैण्डेन भारतं षड्भिः क्रीडकैः पराजितम्। इत्थम् इंग्लैण्डेन 2-1 इत्येतेन स्पर्धान्तरालेन श्रृंखला जिता। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने वेनेजुएला के ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश किया है। इस यात्रा से भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक, नगरपालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने असम के मूगा रेशम के लिए मिशन स्नेहजोरी का शुभारंभ किया। ये पहल असम के विशिष्ट मूगा रेशम उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। सूरत के बारडोली कस्बे के पास कल महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन की 2 बसों की टक्कर में 8 लोगों की मौत और 15 से अधिक लोग घायल हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक

0: मृतक के परिजन को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अध्यक्ष निर्वाचित होने पर डॉ खलीलुर रहमान को बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने तथा बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान घोषणा की गई थी। तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, will be on a 4-day visit to India beginning today. She will be accompanied by a high-level delegation, including ministers of foreign affairs, economy and finance, and science and technology. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said Ms. Rodriguez will hold bilateral discussions with Prime Minister Narendra Modi during her visit. The discussions will be focused on exploring avenues of cooperation in the areas of trade, investment, energy, renewable energy, healthcare and pharmaceutical. Senior Congress leader D.K. Shivkumar will be sworn in as Chief Minister of Karnataka today. Governor Thavarchand Gehlot will administer the oath of office and secrecy to Mr. Shivkumar and members of the new cabinet at Lok Bhavan in Bengaluru at 4 p.m. Mr. Shivkumar's appointment comes days after Mr. Siddaramaiah stepped down as Chief Minister, paving the way for his deputy to take over the post. West Bengal government will launch a major social welfare initiative, Annapurna Yojana, today. Chief Minister Suvendu Adhikari will formally inaugurate the scheme. The launch will be a massive synchronized event spanning the entire state. While the Chief Minister leads the central inauguration, beneficiaries of the Annapurna Yojana will participate virtually across all blocks, municipalities and municipal corporations. The centre has signed Memorandum of Understanding with 4 states under the Jal Jeevan Mission 2.0 to enhance safe drinking water supply across rural India. The agreement has been signed with Arunachal Pradesh, Jharkhand, Tamil Nadu, Nagaland and Union Territory of Puducherry. The Ministry of Jal Shakti said the reform-linked MOU promotes a Gram Panchayat-led, service-based and community-centred approach to rural water governance. The initiative, aligned with the objectives of Jal Jeevan Mission 2.0, aims to ensure that every rural household has access to quality drinking water supply in adequate quantity on a regular basis through strengthened community participation. The government has invited nominations for the Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar 2026. The last date for submission is 31st of July. The prestigious award is conferred by the President on children who have made exceptional contributions in various fields including bravery, social service, environment, sports, art and culture, and science and technology. The Ministry of Women and Child Development informed that nominations from any citizen will be received only through the National Awards Portal on awards.com.

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में जनजातीय गरिमा उत्सव का शुभारंभ करेंगी। प्रदेश में पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को सिला हुआ गणवेश मिलेगा, प्रदेश कैबिनेट ने लिया गया निर्णय। रक्षाबंधन से पहले प्रदेश में चलेंगी सरकारी बसें, शुरुआत इंदौर से होगी। और प्रदेश में मानसून 20 से 22 जून के बीच दस्तक दे सकता है। अब समाचार विस्तार से। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और परियोजनाओं को मजबूत बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअली उद्घाटन भी करेंगी। विदेश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। प्रदेश के सभी शासकीय शालाओं में कक्षा पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को अब सिला हुआ गणवेश प्रदान किया जाएगा। यह निर्णय कल मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि जनकल्याण और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए 21,485 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। वहीं प्रदेश में स्वामित्व योजना में जिन भूखंडधारियों के अधिकार अभिलेख निर्मित किए गए हैं, उन्हें आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए इन निर्मित अधिकार अभिलेखों का पंजीयन कराया जाए। इसके लिए डीड ऑफ कन्वेंस का निष्पादन और पंजीयन किया जाएगा, ताकि नागरिक आवश्यकता अनुसार गृह निर्माण, व्यवसाय एवं कृषि संक्रियाओं आदि के लिए ऋण प्राप्त कर अपनी आजीविका एवं आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना सकें। मंत्री चैतन्य कश्यप ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लेकर भी जानकारी दी।
1: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता के बारे में जनसंघ के कैंप और इसके विभिन्न स्तरों के ऊपर प्रचार माध्यम से इसमें जो सुझाव चाहिए जनता के वे सारे लेने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। इस कार्य को पूर्ण करके मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता को हम आगे कदम बढ़ाएंगे।
0: प्रदेश में रक्षाबंधन से पहले सरकारी बसें सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल भोपाल में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत बसें शुरू करने की तैयारी जोरों पर है, ताकि रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों के घर आसानी से पहुंच सकें। बसों की शुरुआत पहले इंदौर से की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी और दूरदराज के इलाकों में अब भी लोग जान जोखिम में डालकर लोडिंग वाहनों से सफर करने को मजबूर हैं, और ये सेवा उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक यात्रा का विकल्प प्रदान करेगी।
2: आवागमन के साधनों के लिए बसों का इंतजाम करना ये हम सबकी जवाबदारी है। हमारी सरकार के गठन के समय हमने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की जो घोषणा की थी, अब धीरे धीरे करके हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। इस साल का रक्षाबंधन बहने अपनी बसों से जाएगी, ये प्रयास कर रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे इस सेवा के माध्यम से राज्य के अंतर्वर्ती बाकी राज्यों के साथ भी इसका संबंध जोड़ते हुए यात्री परिवहन सेवा के रूप में आएगा।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में मानसून की तैयारियों की समीक्षा की। मौसम विभाग ने इस साल मानसून के सामान्य से कम यानी करीब 90% रहने और अलनीनो का असर पड़ने की आशंका जताई है। श्री चौहान ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि जिन इलाकों में कम बारिश की आशंका है, वहां वैकल्पिक फसलों, सूखा सहनशील बीजों और जल प्रबंधन की पूरी तैयारी रखी जाए। भोपाल के चर्चित तुषार शर्मा संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई की 5 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद पूर्व जज गिरबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को कल विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजते हुए 16 जून तक भोपाल सेंट्रल जेल में रखने का आदेश दिया है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर पेश है एक विशेष रिपोर्ट।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गाँव तक पहुँच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। इस बार का वैश्विक अभियान जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित है और इसकी मेजबानी अजरबैजान कर रहा है। प्रदेश में भी इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भारत की डिजिटल पेमेंट व्यवस्था में यूपीआई ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। मई 2026 में यूपीआई के जरिए 23.2 अरब यानी करीब 2312 करोड़ लेनदेन हुए, जिनकी कुल कीमत लगभग 30 लाख करोड़ रुपए रही। इसका मतलब है कि हर रोज औसतन 73 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन यूपीआई के जरिए हुए हैं। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेब्स ओटीटी की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्ष से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना

और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि यह भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाली स्वदेशी डिजिटल प्लेटफार्मों को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में नौतपा के दौरान मौसम ने पूरी तरह करवट ले ली है। पिछले 8 दिनों से प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है, जिसके चलते गर्मी और लू का प्रभाव लगभग समाप्त हो गया है और न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में फिलहाल प्री मानसून गतिविधियां सक्रिय हैं। टर्फ लाइन और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई इलाकों में बारिश हो रही है। विशेषज्ञों के अनुसार इस बार मानसून 20 से 22 जून के बीच प्रदेश में दस्तक दे सकता है। अब रुख करते हैं क्रिकेट का। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल रात टॉन्टन में खेले गए तीसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय महिला टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 180 रन बनाए थे। जवाब में इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले में महिला स्व सहायता समूहों ने गेहूं उपार्जन अवधि में 7,712 किसानों से 5,27,000 क्विंटल से अधिक गेहूं की खरीदी की। खंडवा में कल युवा संगम रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जाएगा। झाबुआ कलेक्टर ने जिले के रामा में सचिवों और पटवारियों की कल बैठक ली और डिंडौरी में जल संचय जन भागीदारी अभियान के अंतर्गत 8 लाख से अधिक स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में जनजातीय गरिमा उत्सव का शुभारंभ करेंगी। प्रदेश में 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को सिला हुआ गणवेश मिलेगा। प्रदेश कैबिनेट ने लिया निर्णय। रक्षाबंधन से पहले प्रदेश में चलेंगी सरकारी बसें। शुरुआत इंदौर से होगी और प्रदेश में मानसून 20 से 22 जून के बीच दे सकता है दस्तक। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर जी आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है हिंदी महक। हिंदी महक में हिंदी काव्य पाठ हम आपको सुना रहे हैं, कवि हैं सलीम खान।
1: लीजिए आपकी खिदमत में पेश है मेरी लिखी हुई कुछ गजलें। एक गजल का मतलब हाजिर है कि

उसी ने आज अपने दम पे ये दुनिया हिला दी है। उसी ने आज अपने दम पे ये दुनिया हिला दी है। कि गजब है तू मेरी जानम,

और ये शेर भी देखें कि तुम्हारे खत वो सूखे फूल जो थे पास में मेरे, तुम्हारे खत वो सूखे फूल जो

आज दरिया में बहा दी है। और ये आखिरी शेर देखें कि मुसीबत में दिया है साथ अक्स

भी है। लीजिए शकीरम में एक और गजल हाजिर है आपके सामने। गजल का मतलब हाजिर है, उस गीत उस गजल का ही पैकर बदल गया, उस गीत उस गजल का ही पैकर बदल गया, उस गीत उस गजल का ही

बदल गया, जब लिखते लिखते मुझसे एक अक्षर बदल गया, जब लिखते लिखते मुझसे एक अक्षर बदल गया। और शेर देखें जिस

की दुआ। उस दिन से मेरा दोस्त मुकद्दर बदल गया, उस दिन से मेरा दोस्त मुकद्दर बदल गया। और ये शेर देखें खास तौर से, किसो

गया। और ये आखिरी शेर देखें कि एक दौर था मिलते थे गले सब खुशी खुशी, एक दौर था मिलते थे गले सब खुशी खुशी, एक दौर था मिलते थे गले सब

रंग वो बदला जब तो बद से भी बदतर बदल गया, बदला जब तो बद से भी बदतर बदल

और ये मक्ता का सिर देख साहब, कि था एक ही दुनिया में मेरा दोस्त ऐ सलीम, था एक ही दुनिया में मेरा दोस्त।

0: जल गया। उस गीत उस गजल का ही पैकर बदल गया, जब लिखते लिखते मुझसे एक अक्षर बदल गया।
1: अभी आप सुन रही थी हिंदी महक में सलीम खान से उनका काव्य पाठ। यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है, लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। सबसे पहले मेरे सनम फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीतकार ओपी नैयर।

0: पुकारता चला हूँ मैं। मेरे सनम फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, बजरू सुल्तानपुरी की बोल, संगीतकार ओपी नैयर। श्रोताओ आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम। हम यहाँ रुकते हैं एक अंतराल के लिए।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह।
2: फसा अनजान ऐप से बचें।
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से फिल्म संगीत का प्रसारण किया जा रहा है। आइए श्रोताओं अब आपको सुनाते हैं पतिता फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार बप्पी लहरी।

0: पतिता फिल्म का गाना अभी आप फिल्म संगीत के इस क्रम में सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज़ में, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार बप्पी लहरी। आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। हम यहाँ सुनते हैं अब आकाशवाणी संदेश।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: फिल्म संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए नदिया के पार, इस फिल्म का गाना शमशाद बेगम मोहम्मद रफी की आवाज में, और इस गाने में संगीतकार हैं सी रामचंद्र।
2: नन्नी सी जान में

0: नशे में है दर्द क्यों?
1: हाँ आप कहे कोई, नशे में है दर्द क्यों?
2: ये इसलिए के जिंदगी

0: मैं क्यों?
1: हाँ भाई, फिर ये बेबसी क्यों?
2: ये इसलिए के इश्क का इजहार किया जाए।

0: मस्त निगाहों में परेशानियां हैं क्यों, बेताब दो दिलों में यूं जवानियां हैं क्यों।
1: जरा कहना तो, ये फिर क्यों?
2: ये इसलिए

अभी आप सुन रहे थे नदिया के पार फिल्म का ये गाना। इसमें आवाज शमशाद बेगम और मोहम्मद रफी की थी। हम रुकते हैं ये एक संदेश के लिए।

AIR at 90। फिल्म संगीत के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको सुनवा रहे हैं नमकहा लाल फिल्म का ये गाना आशा भोसले की आवाज में। गीतकार अनजान, संगीतकार बप्पी लहरी।

अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले के स्वर में नमक हलाल। इस फिल्म का गाना अनजान ने गाने को लिखा और बप्पी लहरी ने संगीत दिया। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम। लीजिए अब सुनिए जवाब हम देंगे इस फिल्म का गाना। और इस गाने में आवाजें हैं शब्बीर कुमार, कविता कृष्णमूर्ति की, गीतकार है समीर और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अभी आप सुन रहे थे शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में जब आप हम देंगे इस फिल्म का गाना, अनजान के बोल संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, माफ कीजिए समीर के बोल थे संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और इसी के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है समाचार प्रभात। कुछ पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार आज दोपहर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रूपये की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
4: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डी के शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डी के शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: पहले चरण में लाभार्थियों को बैंक खाते में आज से ही 3,000 रूपए भेजना शुरू होगा। इस

0: योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावनाएं है। नवन्नो में दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पल उपस्थित रहेंगी। साथ ही राज्य की सभी ब्लॉक नगर पालिकाएं और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका से जुड़ा रहेगा। पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। उद्घाटन के बाद प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका क्षेत्र में चुने गए 100 अन्नपूर्णा योजना लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र प्रदान किया जाएगा। काशफिन नाहर, आकाशवाणी संवाद, कोलकाता।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
3: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
2: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
4: लगभग 1 साल दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का भी सलाह है कि जन औषधि से दवाई खरीदें।
2: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यसमूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत

0: न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य चुनाव आयोग की दो दिन की उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त शांत मनु करेंगे। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI को धीरे धीरे समाप्त करने और उसकी जगह एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय देश की मुद्रास्फीति और मूल्य निर्धारण डेटा संरचना को आधुनिक बनाने और इसे वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप बनाने के लिए लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने की मंजूरी दी गई है। संशोधित थोक मूल्य सूचकांक और नया उत्पादक मूल्य सूचकांक 15 जून को जारी किया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा है कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क बढ़ेंगे और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। और बात खेलों की, तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक केरलम और माहे में अत्यधिक वर्षा का अनुमान भी व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद विशाल। CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बीच केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई, आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, CBSE चेयरमैन और सचिव हटाए गए, OSM टेंडर की जांच के लिए समिति गठित, 1 महीने में देगी रिपोर्ट। वहीं जनसत्ता ने लिखा है, पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर हमला, CBSE ने कहा सेवाओं को बाधित करने का प्रयास। नेपाल से सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की भूमिका का सवाल ही नहीं, विदेश मंत्रालय का ये बयान दैनिक जागरण में है। विवाद सुलझाने में चीन और ब्रिटेन को शामिल करने की नेपाल की मांग, भारत ने की खारिज। शिक्षा की शक्ति से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें युवा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये आह्वान वीर अर्जुन में है। एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा, जब युवा शिक्षा और प्रौद्योगिकी की शक्ति के बल पर आगे बढ़ेंगे तो एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में टूट की आशंका को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने लिखा है, तृणमूल के 50 विधायकों का बगावती रुख, विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं प्रस्ताव। इस खबर पर राजस्थान पत्रिका ने संपादकीय में लिखा है, राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं

0: ready to launch Annapurna Yojana to provide 3,000 rupees every month to eligible women in the state today. Bangladesh Foreign Minister Khalilur Rahman, elected President of 81st Session of UN General Assembly, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar congratulates him. And in women's cricket, hosts England beat India by 6 wickets in third and final T20 International to seal 3-match series 2-1. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर जी आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए धारावाहिक गीत गाता का 11वां भाग। आज का शीर्षक है विश्व रूप दर्शन योग।
2: मैं पूरे विश्व को एक अंश से धारण कर स्थित हूँ। भगवान के इस उद्गार के बाद अर्जुन द्वारा उनके प्रत्यक्ष दर्शन की इच्छा तथा भगवान द्वारा विराट स्वरूप दर्शन की कृपा, ये वर्णन है विश्व रूप दर्शन योग नाम के 11वें अध्याय में।

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए समूह स्वर में देश का।

समूह स्वर में गाए हुए इसी देशभक्ति पूर्ण मातृ वंदना के साथ ही देश गान अब सम्पन्न हुआ। हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रही हैं। सुबह के 9 बजे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है बुंदेली लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आज हमारी कलाकार हैं संगीता चौधरी। संगत कर रहे हैं ढोलक पर देवेंद्र कुमार, बैंजो पर है मदन सेन, बांसुरी पर है मनोज। सबसे पहले ये सोहर, कलाकार हैं संगीता चौधरी।

0: अभी आप सुन रहे थे संगीता चौधरी के स्वर में ये सोहर। आप सुन रहे हैं लोक रंग, कलाकार हैं संगीता चौधरी। हम यहाँ रुकते हैं कंत्राल के लिए।
1: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
2: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।

0: आकाशवाणी एट 90
1: लोक रंग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको सुना रहे हैं ये गहलाई। कलाकार हैं संगीता चौधरी।

0: अभी आप सुन रहे थे चेतावनी संगीता चौधरी के स्वर में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से लोक रंग और आज हमारी कलाकार हैं संगीता चौधरी। हम रुकते हैं एक अंतराल के लिए।
1: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
2: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
0: लोक रंग कार्यक्रम में आज कलाकार हैं संगीता चौधरी। आइए सुनते हैं संगीता चौधरी के स्वर में ये माता रानी का देवी गीत।

0: माता रानी का देवी भजन अभी आप सुन रहे थे संगीता चौधरी के स्वामी। आप सुन रहे हैं लोक रंग आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से एक चेतावनी आपको सुनवाते हैं, इसमें आवाज संगीता चौधरी की है।
1: अरे कि कैसो आओ जमानो रे, कि कैसो आओ जमानो।

इसी चेतावनी के साथ ही लोक रंग कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज हमारी कलाकार थी संगीता चौधरी, संगत कर रहे थे ढोलक पर देवेंद्र कुमार, बैंजो पर मदन सेन और बांसुरी पर मनोज। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए एक ही फिल्म के अंतर्गत फिल्म संगीत में फिल्म जानवर के कुछ फिल्मी गाने। श्रोताओ, जानवर फिल्म 24 दिसंबर 1999 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक बेहतरीन फिल्म है और इस फिल्म में अभिनय किया अक्षय कुमार, करिश्मा कपूर, शिल्पा शेट्टी, मोहनीश बहल, शक्ति कपूर, आशीष विद्यार्थी और आशुतोष राणा ने। अगर हम बात करें इस फिल्म के यानी जानवर फिल्म के गीतों की तो इन गीतों में संगीत दिया आनंद मिलिंद ने और इस फिल्म के गीत लिखे समीर ने। और ये फिल्म सुनील दर्शन द्वारा निर्देशित और निर्मित एक भारतीय थ्रिलर फिल्म है जिसकी कहानी रॉबिन भट्ट और के सिंह ने भी लिखी हुई है। फिल्म में बहुत अच्छी भूमिका निभाई हुई है कि कैसे एक व्यक्ति एक जानवर के रूप में पहचाना जाता है, यानी कि उस समय वो व्यक्ति कैसे एक खतरनाक रोल में रहता है और कैसे एक छोटा सा बालक उसकी पूरी की पूरी जीवन यात्रा को भी बदल देता है। इस फिल्म में हम जानेंगे, एक गाना हम आपको सुनवा देते हैं। सबसे पहले ये गाना अलका याग्निक, मनहर उदास और साथियों की आवाजों में है। आनंद मिलिंद ने संगीत दिया और गीतकार है समीर।

अभी आप सुन रहे थे एक ही फिल्म से के अंतर्गत ये पहला गाना जानवर फिल्म से, और इसमें आवाजें अलका याग्निक, मनहर उदास और साथियों की। हम मिलते हैं इस संदेश के बाद।

0: আকাশবাণী এট 90।
1: श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं एक ही फिल्म से, में जानवर फिल्म की। इसकी संक्षेप में कहानी आप तक पहुंचाते हैं। बाबू यानी अक्षय कुमार छोटे रहते हैं, तब उसे बाबू पुकार बुलाते हैं। उसकी माँ भूख से मर जाती है, वो अनाथ हो जाता है। और एक ऐसा व्यक्ति जो अपराधी किस्म का है, सुल्तान यानी शक्ति कपूर, उसे गोद ले लेता है। और शक्ति कपूर यानी सुल्तान उसे अपने भतीजे यानी अब्दुल के नेतृत्व में लड़कों का एक गैंग बनाता है और वो अपने काम के लिए यानी लूट पाट के लिए उन्हें प्रशिक्षण देता है। और बाबू बड़ा होकर एक भयंकर अपराधी के रूप में आता है, उसे वह बादशाह नाम देता है और वो होते हैं अक्षय कुमार। सुल्तान अक्षय कुमार को बेहद पसंद करते हैं और पेशेवर उसे अपराधी बना देते हैं। आगे घटना ये होती है कि एक आभूषण की दुकान लूटने के बाद बादशाह और अब्दुल का पुलिस पीछा करती है, लेकिन वो भागने में कामयाब हो जाते हैं। अगले दिन बादशाह देखता है कि उसे एक गाने बजाने यानी सड़क पर

करिश्मा नाचते हुए नजर आती हैं और एक गरीब कलाकार वो समझकर उन्हें फटे पुराने कपड़े जो पहनती हैं उनको देने लगते हैं, पैसे देते हैं और फिर करिश्मा उसे पसंद कर लगते हैं। कहानी ऐसे आगे बढ़ती है और बादशाह को इंस्पेक्टर प्रधान पकड़ते हुए नजर आते हैं। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और आपस में उनकी लड़ाई होती है जो फिल्म में हमें देखने को मिलती है। ये कहानी आपराधिक गतिविधियों को खत्म करने के लिए ही बनाई गई है। इस फिल्म का एक और गीत हम आपको सुनवा रहे हैं और इस गीत में आवाज़ अलका याग्निक, सोनू निगम, जसपिंदर नरूला, सुखविंदर सिंह की है। गीतकार समीर, संगीतकार आनंद।

श्रोताओं, आगे जानवर फिल्म में होता यह है कि बादशाह को एक छोटा बच्चा मिलता है। कोई व्यक्ति उसे मंदिर के पास छोड़कर चला जाता है और बादशाह उसे ले लेता है और कोशिश करता है कि उसे दूर रहे, लेकिन उसे वो पसंद करता है और अपने घर ले जाता है और उसकी देखभाल करता है। धीरे धीरे बादशाह बदलने लगता है और वो जानवर से इंसान बनने लगता है। बहुत स्नेह और प्रेम करता है वो उस बच्चे को, और इतना प्रेम करने लगता है कि उसका पूरा का पूरा जीवन ही बदल जाता है। वो आपराधिक जो जीवन है उसको छोड़कर एक लोहार के रूप में काम करने लगता है और बच्चे को पढ़ाता है, बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाता है। फिर उसकी असली माँ बच्चे को गाते हुए देखती है स्कूल के फंक्शन में, यानी शिल्पा शेट्टी, तो उन्हें लगता है कि ये उनका ही खोया हुआ बेटा है। मोहनीस बहल उसके पिता के रूप में उसे मिलते हैं, फिर वो बोलते हैं कि आप अपने बाबा से हमें मिलवाइए। फिर वो आते हैं, यानी अक्षय कुमार से मिलती हैं लोहार से, तो वो देखते हैं कितनी मेहनत ये व्यक्ति करते हैं और कैसे एक छोटे बेटे को पालता है और एक इंसान के रूप में उसे बड़ा करता है। ये कहानी भी इसी इर्द गिर्द घूमती है कि इंसान प्रेम से बना हुआ है, यानी एक ऐसा इंसान जो गलत रास्ते पर था लेकिन एक छोटे बालक ने उसका पूरा जीवन बदल दिया। ऐसे बादशाह फिर लोहार के रूप में अपना जीवन बदलता है। इस कहानी में हम और भी आगे बढ़ेंगे। एक और गाना आप तक पहुंचा रहे हैं जानवर फिल्म से, उदित नारायण और सुनिधि चौहान की आवाजों में, गीतकार समीर, संगीतकार आनंद मिलिंद।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत के अंतर्गत एक ही फिल्म से मैं जानवर फिल्म के कुछ फिल्मी गाने। श्रोताओं, इस कहानी के समापन में लोहार यानी बाबू लोहार राजू जो बालक है उनके पिता और उनकी माता के साथ अंत में रहने लगता है और कहानी का समापन ये दर्शाता है कि कहानी में एक अपराधी कैसे छोटे बालक से प्रभावित होकर एक इंसान बन जाता है। ये कहानी हमें भावनात्मक प्रेम का संदेश देती है। अगर हम फिल्म को मिले हुए कुछ सम्मानों की बात करें तो 1999 में ये फिल्म रिलीज हुई और इसको कई सम्मान मिले, नॉमिनेशन अवार्ड भी इसको मिली। और आशुतोष राणा, इन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस इन नेगेटिव रोल के लिए आपको नामांतरित किया गया, यानी सर्वश्रेष्ठ नकारात्मक भूमिका के लिए आपको आईफा अवार्ड मिला और कई तरह के सम्मान भी मिले। अक्षय कुमार जी को भी इतना अच्छा रोल निभाने के लिए बाबू लोहार और बादशाह के लिए दर्शकों ने खूब सराहा और कई सम्मान आपको मिले। इस फिल्म का एक और गीत हम आपको सुनवा देते हैं, अलका याग्निक, सोनू निगम, राम शंकर और साथियों की आवाजों में, समीर के बोल, संगीतकार आनंद।

अलकायत निगम रामशंकर और साथियों के स्वर में गायब हुई जानवर फिल्म के संगीत के साथ ही एक ही फिल्म से के अंतर्गत जानवर फिल्म के गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजने को है। अगला प्रसारण कुछ पलों में जिले की चिट्ठी आकाशवाणी भोपाल से होगी।

0: ये आकाशवाणी भोपाल है।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है झाबुआ जिले की चिट्ठी।

आलेख हरीश कुमार यादव का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। किसान कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत जिले में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत खेती के तरीकों और शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 10 दिवसीय कृषि रथ अभियान का शुभारंभ किया गया है। कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने बीते दिनों कृषि रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रथ के माध्यम से गांवों में किसानों को ई टोकन आधारित उर्वरक वितरण प्रणाली, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, जैविक एवं प्राकृतिक खेती, पराली प्रबंधन और संतुलित उर्वरक उपयोग जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर बीते दिनों व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। देखें, साफ करें, ढकें, डेंगू को हराने के उपाय करें थीम पर आधारित इस अभियान के तहत डेंगू जन जागरूकता प्रचार रथ को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया। प्रचार रथ के माध्यम से डेंगू एवं चिकनगुनिया से बचाव संबंधी संदेश प्रचारित किए जा रहे हैं। जिला चिकित्सालय झाबुआ में डेंगू की जांच निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की समय पर सहायता कर उसकी जान बचाने वाले झाबुआ निवासी भावेश सोलंकी को बीते दिनों राहवीर योजना के तहत प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। रोगी कल्याण समिति की कार्यकारिणी बैठक में जिला चिकित्सालय भवन का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने, सोनोग्राफी उपकरण क्रय करने, पार्किंग व्यवस्था और फायर सेफ्टी ऑडिट संबंधी प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। बैठक में कलेक्टर ने प्रत्येक 3 माह में नियमित समीक्षा बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने ग्रामीणों से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने और शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक विकास और सुविधाओं का लाभ पहुंचाना है। जिले में आमजनों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने बीते दिनों राणापुर बस स्टैंड का निरीक्षण कर यातायात व्यवस्था, बस संचालन और यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान स्थानीय नागरिकों ने हाट बाजार के दिनों में बढ़ने वाली भीड़, यातायात अव्यवस्था और अतिक्रमण की समस्याओं से अवगत कराया। जल संसाधन विभाग ने माही परियोजना की नहरों के मरम्मत कार्यों के लिए 16 करोड़ 68 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की है। लगभग 284 किलोमीटर लंबी इस परियोजना से वर्तमान में 19,000 से अधिक किसान और करीब 22,000 हेक्टेयर कृषि भूमि लाभान्वित हो रही है। जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान के तहत झाबुआ जिले ने प्रदेश स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। जिले के सभी 6 विकास खंडों में आयोजित 559 संतृप्त शिविरों के माध्यम से 32,000 से अधिक हितग्राहियों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया है। अभियान के दौरान आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, पेंशन योजनाएं, किसान क्रेडिट कार्ड और उज्ज्वला योजना की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। खरीफ सीजन को देखते हुए कृषि विभाग ने जिले के किसानों को उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। वर्तमान में जिले में यूरिया, डीएपी, एनपीके, एसएसपी और पोटाश सहित विभिन्न उर्वरकों का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है। किसान ई विकास पोर्टल के माध्यम से ई टोकन प्राप्त कर अपनी आवश्यकता अनुसार उर्वरक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मौसम को देखते हुए खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने फल एवं सब्जियों के सुरक्षित भंडारण और उपयोग को लेकर एडवाइजरी जारी की है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि हरी पत्तेदार सब्जियों को धोकर और सुखाने के बाद ही साफ कपड़े या पेपर टॉवल में लपेटकर रखें और प्लास्टिक की बंद थैलियों की बजाय नेट बैग का उपयोग करें। फ्रिज का तापमान निर्धारित मानकों के अनुसार बनाए रखने तथा सब्जियों और फलों का स्वच्छ उपयोग करने की सलाह भी दी गई है। झाबुआ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का सामूहिक श्रवण बीते दिनों आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने सहभागिता करते हुए कहा कि मन की बात केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन और जन जागरूकता का सशक्त मंच बन चुका है। विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर कृषि मंडी परिसर झाबुआ में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन बीते दिनों किया गया। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय भीली बोली में गीतों और प्रदर्शनी के माध्यम से तंबाकू व अन्य नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। पल्स पोलियो अभियान की तैयारियों को लेकर जिला कार्यबल की बैठक का आयोजन बीते दिनों किया गया। इस बैठक में बताया गया कि 28 जून को जिले भर में पोलियो बूथों पर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी, जबकि इसके बाद 2 दिनों तक स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को दवा पिलाएंगी। झाबुआ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे झाबुआ जिले की चिट्ठी। आलेख था हरीश कुमार का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार का था। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था। कृपया
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 600

0: 75 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन, इसका 8वां भाग आज हम आपको सुना रहे हैं।
1: श्रोताओं, अभिनंदन है आप सभी का स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ मनोज सक्सेना और बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं भोपाल के सुविख्यात डायबिटीज थायराइड और हार्मोन रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन चित्तावर जी। आप तो जानते हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम इन्हीं सभी बीमारियों पर चर्चा करते हैं। सर नमस्ते।
2: नमस्कार
1: सर। आज नौ तपा खत्म हो गए। अब ऐसा माना जाता है कि नौ तपे खत्म होने के बाद गर्मी में कमी आ जाती है, पर उमस, पसीना, घबराहट, ये सारी समस्या बहुत ज्यादा होती है। ऐसी परिस्थिति में जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे?
2: देखिए, जो सलाह रहेगी, जो एक सामान्य हेल्दी इंसान के लिए भी जो सलाह है, वो सारी सलाह डायबिटीज के मरीजों के लिए भी लागू होती है। कि शरीर में पानी की कमी ना होने दें, परिश्रम उतना ही करें जितना आपका शरीर आपको इजाजत देता है, नियमित व्यायाम करें, संयमित भोजन करें, 6 से 8 घंटे की नींद लें, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन होगा तो आप ORS का घोल लेंगे, उसमें भी शुगर रहेगा,
1: सच बात,
2: तो वहाँ भी परेशानी आएगी। बहुत सारे लोग डर के मारे ORS नहीं पियेंगे, पर जिनको जरूरत है तब आप नींबू की शिकंजी में नमक वाली शिकंजी भी बना सकते।
1: सर, ये जो गर्मी का मौसम होता है, इस गर्मी में रात में सो नहीं पा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार बिजली का अभाव रहता है तो लाइट नहीं है तो नींद नहीं हो रही है, मच्छर भी परेशान कर रहे हैं। जब नींद पूरी नहीं होती है और सुबह पता चला डाइजेशन भी सही नहीं है और खाना खाने की इच्छा नहीं है, ऐसे में जो डायबिटीज से पेशेंट लोग होते हैं बड़े व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, भाई करें तो क्या करें?
2: नींद का बड़ा महत्व है। अगर 6 से 8 घंटे की नींद नहीं होती तो मानकर चलें कितनी भी दवा चल रही हो
1: जी,
2: आपका शुगर पैमानों के बाहर निकलेगा, दायरे के बाहर निकलेगा, आपको हाई शुगर्स मिलेंगे। तो सुनिश्चित करें कि दिन में किसी भी समय अपन 2 से 3 घंटा 4 घंटा सो लें। सोना बहुत ज्यादा जरूरी है। आहार का ध्यान रखें, पानी का ध्यान रखें, दवा नियमित तौर पे लीजिए। टेंशन तनाव इसके ऊपर अगर हो जाए तो फिर तो बीमारी और आगे बढ़ने लग जाएगी।
1: सच बात।
2: पेशाब के रास्ते जलन है, खुजली है, उमस के दौरान ऐसा हो सकता है, तो अपने डॉक्टर से मिलें, क्योंकि ये समस्या, ये इन्फेक्शन बढ़ने से भी शुगर बिगड़ेगा।
1: सर, ये लू लग जाती है, अक्सर जब लू लगती है तो यही होता है कि व्यक्ति को जो घरेलू उपचार है वो किए जाते हैं, और ऐसे में डायबिटीज से जुड़े व्यक्ति को खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अगर घरेलू उपचार में चलते गए तो संभावना बिगड़ सकती है। सबसे पहले अगर लू लगी है तो क्या सावधानी बरतें?
2: देखिए, क्या होता है कि अगर किसी मेडिकल दृष्टिकोण से बोलें तो लू जैसी कोई बीमारी किसी दायरे में आती नहीं।
1: अच्छा।
2: पर हाँ, हीट स्ट्रोक बोल सकते हैं आप, तो उस समय आपको पानी का ध्यान रखना है, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, आपको आराम करना चाहिए, आपको ऐसे जो मौसमी शीतल फल हैं उनका सेवन करना चाहिए। मान लीजिए आपको उल्टियां हो रही हैं, दस्त हो रहे हैं, बुखार आ रहा है, तो आपके निकट के डॉक्टर से मिलिए, वो आपको ध्यान रखेंगे। और जिनको टाइप 1 है उनको तो खासतौर पर ध्यान रखना है कि इंसुलिन का डोज नहीं मिस होना चाहिए। ऐसी अवस्था में इंसुलिन बढ़ाया जाएगा, कम नहीं किया जाएगा।
1: सर, हमारे किसान भाई आजकल जैसे खेतों पर काम करना शुरू कर रहे हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है, अब गांव में भी डायबिटीज अपने पांव पसार चुकी है, फैटी लीवर मिलना, डायबिटिक होना, हार्ट पेशेंट होना गांव में भी अब आम समस्या हो गई है। खेती किसानी से जुड़े लोग हैं और निकलना घर से बहुत जरूरी है, काम भी हो रहा है, मेहनत भी हो रही है, और डायबिटीज को कंट्रोल करना उनके लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है, ऐसा हो क्यों रहा है?
2: देखिए, डायबिटीज होने का कारण तो बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि गांव देहात में उतना परिश्रम रहा नहीं, उतना शुद्ध भोजन रहा नहीं, कहीं ना कहीं कीटनाशक और ये सब चीजें अगर आप बोलें, कोई ऐसा शोध हुआ नहीं है। तो जो शहरी जीवन शैली गांवों में आ गई तो बीमारी तो शहरी आएगी
1: जी।
2: दूसरा कि आपको अब ये बीमारी हो गई है, आप खेतों में काम करना चाहते हैं तो ठीक है, आप अपने आप को जैसे आप सामान्य तौर पर ढक कर जाते हैं वैसा जाइए, पानी का ध्यान रखें, दवा का बराबर सेवन करें, ऐसा ना हो कि खेतों पे चले गए, सुबह दवा खा ली, लंच ही रह गया तो शुगर लो हो जाएगा, तो वहां जरूर बेहोशी हो जाएगी आपको। तो इन परिस्थितियों का ध्यान में रखते हुए अगर आप करेंगे तो कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं आने वाली।
1: मित्रों, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में भी होंगे, मेरे मन में भी आते हैं और मैं सर से पूछ लेता हूँ। आशा करते हैं आपको यह कार्यक्रम अच्छा लग रहा होगा। आपके मन में भी सवाल हैं तो आप हमें भेजिए ना, हम आपके सवालों का स्वागत कर रहे हैं। हमारा नंबर है

0: 7811-2343। नंबर फिर से सुन लीजिए 7811-2343। अब मिलते हैं अगले बुधवार, तब तक के लिए स्वीकार कीजिए मनोज सक्सेना और डॉक्टर सचिन चितावर का नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन, जी आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए सामुदायिक गान का प्रशिक्षण पाठ। इसमें आज हम आपको सुना रहे हैं कन्नड़ भाषा के एक गीत का प्रशिक्षण पाठ।

0: अच्छा बच्चों, सब लोग आ गए हैं ना?
1: हाँ आ गए हैं।
0: आप किस स्कूल में पढ़ते हैं?
1: मारुति संगीत पाठशाला।
0: मारुति संगीत पाठशाला के बच्चे हैं आप लोग?
1: हाँ।
0: तो आज हम एक नया गाना सिखाएंगे।
1: हाँ सिखाएंगे।
0: किसने लिखा है मालूम है? दोड्ड रंगे गौड़ा। किसने लिखा है ये गाना?
1: दोड्ड रंगे गौड़ा।
0: तो आप गाना सीखने के लिए तैयार हैं?
1: हाँ तैयार है।
0: इस गाने का शीर्षक है कडल हक्कीगळु। क्या है?
1: कडल हक्कीगळु।
0: तो पहले क्या करना, इस गाने को लिख लेना है ना?
1: हाँ।
0: तो बाद में हम गा सकते हैं, नहीं तो नहीं गा सकते है ना?
1: हाँ।
0: तो पहले क्या करना, पेन पेंसिल पेपर सब उठा के अपने आगे रख लेना है।
1: हाँ।
0: रख लिया है?
1: हाँ।
0: अच्छा तो मैं डिक्टेट करती हूँ, आप हाँ। सब लिख लीजिए। हाडू तिहवु हारु तिहवु कडल करेय खगकुला
1: कडल करेय खगकुला
0: यनी तो मुगिला उद्दा अगला जी की दनी तू बांदड़ा। अच्छा तो एक पहला स्टैंजा है।
1: हाँ?
0: आगे का स्टैंजा है बान लोक नगुआ नाका हारो हक्की पालीगे रेक्के बीसी धैर्य सूसी चुक्की मुट्टो हम्मीगे लिख लिया?
1: हाँ।
0: सब लोग लिख लिया?
1: हाँ।
0: अच्छा तो अगला स्टैंजा दूर दूर हारी हारी व्योम कानुआ बगे हसीवा मरेसी वांछे मेरेसी दिगंत सेरो लघु बगे। तो अब बच्चा आखिर स्टैंजा वो भी सुना दो।
1: हाँ,
0: लिख लेते हैं।
1: हाँ।
0: याव नाडो यंथ काडो
1: हारो आसे हक्कीगे
0: मुक्त गगन नूरु काला ईजो शक्ति रेक्केगे तो सब लोग एक गाना तो लिख लिया।
1: हाँ।
0: अब इसे कैसे गाना, किस तरह गाना, ये तो मालूम होना है ना?
1: हाँ।
0: अच्छा जी जरा चुपके रहना, गीता जी आ रही है दीदी।
1: हाँ?
0: इसी को हम रिक्वेस्ट कर देंगे।
1: हाँ?
0: गीता जी आइए यहाँ, हमारे बच्चे सब ये गाना सीखना चाहते हैं। पहले इसके आरोह अवरोह क्या है ये बताएगी?

0: अब भैया विश्वनाथ नागपुर जी भी यहाँ आए हैं। वे तबला बजाने के लिए तैयार होके बैठे हैं। तबला बजा के दिखाते हैं ना?
1: धा दीना धा तीना धा दीना धा तीना धा दीना धा तीना धा दीना धा तीना।
0: अब आप लोगों को मालूम है

कर्नाटक संगीत में ये चक्रवाक राग होता है और हिंदुस्तानी में इस राग को कहते हैं आहिर भैरव। इसका ताल है कर्नाटक संगीत में चतुरस्र जाति एक ताल तीसर नड़े। इस ताल को हिंदुस्तानी में कहते हैं दादरा। तो

0: लोग सब लोग आ गए हैं ना?
1: आ गए हैं।
0: आप किस स्कूल में पढ़ते
1: हैं?
0: मारुति संगीत पाठशाला के बच्चे हैं आप लोग।
1: हाँ,
0: तो आज हम एक नया गाना सीख रहे हैं। किसने लिखा है मालूम है? दद्दू रंगे गौड़ा।

0: किसने लिखा है ये गाना?
1: अंतरा ये गा है,
0: ये मालूम हो गया।
2: आप
0: मगर जो स्वर आते हैं
2: के लिए
0: वो नहीं बन है
1: ना
0: गीता दीदी, स्वर को भी।
2: इस गाने का शीर्षक है कडल हक्की गलू। क्या है
1: कडल हक्की गलू?
2: तो पहले क्या करना,
3: दूर
0: दूर गाने को लिख लेना है,
2: तो बाद में हम गा सकते हैं,
0: नहीं तो नहीं गा सकते है ना।
2: तो पहले क्या करना, पेन पेंसिल पेपर सब उठा के अपने आगे रख लेना है।

0: कर्नाटक संगीत में ये चक्रवाक राग होता है और हिंदुस्तानी में इस राग को कहते हैं आहिर भैरव। इसका ताल है कर्नाटक संगीत में चतुरस्र जाति एक ताल तीसर नड़े। इस ताल को हिंदुस्तानी में कहते हैं दादरा। तो अब भैया विश्वनाथ नाकुट जी भी यहाँ आए हैं, वे तबला बजाने के लिए तैयार होके बैठे हैं। तबला बजा के दिखाते हैं ना।
1: इसी के साथ ही सामुदायिक गान का ये क्रम अब संपन्न हुआ। आज आप सुन रहे थे कन्नड़ भाषा के गीत का प्रशिक्षण पाठ, गीतकार बी आर गीता। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आपके ईमेल, पत्रों और आपके फेसबुक के कमेंट्स पर आधारित, फरमाइशों पर आधारित आपके पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद। श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आपके ईमेल, पत्रों और आपके फेसबुक के कमेंट्स पर आधारित, फरमाइशों पर आधारित आपके पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद। श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम बना मैसेज कमेंट बॉक्स में करके अपनी फरमाइश सुन सकते हैं और अपनी पसंद के गाने सुन सकते हैं। श्रोताओं, आज मैं आपके साथ हूं, आपका मित्र राजेंद्र अहिरवार। सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। ये पहला गीत आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर, टॉयलेट एक प्रेम कथा, इस फिल्म से ये गाना है सोनू निगम गरिमा। आप सभी के मैसेज हमें मेल के जरिए मिल रहे हैं और फेसबुक के जरिए हम ये मेल उठाते हैं। पहला मेल हमें प्राप्त हुआ है, लिखती है जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्वनी और विपुल कामड़े, और अपनी फरमाइश के साथ आप जुड़े हुए हैं मेल के माध्यम से। लिख भेजा है जिला मुरादाबाद ग्राम दोलापुर से मुकेश कश्यप, सोनू, शीतल, राजेश और इनके साथ है काजल, मानवी, लक्ष्य और इनके परिवार वाले, और इसी गीत को पसंद किया मेल के माध्यम से ही। लिख भेजा है दुर्गा कॉलोनी सिंहांसी से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष, योगी और बब्बू डब्बू। इसी गीत को अपनी पसंद के साथ हम तक भेजते हैं। जयपाल यादव, इंद्रपाल, राघवेंद्र, अरविंद, रागनी, रिया, दिव्यांशी, रेणुका और रेणु यादव, लोहिड़ी, महोबा, उत्तर प्रदेश से। और ये मेल मिला हुआ है बन्ने बुजुर्ग पलेरा से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनम, सोनाली और इनके परिवार वालों का। और इसी गीत में ये अपनी फरमाइश के साथ हमसे जुड़े हुए हैं हमारे मित्र। ये मेल हमें मिला हुआ है, लिख भेजा है बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया, और इसी गीत को पसंद किया। नलेश्वर नगर नरवेल महाराज से पीएस नोहाकर, निर्मला, विशाल और सोपान ताड़े, मलकापुर से नारायण इंगली, राजकुमार खर्ची और आशीष मुरहेकर, और इसी गीत को पसंद करते हैं। खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार प्रजापति, और ये मेल है मकानियापुरा महोबा उत्तर प्रदेश से के सज्जन, केशव प्रसाद गुप्ता, ऋषभ छाबला, सुधा और मीहू। और इसी गीत में अपनी फरमाइश के साथ सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल, डॉक्टर अमन दीप भी जुड़े हुए हैं। कालका से शुभचंद्र बजाज और साहिल बिट्टा बजाज, ये मेल मिला हुआ है। ज्योति नगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोवर्धन धरा, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी और हसन मिक्का, इसी गीत को पसंद करते हैं। पजोनिया जालौन से सतेंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसोलिया, और इसी गीत में ग्राम्बा पोस्ट गोना कुशमार थाना सौजन्या तहसील महरोनी जिला ललितपुर से लिख भेजा है कैलाश नारायण नामदेव, दीपक कुमार नामदेव, द्रौपदी रामदेवी, ब्रजेश कुमार, अखिलेश कुमार, सूरवी पायल नामदेव, और इसी गीत को पसंद करते हैं हमारे ये मित्र। मेल हम तक लिख भेजा है मोहम्मद बक्कार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन, परवीन रोजी, परवीन बिट्टू भैया, राजदा रानी और हिना कौसर। साजदा रानी के साथ हिना कौसर अपनी पसंद के साथ जुड़े हुए हैं और ये मेल हमें लिख भेजा है हमारे ये मित्र हैं। लिख भेजते हैं नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी, जोगेश कुमार, ट्विंपल मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी, और इसी गीत को पसंद किया है रामधारिया वाना, अविनी प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप, कीरत और इनके परिवार वाले, और आप सब अपनी फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं। नटेरन जिला विदिशा मध्य प्रदेश से कल्याण सेन, पुष्पा सेन, नितिन सेन, जतिन और इनके परिवार वाले, इसी गीत को पसंद करते हैं। ग्राम खक्कल तहसील कोंच जिला जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक सिंह गुर्जर, सत्यम सिंह गुर्जर, अंशरार्थी गुर्जर और इनके मम्मी पापा मेल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। आप हैं दुल्हापुर मुरादाबाद, मुरादाबाद से मोहम्मद फरमान, सलमान इरफान, इसरार और नरगिस खातून, तालगांव भंडी, दतिया सिंह, मेहरबान सिंह नागल, संतोष कुमार नागल और इनके परिवार वाले, इसी गीत में। आप हैं राम चबूतरा कालपी से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, शबिश्ता, मोहम्मद नसीम, पलक लुबना और यश मंसूरी, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवी जस्सी, सीता और गीता भी जुड़े हुए हैं। मेल आप अपनी पसंद पर कर रहे हैं चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, और इसी गीत को पसंद किया है ये हमारे मित्र हैं। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन, कृष्णा पीहू स्वर्णकार, इसी गीत को पसंद किया है हमारे इन श्रोताओं ने। ये मेल मिला हुआ है सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु।

उदारा गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से और ऐसे गीत को पसंद करते हैं हमारे ये मित्र नोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमला मरावी, नीहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ मरावी। इसी गीत में अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजी है। ये हमारे साथी हैं हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत, वसीम, नदीम, शमीम और मोहम्मद आसिफ खान हमें लिख भेजते हैं नगर निगम वार्ड नंबर 28 महसौर सीतामढ़ी बिहार से। इसी गीत को पसंद करते हैं दीवानिया रेडियो लिसनर साथी जमानिया गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक व स्वाति जायसवाल। और इसी गीत को पसंद करते हैं नरगुड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी और इनके परिवार वाले। और ये मेल हम तक लिख भेजा है सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, नीति, मंगला बेन, राजेंद्र शाह ने नीपन मध्य प्रदेश से। और इसी गीत में टूरुबाल नवा शहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, प्रियंका प्रशांत, प्रियम, वामिका थांदी, यवतमाल विदर्भ से संतोष खरसे और विनोद खरसे। हम आप सबको सुना रहे हैं टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे टॉयलेट, एक प्रेम कथा इस फिल्म का गीत। और लीजिए अब सुनिए प्रेम रतन धन पायो इस फिल्म से आपके ही फरमाइशों पर ये गीत शान और साथियों की आवाजों में हिमेश रेशमिया ने संगीतबद्ध किया। गीतकार है इरशाद कामिल। और श्रोताओं, ये फिल्म राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले बनी थी। बहुत ही अच्छे गाने इसके गाए हैं, हम आप सबको सुना रहे हैं। और हमें फेसबुक से ये आपकी फरमाइशें मिली हुई हैं और ये फरमाइश हम तक पहुँचाई हमारे इन श्रोताओं।

गांव में ब्रह्मा पोस्ट अक्टोहा तहसील लवकुश नगर जिला छतरपुर से देव सुरेश कुमार साहू, कमलेश कुमार, देवेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार, रवि कुमार और सोनू, धर्मेंद्र, राघवेंद्र, भावना, यश और इनके परिवार वाले, बिडोरा दतिया से मुकेंद्र सिंह गुर्जर और इनके साथ यशपाल सिंह, जयपाल सिंह, महपाल सिंह गुर्जर, ऊपरकोट मोहल्ला चौक पट्टी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगह परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरहीन, सुहाना, जानाबान और इनके परिवार वाले। और इसी गीत को पसंद किया हमारे श्रोताओं ने, ये मेल हम तक लिख भेजा है। मेल है ठाणी कुतुबपुर जिला हांसी से, लिख भेजा है प्रियांशी, रियांशी ओजस और इनके साथी गुरदीप। और इसी गीत को पसंद करते हैं हमारे ये मित्र संतोष नामदेव, अभय, अनिल, अजीत, ज्योति, अनीता, संजना, रेखा भारती, पूर्वी, रूही, अनु, अनन्या, शक्ति, भक्ति, आदर्श, लव, कुशवा, इनके परिवार वाले। लिख भेजा है सोनई ललितपुर से। इसी गीत में अपनी फरमाइश ये फेसबुक पेज से मिली हुई है। लिखते हैं पटेल नगर मनोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू, डुग डुग। और इसी गीत में अपनी फरमाइश के साथ जुड़े हुए अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या, निवेश, नियति कुमारी, बेनीपट्टी, मधुपनी, बिहार से। इसी गीत में भाऊखेड़ी जिला सीहोर से राजेश बनासिया। इसी गीत में अपनी फरमाइश हम तक भेजते हैं गाँव जलालपुरा जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से श्रवण कुमार प्रजापति, शिवम कुमार प्रजापति और साथ में इनके परिवार वाले। इसी गीत में अपनी फरमाइश मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगनी बरेली उत्तर प्रदेश से हम तक लिख भेजी है। लिख भेजते हैं बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार, अमर सिंह, हितेश कुमार, राजेश कुमार, रूबी, एकता, दिव्या, रचना, ओमपती, शगुन, सारांश, लखन, आयांश, अदिति, शिवांश, प्रथा, गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से सुवन सिंह गिल, दलदीप सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह। अपना मेल हम तक भेजते हैं और ये मेल है मोटक्का माफी जिला खंडवा से किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, शुभम, देवी कृष्ण, भावना, मनमाना, सौरकानिका, राज पटेल। इसी गीत को पसंद किया हमारे इन श्रोताओं ने। आदर्श नगर मंडूर पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, सौरभ और शाइना निवांश शर्मा अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजते हैं। और इसी गीत में ये मेल हमें मिला हुआ है, लिख भेजा है हमारे ये मित्र हैं, ये मेल हमें लिखते हैं मिहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा हम तक लिखते हैं पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से। इसी गीत में अपनी फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं। लिख भेजते हैं गांव जलालपुरा सहारनपुर यूपी से मुनीश कुमार प्रजापति और इसी गीत में अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजी है। लिख भेजते हैं ये मेल हमें मिला हुआ है दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा। इसी गीत में ये मेल मिला हुआ है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोर्ड के, नंदा बोर्ड के, हनुमान बोर्ड के, उत्तम जमदाड़े और स्वराज जमदाड़े भी लिखते हैं अंबेडकर चौक बाकुड़ी से। इसी गीत में ये मेल मिला हुआ है ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, प्रियल, वंदना, दिव्यांशी विश्वकर्मा और यहीं से साधु बाबा वीरेंद्र सिंह तोमर, संजय दीपक और मोनू सोनू तोमर। इसी गीत में अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजते हैं ग्राम गुरियाना पोस्ट पटना थाना नाराहट जिला ललितपुर यूपी से सीताराम नामदेव सिद्धार्थ और एक और मेल है ग्राम बछरई जिला ललितपुर से दिलीप कुमार नामदेव सिद्धवाहा जिला ललितपुर से ही मेल मिला हुआ है नरेंद्र नामदेव पप्पू नामदेव। ये फेसबुक से कमेंट हमें मिला हुआ है। लिख भेजा है टीकमगढ़ से राजेश कुमार अकेला, यशोदा यादव, राजेश यादव और संजीव यादव ने। इसी गीत में अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजते हैं लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुकमणी बघेल, साहिल और भारती बघेल। इसी गीत में अपनी फरमाइश के साथ जुड़े हुए सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब राम टेके, यशोधरा राम टेके और श्रभ्या राम टेके। इसी गीत में अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजते हैं आप हैं सादुल शहर से राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। आप हैं हजारीबाग झारखंड से वीरेंद्र भगत, मालती भगत, विकास, जितेंद्र, ऋषि और राहुल। इसी गीत में एटा रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से वीपी गौतम, सरिता गौतम और इसी गीत को पसंद किया जमानिया गाजीपुर से स्वाति, दीपक, उर्मिला, सुरेश, जायसवाल। एक और ये फरमाइश हम तक लिख भेजी है राजेश वर्मा, मंजू, निशांत, कौश की, दीपाली, युवान और आरजी इनके साथ हैं लाल कुर्ती रुड़की कैंट से अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजते हैं। और इसी गीत में जिला सोलापुर महाराज से गांव तामबोले तहसील मोहोल से संतोष कुमार नागड़ी, सुताशा, सुजाता, सूरज, समर्थ और इनके परिवार वाले। और इसी गीत में मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता गौंड लिख रहे हैं अपनी फरमाइश। गांव भोजपुर तगा चिकलाना सहारनपुर से मोहम्मद जावेद, मोहम्मद अदीब, अब्दुल हन्नान, जीनत और मोहम्मद इंतजार। इसी गीत के साथ आप हैं गांव भटनी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से ईश्वर लाल मेहर, सुमित्रा, रेहांश, सृष्टि और इनके

परिवार वाली एक और मेल है, गांव मुरादगढ़, जिला करनाल, हरियाणा से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं भूपेश कुमार कंबोज, पिंकी वंश, रमेश कुमार कंबोज भी जुड़े हुए हैं। और इसी गीत में ग्राम पोस्ट बिरखेरा, जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश, मलिराम पाल, मलखान सिंह, सुधांशु और निवेदिता पाल अपनी फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं। इसी गीत को बडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, लवली पिंकी, आरती अरोड़ा भी सुन रहे हैं। और इसी गीत में ग्राम पोस्ट भदौरा, तहसील मारौनी, जिला ललितपुर से ब्रजकिशोर नामदेव सुखपति, अमित कुमार और हेमलता नामदेव, बसारी दरवाजा से, छतरपुर से राकेश दास कबीरपंथी और उनके साथ हैं उनके परिवार वाले। और इसी गीत में हमारे मित्र हमसे जुड़े हुए हैं दिनेश कुमार वर्मा, करुणा वर्मा, लिख भेजते हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से। और इसी गीत में ये मेल है गांव नंगलखेड़ा भाकड़ गांव से सुनैना और पवन फोंडे, और इसी गीत को अपनी फरमाइश के साथ हम तक लिख भेजते हैं। ये मित्र हैं धनौरी विटाली, तहसील नांदुरा, जिला बुलढाणा महाराज से, भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल और सचिन पाटिल। इसी गीत में अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजते हैं, ये मेल लिखा हुआ है, लिख भेजते हैं हमारे ये मित्र हैं मृतला महोबा से नर सिंह राजपूत, शत्रुघ्न गुरु महाराज और गौरव सिंह राजपूत। और ये मेल है किशोर नगर अमरावती से हीरामन शेंडी, शीला देवी शेंडी और सिद्धार्थ कोंटा ने। इसी गीत में अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजी है, ये मेल हम तक अपनी पसंद के साथ लिख भेजते हैं। गौना थाना पंजाब से जसवी जस्सी और इनके परिवार वाले, इसी गीत को पसंद किया है हमारे इन श्रोताओं ने। लिख भेजा है विष्णु मस्कीन, रितिका मस्कीन, वाणी आरव मस्कीन और लिख भेजते हैं दयानंद कॉलेज भवानी पीठ सोलापुर महाराष्ट्र के श्रोता, देवरी भाटा पारा से केआर साहू, आकाश, कमलेश, गनुला रजक और मुरली छत्री अपनी फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं। ये मेल है सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित, बीबी गर्वी और हिमाक्ष चौहान। इसी गीत में ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग से वल्करण वर्मा, अंजनी प्रहलाद, उमेश कुमार वर्मा। और इसी गीत में मलयान साधना मेरठ से अनिल जैन, संयम मुस्कान, मास्टर जीवीएम जैन और इनके परिवार वाले, गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम, सद्दाम अदीब। और इसी गीत को पसंद करते हैं हमारे मित्र हैं शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम अजीम और इनके साथ हैं अब्दुल कलाम। हम आप सबको सुना रहे हैं प्रेम रतन धन पायो फिल्म से ये गीत।

अगला गीत आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर, और ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं रेड फिल्म से। रात फतेह अली खान की आवाजें हैं और संगीतकार हैं तनिष्क बागची और गीतकार हैं मनोज मुंतशर। और ये गीत हम आप सबकी फरमाइश पर सुनवा रहे हैं। ये मेल हमें मिला हुआ है, लिख भेजा है हमारे इन श्रोताओं ने, जॉन जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो, पर्ल डिकेस्ट्रो, रोजी और विलिस डिकेस्ट्रो अपनी फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं। और इसी गीत में ये पत्र है, नरसिंहपुर व छतरपुर से दयाशंकर कुशवाहा, रिक्खी राम, भवानी देवी और इनके परिवार वालों का। और इसी गीत को पसंद किया हमारे इन श्रोताओं ने। कुछ हमारे फेसबुक पेज पर भी हमें कमेंट मिल रहे हैं और कुछ हमें मेल भी मिले हुए हैं। ये मेल मिला हुआ है आदर्श कुमार, राम स्वरूप, राजपूत, अभिषेक साहू, ग्राम पोस्ट बहिरी, तहसील नरेनी, जनपद बांदा, उत्तर प्रदेश से अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजते हैं। और इसी गीत को पसंद किया हमारे इन श्रोताओं ने, ये मेल हम तक लिख भेजा है। ये मेल है, आप हैं गांव लोहेकर ठाकुरवाला से, लिखते हैं अवराज सिंह, गुरलाल सिंह, और इसी गीत को पसंद किया हमारे इन श्रोताओं ने। कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखीलाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराज, कैलाश, अनिल, खुशबू, आरोही, स्वाति मौर्य भी जुड़े हुए हैं और इसी गीत में अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजते हैं। कुम्हार गली श्रीरामपुर से अशोक डाले, सविता डेल, अनिकेत दले, रोहिती दले, ऋषिकेश, जीविका सानिका, पुनावली पुणे से अजय सोनवनी, करिश्मा सोनवनी, अविका सोनवनी और विशाखा सोनवनी अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजते हैं। सागर लखनादौन मध्य प्रदेश से लाडलाजी चौबे और रिमझिम सक्षम चौबे अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजते हैं। और इसे गीत को पसंद किया है ग्राम गरौली जतारा टीकमगढ़ से चतुर्भुज अहरवार, ब्रजेश रानी, विनोद और इनके परिवार वाले, और इसी गीत को अपनी फरमाइश के साथ हम तक पहुंचा रहे हैं। हयात कॉलोनी अररिया विहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नसीमा प्रवीण अपनी फरमाइश के साथ हैं। और विराटनगर नेपाल से डॉक्टर अरुण चंद्र शर्मा, रेणुका शर्मा और उनके साथी, और इसी गीत में अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजी है। आप हैं अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयमंत्री केवट, अंजलि रुद्राणी और कृष्णा केवट, और इसी गीत को पसंद किया अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर से चंद्रेश गौहर और श्रीमती वंदना गौहर ने। और ये मेल हमें मिला हुआ है, लिख भेजा है, अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजते हैं। आप हैं सोहन सिंह राजपूत मामना महोबा से, और इसी गीत को पसंद करते हैं, अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजी है। विराटनगर नेपाल से डॉक्टर अरुण चंद्र शर्मा, रेणुका शर्मा और उनके साथी, और इसी गीत को पसंद करते हैं हमारे ये मित्र अजीत कसाना, माया देवी ऋतिक और आदित्य कसाना, लदावली जिला मुरादाबाद से, और इसी गीत में अपनी फरमाइश के साथ हमसे जुड़े हुए हैं। शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान और अनु खान, आप हैं गंज डुंडवारा से। ये मेल है बाबा कुटी रायगढ़ छत्तीसगढ़ से शिव कुमार चौहान, क्रांति देवी चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान और उत्कृष्ट चौहान, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण दास साहू, कुलवंती साहू और देवी

कुमार साहू अपनी फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं। जुनवानी स्मृति नगर जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुमित रमेश कुमार साहू, तारा देवी साहू, विद्या, जितेंद्र कुमार, सुनीता, ऋषि और हीरेंद्र कुमार साहू अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजते हैं। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से वलकरण वर्मा, अंजनी देवी, प्रहलाद कुमार, मुरली वर्मा और ग्राम मझगुआ कला पोस्ट अमरोनिया जिला छतरपुर से लखनलाल नामदेव, नेहा अनन्या, अनुष्का अभिमन्यु, अनन्या नामदेव और इसी गीत में अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजते हैं। जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह और गुड़िया सिंह, हम आप सबको सुना रहे हैं आपकी पसंद पर रेड फिल्म से ये गाना।

0: श्रोता इसी के साथ आपके पसंद कार्यक्रम आज के लिए अनुमति दीजिए अपने दोस्त राजेंद्र अहिरवार को। नमस्कार श्रोताओ, आप सभी आपकी पसंद कार्यक्रम में ईमेल कर सकते हैं aiar76@gmail.com और अपनी फरमाइशें सुन सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे आपकी पसंद कार्यक्रम मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। 11 बजने को है अगला प्रसारण, कुछ पलों में आकाशवाणी भोपाल से होगा।
1: श्रोताओं, फोन इन कार्यक्रम, तो देर किस बात की, जल्दी से डायल कीजिए 2660902 और

0: चिट्ठी कोड आप जानते ही हैं 0755। कॉल कीजिए और सुनिए अपनी पसंद के गीत। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्कार।
0: स्वागत है आपका हमारे फोन करे गीत सुने कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद दीदी। मैं राजेश अग्रवाल बोल रही हूँ, यहाँ राजा राम नगर देवास मध्य प्रदेश से।
0: राजेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन आपके कॉल भी बहुत लगते हैं आकाशवाणी में।
1: क्यों बहुत का? हफ्ते भर पिछले मंगलवार को लगाया था, जिसका आज लगा रहा हूँ दीदी।
0: चलिए कोई बात नहीं, एक्चुअली मैंने पिछले ट्यूसडे को आपकी बात हुई थी और वेडनेसडे को भी देखा था मैंने आपका नाम, इसीलिए
1: नहीं लगाया।
0: चलिए कोई बात नहीं,
1: कोई दूसरा नाम से
0: ठीक ठीक हाँ हो सकता है।
1: बरोबर हफ्ते भर में ही लगाया दीदी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है राजेश जी, क्योंकि यदि कोई भी श्रोता एक हफ्ते के पहले कॉल लगाता है और हम उससे बात कर भी लेते हैं, लेकिन यदि हम देखते हैं कि एक हफ्ते के बीच में उसकी बात हो चुकी है तो हम उसका कॉल फिर प्रोग्राम में नहीं ले पाते, बस इतनी सी बात है।
1: हाँ कई श्रोताओं ने लगाते, खास तो हमारी शिकायत ये है कि दीदी ये जो लेटर का कार्यक्रम हो रहा है फरमाइश का,
0: हाँ
1: उसमें पत्र बिल्कुल नहीं लिए जा रहे हैं, छांट के जैसे वो क्या वही गड्डी एक की एक ही गड्डी रोज वही।
0: नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, इतने
1: हो रहा
0: हमारे श्रोताओं की गिनती नहीं है, तो वो तो जो जैसे हाथ में आते जाते हैं वैसे ही लेटर्स पढ़ते हैं और एक ही गड्डी नहीं पड़ी जाती है, बहुत सारे। आप कभी आकाशवाणी आएंगे?
1: नहीं हम तो होके गए ही हैं वहाँ पे, अभी अक्टूबर में आए थे जैसे स्थापना दिवस पे।
0: अच्छा अच्छा
1: आपको माला नहीं हो भले, लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं कि वही तिलक राणा डोमन ठाकुर ये जो दो चार नाम रटे हुए रोज के रोज वही।
0: नहीं नहीं रटे नहीं है वो, ये होता है कि एक ही श्रोता कई बार है ना 50-50 कार्ड डाल देता है तो उसका नंबर रोटेशन में आता जाता है।
1: बाकी जैसे ये इंदौर के देवास के यहाँ के भी तो लेना चाहिए ना, भले ही वो डाले
0: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बिल्कुल बिल्कुल हम इस बात पे बिल्कुल चर्चा करेंगे और आपका कॉल लिया जाएगा। अभी तो आप ये बताइए, फोन करे गीत सुने में आपने कॉल किया है, तो आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: ये दीदी आज जैसे सुमन कल्याणपुर जी हमारे बीच नहीं रही है, जैसे कल ही परसों उनका निधन हो गया है,
0: जी जी,
1: तो उनकी याद में जैसे गीत ये पहचान पिक्चर का सुनवा दीजिए, वो परी कहाँ से लाऊं, या फिर आया ना तुमको प्यार जताना, ऐसा गीत है मुकेश जी के साथ है उनमें गीत।
0: पहचान फिल्म का?
1: पहचान पिक्चर
0: ओ परी
1: है? हाँ वाला ले लीजिए, या फिर मुकेश जी के साथ में उनका डुएट भी है।
0: हाँ हाँ
1: पहचान पिक्चर का उनका गाया हुआ गीत सुनवा दीजिए।
0: अच्छा ठीक है, और
1: सुमन कल्याणपुर जी को समर्पित है ये।
0: हाँ कौन सा वाला, सेकंड कौन सा बोला है आपने?
1: सेकंड ये आया ना हमको प्यार जताना।
0: अच्छा,
1: ऐसा गीत है।
0: ठीक ठीक ठीक बिल्कुल बिल्कुल हम आपको बिल्कुल ये गीत सुनवाएंगे।
1: ये हमारी बात थोड़ी सी रख देना मैनेजमेंट के सामने।
0: बिल्कुल रखेंगे।
1: लेटर के बारे में आरजे लेटर बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, एक एक एक गीत पे एक ही लेटर लेते हैं वो।
0: चलिए बिल्कुल हम बात करेंगे इस विषय पे राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दूसरे श्रोता भी लाइन में होंगे, जिस तरीके से आपसे बात कर रहे हैं ना कभी कभी ऐसा ही लेटर्स में भी हो जाता है। ठीक है चलिए नमस्कार जी, नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्ते।
1: जी, नमस्ते। मैं ग्रामपुर जिला छतरपुर से संगीता पटेल बोल रहे। संगीता
0: छतरपुर से सुनीता पटेल, अनीता,
1: जी, संगीता
0: संगीता।
1: जी मैम
0: चलिए संगीता, आपसे पहले भी बात हो चुकी है हमारी, है ना?
1: जी, आप कविता मैम बोल रहे
0: हाँ
1: हैं
0: जी।
1: जी?
0: और कैसी हो संगीता?
1: जी ठीक है मैम।
0: और आज कौन सा गीत सुनना चाहती हो?
1: आज सुनना चाहते हैं करण अर्जुन फिल्म का,
0: अच्छा, कौन सा वाला गीत इसका?
1: बंधन, दिलों का बंधन।
0: अच्छा, बहुत ही प्यारा गीत है ये। बंधन तो
1: मैम,
0: प्यार का
1: आपके
0: बंधन
1: यहाँ
0: है।
1: मौसम कैसा है?
0: मौसम में गर्मी में थोड़ी सी राहत मिली है ऐसा कह सकते हैं, बारिश बारिश हो
1: जी
0: जा रही है बीच बीच में, आंधी
1: मैम, यहाँ भी
0: तूफान।
1: थोड़ी राहत मिली है क्योंकि पानी 2-3 दिन बरसा है।
0: हाँ, और आंधी तूफान टाइप बहुत मौसम ऐसा हुआ है
1: जी,
0: ना।
1: दोनों।

0: साथ में एक आए हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो संगीता जी, कल के प्रोग्राम में अपनी पसंद का गीत बिल्कुल सुनिएगा, ठीक है?
0: जी
1: कॉल करने के
0: जी
1: लिए धन्यवाद।
0: जी जी थैंक यू मैम।
1: ओके।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी,
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्ते जी, स्वागत है आपका। आप शिव नारायण तिवारी जी बोल रहे हैं?
1: जी मैम, बहुत बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत पहचाना आपने।
0: जिस तरह से हमें श्रोता पहचान जाते हैं आवाज से, कई बार हम लोग भी है ना अपने श्रोताओं की आवाज पहचानने लगते हैं।
1: मैम मालूम चल गया था कि आप आज प्रोग्राम रिकॉर्डिंग में हैं,
0: अच्छा, ऐसा है? अरे वाह, क्या बात है।
1: तो
0: और
1: मैंने
0: क्या
1: किया
0: हाल है आप
1: था।
0: सभी के? हाल
1: जी
0: कैसे हैं आप सभी के?
1: बढ़िया है हाल मैम, बहुत बढ़िया। अब तो गर्मी थोड़ी कम हो गई है।
0: हाँ, हल्की सी कम हुई है।
1: काम
0: और कामकाज कैसा चल रहा है?
1: काज बढ़िया चल रहा है, कथा वार्ता पूजा होती रहती है, पंडिताई चलती रहती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अच्छा बताइए शिवनारायण जी, आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: आप सुनाए आज नंदिनी को डेडिकेट और रानू गुप्ता जी को,
0: हाँ,
1: आपको भी।
0: थैंक यू।
1: आज का गीत है वो है खतरों के खिलाड़ी।
0: अच्छा ठीक है, बिल्कुल ये गीत हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन इसका कौन सा गीत?
1: तुमसे बना मेरा जीवन जी,
0: बहुत अच्छा गीत है तो, और मिल भी गया है हमें, तो ये हम आपको जरूर सुनाएंगे। ठीक है, चलिए तो फिर कल के प्रोग्राम में सुनिएगा अपनी पसंद का गीत। थैंक यू,
1: थैंक यू, नमस्कार।
0: नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते।
0: कौन है ये इतनी बार नमस्ते करने वाले हमारे श्रोता?
1: मैं फूलचंद पाल छतरपुर जिले के मनकारी गांव से बोल रहा हूँ।
0: फूलचंद पाल। फूलचंद जी, आपने बहुत टाइम बाद बात की है हमसे।
1: लगता है कविता मैडम बोल रही हैं आप।
0: जी हाँ बहुत पहचाना आपने, थैंक यू वेरी मच।
1: मैं कविता जी आपसे बात करने को तड़प रहा था।
0: सच में?
1: सच में बिल्कुल तड़प रहा था कि मैं क्या बताऊं कविता जी से, कैसे बात होगी, कब आप कविता जी का नंबर लगेगा, कब मेरी बात हो जाएगी। और आज मेरा ईश्वर ने सुन लिया।
0: देखिए इतना अच्छा, तो कुछ अच्छा अच्छा सोचा होता ना, इतनी सी बात में ही आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई।
1: कविता जी, वाकई में जो है आपकी आवाज बहुत ही मधुर, बहुत ही प्रिय है।
0: थैंक यू वेरी मच। और सुनाइए, मौसम कैसा है छतरपुर का?
1: कविता जी, मौसम तो बड़ा ही सुहावना है और बड़ा ही लुक्का छुपा वाला मौसम है। कभी बादल आ जाते हैं, कभी बादल छुप जाते हैं, कभी बादल फिर आ जाते हैं, और दोपहर में थोड़ा गर्मी होती है और शाम सुबह ठंडी होने लगती है।
0: बिल्कुल सही, बड़ी अच्छी अच्छी हवा चल रही है शाम को तो।
1: जी, और कुछ पानी यानी हमारे यहाँ छतरपुर जिले में गिर गया है, और खजुराहो का भी मौसम नजारा बहुत ही गलत गजब है। अब तो आपका घूमने का मौका आ गया है।
0: अब तो आना ही पड़ेगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, जून लास्ट वीक में पक्का प्लान करेंगे हम खजुराहो आने का।
1: जी, बिल्कुल, खजुराहो के मंदिर आपको बुला रहे हैं कि कविता जी आइए आइए आप, हम जो है, और आप जल्दी ही आएंगी लगता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा फुलचंद जी, बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: बिल्कुल कविता जी, फिल्म का नाम है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी,
0: अच्छा ये क्या बात है, आज
1: और
0: तो है ना ये।
1: गीत गीत
0: हाँ,
1: के बोल है कि पास पास वो आने लगे जरा जरा।
0: मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी।
1: जी,
0: हाँ जी, मिल गया हमको ये गीत तो, बहुत
1: और
0: अच्छा है।
1: ये गीत कविता जी आपको डेडिकेट रहेगा, और हमारे प्रेमदास बाबा जी हैं, मांगीलाल चंदेल जी हैं, और दिनकर सिंह जी हैं,
0: हाँ?
1: और विजय कुमार पांडे जी हैं, और सभी जितने श्रोता सुन रहे हैं सभी को डेडिकेट रहेगा। और पूनम बहन है हमारी कानपुर से, तो
0: अच्छा,
1: उनको भी डेडिकेट रहेगा, क्योंकि रेडियो से हमारे इतने सारी बहनें, इतने सारे मित्र मिल गए हैं कि हम कभी सोचते भी नहीं थे कि इतने
0: बिल्कुल
1: कहाँ
0: सही
1: मिलेंगे।
0: बात है, वाकई एक बहुत अच्छा
1: जी
0: परिवार है हमारा रेडियो,
1: जी
0: है
1: बिल्कुल
0: ना?
1: बिल्कुल, और देखिए कि कविता जी, रेडियो श्रोता जो बनता है वो बहुत ही दिलदार होता है जब बन पाता है।
0: बिल्कुल सही बात है ये। चलिए, कॉल
1: जी,
0: करने के लिए धन्यवाद, क्योंकि हमारे दूसरे कॉलर्स भी इंतजार कर रहे होंगे कि उनका कॉल लगे। ठीक है
1: बिल्कुल, सभी
0: जी
1: श्रोताओं का
0: फुलचंद
1: फोन
0: जी।
1: लगे। बहुत
0: जी
1: बहुत कविता
0: जी
1: जी, आपको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार,
0: जी आपको भी धन्यवाद।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी,
1: जिला सीनी ग्राम पातरफोड़ी से राहुल ध्रुवे बात कर रहा था। ध्रुवे?
0: राहुल धुर्वे।
1: हाँ जी।
0: हाँ जी राहुल, बताइए कैसे हैं आप।
1: अभी तो गर्मी पड़ रही है, थोड़ा मतलब पानी भी गिरा है कल, तो थोड़ा सा ठंडक है जरूर है यहाँ पे, लेकिन इससे पहले काफी गर्मी थी।
0: अरे भाई, हमने तो मौसम के बारे में थोड़ी ना पूछा है, आपके बारे में पूछा है, आप कैसे
1: हम भी अच्छे हैं मैम अभी तो।
0: हैं चलिए, क्या काम
1: और
0: करते हैं
1: आप?
0: राहुल जी
1: हाँ जी,
0: अभी, आप काम क्या करते हैं।
1: मैं वीडियो कॉल डीटीएच के ऊपर जॉब करता हूँ।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अच्छा कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आज।
1: जाने अनजाने मूवी का है। हाँ,
0: जाने अनजाने,
1: पिया पिया वो पिया पिया।
0: एक मिनट हम सर्च कर लें पहले, है कि नहीं जाने अनजाने। मिल गया, लेकिन इसमें पिया पिया वाला गाना तो नहीं दिख रहा है मुझे।
1: हाँ मैम,
0: आप कोई और उसका कोई बोल जो शुरू के है ना, वो कुछ और होगा।
1: नहीं, प्रिया प्रिया तू चांद है पूनम का।
0: चलिए मैं एक बार और देखूंगी। नहीं।

0: है यहाँ पर उसका जाने अनजाने जरूर, उसकी शुरुआत क्या जाने अनजाने से है क्या?
1: नहीं, प्रिया प्रिया हो,
0: छम
1: प्रिया
0: छम
1: प्रिया,
0: बजे रे पायलिया उससे है।
1: नहीं,
0: अच्छा, तेरी नीली नीली आंखों के।
1: नहीं, चांद है पूनम का, ऐसा
0: चलिए
1: है कुछ
0: अच्छा,
1: कुछ है।
0: मैं देखती हूँ जाने अनजाने फिल्म का पिया पिया।
1: हाँ,
0: यदि
1: प्रिया
0: ये गीत
1: प्रिया हो,
0: नहीं
1: प्रिया
0: मिला,
1: प्रिया तू चांद है पूनम का,
0: ठीक है, और अगर ये गीत नहीं मिला तो फिर कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: इसमें आप मतलब
0: इसी फिल्म
1: साजन का
0: का,
1: घर का कर दीजिए।
0: साजन के घर का,
1: हाँ,
0: उसका कौन सा गीत?
1: इसका नजर जिधर जिधर जाए उधर तू ही नजर आए।
0: चलिए, गाने तो आपने बहुत ही अच्छे चॉइस किए, ठीक
1: मैम,
0: है।
1: मैं ये कहना चाह रहा था,
0: हाँ कहिए।
1: इसमें मैंने मतलब इससे पहले 15 दिन पहले कॉल किया था तो मेरा नाम ही नहीं आ पाया था इससे।
0: कभी कभी ऐसा होता है कि है ना, श्रोता हमारे बहुत सारे हो जाते हैं, उनके कॉल्स हम लोग ले लेते हैं, और जब एडिटिंग करने बैठते हैं तो हमको सिर्फ 58 मिनट का ये प्रोग्राम तैयार करना होता है, तो कुछ कॉलर्स हमारे छूट जाते हैं इस चक्कर में।
1: तो मैम, मैं ये कहना चाह रहा था,
0: हाँ
1: अगर मान लीजिए कॉल अगर ज्यादा 11 बजे तक, जैसे 10:30 से 11 तक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप,
0: जी,
1: तो गानों को थोड़ा शॉर्ट कर दीजिए, लेकिन जो कॉलर हमारे जुड़ते हैं उनको तो मतलब शामिल कर लीजिए तो ये बेहतर हो पाता।
0: चलिए कोशिश करेंगे आपकी कही बात पे अमल किया जाए, ठीक है राहुल जी।
1: हाँ जी, दोस्तों का नाम ले सकता हूँ?
0: हाँ बिल्कुल, फटाफट ले लीजिए क्योंकि हमारे बहुत सारे कॉलर्स इंतजार कर रहे हैं।
1: मध्य प्रदेश सागर से नितिन कटारे, और शिमला से रहेंगे राकेश जी।
0: चलिए, धन्यवाद राहुल जी कॉल करने के लिए, नमस्कार।
1: धन्यवाद मैम।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, स्वागत है आपका।
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्ते जी।
1: आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लवानिया बोल रहा हूँ। दीदी
0: राजू,
1: लवानिया,
0: ओके, राजू लवानिया जी, आपसे पहले भी बात हो चुकी, लेकिन आज इतना डिस्टरबेंस क्यों आ रहा है?
1: दीदी मौसम थोड़ा सा खराब हो रखा है। हल्के बादल हैं, रात को बारिश हुई है, बिजली चमकी है, बिजली कड़की है, तो थोड़ा मौसम का
0: चलिए
1: देखते
0: ठीक है। क्या हाल है राजू जी आपके?
1: हैं। जी हम तो ठीक हैं दीदी, और हम जानना चाहेंगे हमारी आकाशवाणी भोपाल टीम कैसी है।
0: हमारी टीम बहुत बढ़िया है, आप सबका स्नेह हमारी टीम के साथ है तो अच्छी ही होगी।
1: बिल्कुल दीदी, हमारी भी यही कामना है, आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त रहें, ताकि हमें अच्छे अच्छे कार्यक्रम भी सुनने को मिले, और आप सब लोग ऐसे ही मस्त मस्त बने रहें, सभी लोग फिट
0: चलिए,
1: और
0: बहुत बहुत आभार आपका राजू जी, इतनी अच्छी अच्छी विशेष देने के लिए। और बताइए, आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: दीदी। सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ कोई भी गीत सुनवा दीजिए, क्योंकि सुमन कल्याणपुर जी अभी इस दुनिया में नहीं रही हैं।
0: बिल्कुल, तो उनको आप श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं?
1: बिल्कुल, हम अपनी तरफ से भी और सभी श्रोताओं की तरफ से भी और
0: बिल्कुल,
1: आकाशवाणी भोपाल की पूरी टीम की तरफ से
0: बहुत
1: हम
0: बहुत
1: उन्हें भावभीनी
0: धन्यवाद, आपने
1: श्रद्धांजलि
0: बहुत
1: देते
0: अच्छा
1: हुए
0: सोचा
1: उन्हें
0: है।
1: याद करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सोचा है। हम आपको ये गीत जरूर सुनवाएंगे, कल के प्रोग्राम में आप अवश्य सुनिएगा।
1: ओके दीदी,
0: ठीक,
1: नमस्कार।
0: नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नमस्ते
1: नमस्ते मैडम। गाना
0: नमस्ते। हाँ,
1: सुनना है मैडम?
0: नाम तो बताइए।
1: मैं अमीना दी मंसूरी बोल रही हूँ, पालडाना का, इंदौर से। अमीना
0: हसीना भी मंसूरी?
1: अमीना
0: अमीना।
1: जी मैडम, उस दिन में लगाया मैंने। अच्छी
0: अच्छा, हाँ जी, कैसी हैं आप?
1: हूँ मैडम, अब तो आपकी दुआ है।
0: इंदौर से बोल रही हैं ना?
1: हाँ, इंदौर से बोल रही हूँ, पालडाना का, इंदौर से। बहुत दिन में
0: चलिए,
1: लगाया मैडम, थोड़ी तबीयत ऐसी थी मेरी।
0: क्यों, क्या हो गया था आपको?
1: अरे, मेरे को ये थोड़ा सा जी वगैरह था, ब्लड प्रेशर की वजह से, तो एकदम से उल्टी होने लगी, तो भर्ती कर दिया था अस्पताल में। तो अब तो
0: ओहो,
1: आराम है मैडम, बहुत आराम है अब तो।
0: चलिए, लेकिन रेगुलर अपना ध्यान रखा करिए और बीपी की दवाई टाइम से खाया करिए। हाँ
1: जी मैडम, गोली तो खाती हूँ, मतलब थोड़ा कमजोरी हो गई थी ना।
0: हाँ चलिए, आप पहले अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ रखिए, यही हम सबकी दुआएं हैं, ठीक है?
1: जी मैडम,
0: चलिए, अच्छा बताइए, आज कौन सा गीत सुनेंगी?
1: फिल्म इज्जत गाने के बोल,
0: हाँ,
1: क्या मिलना है ऐसे लोगों से
0: अच्छा
1: जिनकी, हाँ, जिनकी फिजरत छुपी रहे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा बिल्कुल, अवश्य जरूर सुनवाएंगे ये गीत हम आपको। और अगर ये गीत ना मिला तो
1: मैडम,
0: क्या
1: आपकी आवाज
0: मिलना।
1: बिल्कुल धीरे आ रही है, बड़ी मुश्किल से सुन पा रही
0: हाँ,
1: हूँ।
0: सही कह रही हैं आप, आवाज बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है अमीना जी, थैंक यू। कल के प्रोग्राम में अपना गीत सुनिएगा।
1: जी मैडम, थैंक
0: नमस्ते।
1: यू मैडम,
0: ओके,
1: आपको भी नमस्ते मैडम।

0: वंदना उपाध्याय बोल रही हूँ।
1: मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने ये आवाज सुनी सुनी है।
0: हाँ अमिता दीदी, नमस्ते नमस्ते। बहुत दिनों बाद आई आप।
1: देखो वंदना जी,
0: फिर
1: फिर आपको गलतफहमी हो गई। जी
0: कविता दीदी बोल रही ना,
1: हाँ,
0: देखा। आपकी बात हुई थी मेरी कविता दीदी से।
1: बिल्कुल, वो तब भी आप ऐसी कंफ्यूज हुई थी।
0: हाँ, बिल्कुल देखा। उसके बाद आज लगा रही हूँ मैं फोन।
1: तो आप ये बताओ, आपको अमिता दीदी में और कविता दीदी में फर्क नहीं नजर आ रहा?
0: आवाज क्या है दीदी, स्लो आती है इसमें, और जब रेडियो पे सुनते हैं तो क्लियर आवाज आती है थोड़ी।
1: अच्छा, ये
0: हाँ
1: चक्कर है, चलो कोई बात नहीं। हाँ वंदना जी, बताओ
0: आज
1: आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: गाना सुना दी, जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी
1: अच्छा,
0: चोरी मेरे दिल में समाते हो।
1: कौन सी फिल्म का है ये गाना?
0: गाना पिक्चर
1: खैर,
0: का
1: मिल
0: नाम तो
1: जाएगा,
0: नहीं है दीदी, आज तो
1: मिल
0: दूसरा
1: जाएगा।
0: बता दूँ।
1: हाँ दूसरा भी बता दो, वैसे ये गाना भी मिल जाएगा।
0: मिल जाएगा
1: हाँ लेकिन एक और बता दो
0: दूसरा,
1: फिर
0: फिर
1: भी।
0: वो कौन सा है, तू गैरों की क्यों हो गई, तू हमारी थी जान से प्यारी थी।
1: ओ भगवान, कहाँ कहाँ के ढूंढ के ला रही हूँ वंदना जी ये गाने। नहीं
0: सिंपल
1: नहीं सिंपल नहीं, आप तो बिल्कुल कठिन से कठिन दीजिए, तगड़ा होना
0: मैं सोचती हूँ
1: चाहिए।
0: ये वाला गाना नहीं सुना अभी, रेडियो में भी बहुत अच्छे अच्छे गाने आ रहे थे, पुराने पुराने,
1: हाँ
0: तो
1: तो
0: मुझे
1: आपने
0: तो
1: नोट
0: बहुत
1: कर लिया
0: पुराने
1: कि
0: पुराने गाने
1: आप
0: भी बहुत पसंद है। केएल सहगल का है एक गाना,
1: हाँ?
0: रूही रूही तू मेरे सपनों की रानी।
1: ओ
0: बहुत अच्छा लगता है मुझे वो रूही। और भी
1: हाँ,
0: पुराने पुराने गाने, मैंने एक दिन वो उसका कौन है वो गायिका,
1: भाई सुनो, गैरों पे तो ये वाला गाना मेरे सामने आया, गैरों पे करम।
0: गैर पे करम नहीं, तू हमारी थी जान से प्यारी थी, तू औरों की क्यों हो गई।
1: किसकी आवाज में है ये भी नहीं
0: ये
1: पता।
0: वो हीरो है जॉय मुखर्जी, कौन है उनकी पिक्चर का गाना है शायद।
1: कोशिश करते
0: और
1: हैं।
0: अच्छा अच्छा ठीक है, सिंपल सा बता देती हूँ, जल्दी मिल जाए। जो कौन सा बता दूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
1: देखो
0: अमिताभ
1: वैसे तो
0: बच्चन
1: आपका
0: का
1: ये
0: सुना
1: पहले गीत
0: दीजिए
1: मिल
0: फिर
1: जाएगा,
0: आपको
1: जहां
0: उनका
1: मैं
0: रिव्यू।
1: जाती हूँ वहीं चले
0: वहीं
1: आते
0: चले
1: हो।
0: आते हो, चोरी चोरी दीदी,
1: चलो
0: आप
1: टेंशन
0: तो
1: नहीं लो, मिलेगा यही गाना मिलेगा।
0: अपन
1: ढूंढ के लाएंगे।
0: लोग इतना अच्छा प्रोग्राम देते। कल तो मेरे यहाँ लाइट नहीं थी, तो कल तो मैं फोन करेगी, कल का सुन नहीं पाई, तो मेंटेनेंस चल रहा, तो बिल्कुल मुझे बहुत लगा कि
1: तो
0: इन्वर्टर भी
1: आप है
0: बंद
1: ना,
0: हो गया
1: न्यूज
0: था, वो
1: न्यूज
0: एसी
1: ऑन
0: भी नहीं
1: या
0: लगा।
1: एप्लीकेशन पर नहीं सुनते क्या, मोबाइल पर?
0: मोबाइल में दीदी हम डाउनलोड कर हो ही नहीं पा रहा मेरे मोबाइल में, कैसे करते वो, मैंने कई
1: अरे
0: बार किया नहीं होता।
1: नहीं, डाउनलोड हो जाता है, बहुत इजीली हो जाता है, और फिर उसको है ना सिलेक्ट कर लो, लाइव पर जाकर भोपाल सिलेक्ट कर लो,
0: अच्छा
1: और बहुत अच्छे से सुनाई देता है, बहुत क्लियर सुनाई देता
0: ठीक है, मैं आज ही
1: है
0: करवाती
1: ना।
0: हूँ, मैं करती हूँ। प्ले स्टोर में जाके भी किया, पर वो
1: प्ले
0: चला
1: स्टोर
0: जाता
1: में
0: है
1: जाके ही
0: बूट।
1: करना पड़ेगा, न्यूज
0: नहीं मैंने
1: ऑन ए आई
0: किया, नहीं
1: आर।
0: हुआ मुझे तो
1: अच्छा
0: इतना वो है, जब एक भी अगर मिस हो गया, आज किस किस के गाने आए, बहुत उम्मीद रहती है, तो लगा रहता है, पता नहीं जो
1: चलो,
0: मेरे
1: एक बार
0: किसी
1: और
0: जी
1: कोशिश करना, पक्का होगा। ठीक है,
0: दीदी, आप कभी कभी नमस्ते, और आप
1: नमस्ते,
0: पहचानने में गलती हो गई तो
1: कोई
0: सॉरी।
1: बात नहीं, कोई बात नहीं,
0: अमिता
1: ओके।
0: दीदी क्या है, मैं अमिता दीदी से बहुत बात करती हूँ, मतलब जितने बार भी कभी फोन लगाया अमिता दीदी और आप रहती हो तो वो कंफ्यूज हो जाते हो, रेडियो इस मोबाइल में बहुत दबी आवाज आती है। ठीक
1: चलो कोई बात नहीं, ओके
0: है
1: ओके,
0: दीदी,
1: थैंक यू,
0: नमस्ते,
1: बाय
0: कल
1: बाय।
0: सुनेंगे आप।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। इसी के साथ अनुमति दीजिए इस कार्यक्रम से अपनी रेडियो सखी कविता रावत को नमस्कार।
1: ये प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया जा रहा था। अब समय है इस घंटे की खास खबरों का।
2: आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। ये पहल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत का स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। प्रदेश में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून तक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही एक पेड़ माँ के नाम अभियान में विद्यालयों महाविद्यालयों और सामाजिक संगठनों को जोड़ा जाएगा। वन विभाग ने गुप्तचर ऐप विकसित किया है। अब स्थानीय नागरिक स्वयं को गुप्तचर के रूप में पंजीकृत कर वन संरक्षण अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए ई केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया है। श्रमिकों को अपनी लंबित ई केवाईसी एक माह के भीतर पूर्ण करनी होगी। और भोपाल में 6 और 7 जून को राज्य स्तरीय आम महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव में प्रदेश में उत्पादित विभिन्न आम की किस्मों एवं उनके प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों को प्रदर्शित किया जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का पहला नगमा हमने लिया है, आवाज सुमन कल्याणपुर की है, इंदिवर के बोल हैं और फिल्म का नाम है रॉयल मेल। पसंद आप सब श्रोताओं की। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारनी, सूरज, सुजला, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर और इनके परिवार के सदस्य भाटापारा दत्तरेंगी से इस गीत को सुनना चाहा है। द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा ने। तो आइए सुनते हैं रॉयल मेल फिल्म का ये गीत।

आपको सुनवा रहे हैं उत्सव फिल्म का वो नगमा जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर और आशा भोसले ने। वसंत देव का लिखा हुआ गीत है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। पसंद आप सब श्रोताओं की। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, शोभा शारदा दामिनी इस गीत को सुनना चाहती हैं। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन ने इस गीत को पसंद किया है। तो आइए सुनते हैं उत्सव फिल्म का ये गीत।

और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अंगूर फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है आशा भोसले ने। गुलजार का लिखा हुआ ये गीत है, संगीत आरडी बर्मन का। पसंद आप सब श्रोताओं की है, ये पत्र हमें लिख भेजा है रुचि और इनके परिवार ने। रामचंद माखीजा, काफिर भाई, सविता, स्वाति, माही, छुटकी, शरद और संपूर्ण माखीजा परिवार इस गीत को सुनना चाहते हैं धमतरी बनियापारा से। तो आइए सुनते हैं इन सबकी पसंद पर अंगूर फिल्म का ये गीत।

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं बुढ़ा मिल गया फिल्म का वो गीत जिसे गाया है आशा भोसले और किशोर कुमार ने। संगीत आरडी बर्मन का है, गीत लिखा है मजरूह ने। पसंद आप सब श्रोताओं की। अयूब खान, इरम, गुड़िया, शोएब, नावेद और जीशान ने इस गीत को सुनना चाहा है। ये पत्र हमें मिला है करूला मुरादाबाद से। तो आइए सुनते हैं इन सब की पसंद पर फिल्म बुढ़ा मिल गया का ये गीत।

कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं, आपको सुनवा रहे हैं जंतर मंतर फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी ने, हसरत जयपुरी के बोल हैं, संगीत है शरद मलिक का, सरदार मलिक का। पसंद आप सब श्रोताओं की, प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले, इन्होंने नांदेड़ से ये गीत सुनना चाहा है। औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजदीप और राशि इस गीत को सुनना चाहती हैं, तो आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म जंतर मंतर से।

0: अब आपको सुनवा रहे हैं द ट्रेन फिल्म का वो गीत जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत आरडी बर्मन का। पसंद आप सब श्रोताओं की। रुचि शुक्ला, रीना शुक्ला गीत और कृष्णा शुक्ला ने ये गीत पसंद किया है रीवा से। दिल्ली शहर से ये गीत सुनना चाहते हैं कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। तो आइए सुनते हैं द ट्रेन फिल्म का ये नगमा।
1: वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं

0: तुझ पे फिदा, मैं क्यों हुआ आता है गुस्सा मुझे प्यार पे।
1: द ट्रेन फिल्म के इसी गीत के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारा अगला प्रसारण इस अंतराल के बाद होगा।

0: पूरी प्रशंसा कर रही है।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं धारावाहिक सिसकियां। आज सुनिए इसकी 8वीं कड़ी।
2: वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक सिसकियां। ये धारावाहिक खेमलता बकलू के उपन्यास खिला फूल मुरझाया पर आधारित है।

0: पिछली कड़ी में आपने सुना कि फाता पैसों की लालच में आकर सारे का दूसरा निकाह रसूल से करवाना चाहती है, जो औरत को पांव की जूती से ज्यादा कुछ नहीं समझता। इस बात का पता चलने पर मुश्ताक को सदमा पहुंचता है और वो बीमार पड़ जाता है। अब आगे।
1: कुछ बात करनी है तुझसे।
2: हाँ बोल।
1: मैं जो सुन रही हूँ क्या वो सच है?
2: क्या सुन रही है तू?
1: तू मेरा दूसरा निकाह पढ़वाने की बात कर रही है?
2: हाँ सच सुना है तूने।
1: मुझसे पूछे बगैर तू मेरा निकाह तय कैसे कर सकती है अम्मी?
2: मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना, और मैं जो भी कर रही हूँ वो तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ।
1: अब इसमें मेरी क्या भलाई है? तू एक भलाई तो पहले ही कर चुकी।
2: बस कर, आज तक उस मुश्ताक को भूली नहीं है। कान खोलकर सुन ले, तेरा निकाह अब उसी जगह होगा जहाँ मैं चाहूंगी।
1: मैं ये निकाह नहीं करूंगी।
2: तेरा निकाह रसूल से ही होगा, और अपने मन की कोई बात हो भी तो उसे वहीं दफन कर ले, क्योंकि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी।
1: मेरा निकाह मुझसे पूछे बगैर तू कैसे कर सकती है अम्मी? मैं ये निकाह नहीं करूंगी, नहीं करूंगी।
2: अरे तुझसे पूछने की मुझे जरूरत नहीं है, और मैं तेरी माँ हूँ, जहाँ कहूँगी वहीं तेरा निकाह होगा।
1: लेकिन मैं उस रसूल से निकाह नहीं कर सकती।
2: क्यों? क्या कमी है उसमें?
1: तू खूब जानती है अम्मी उस रसूल में क्या कमी है। गांव का बच्चा बच्चा जानता है नूरी के साथ क्या किया उसने। ये बात क्या छिपी है किसी से?
2: अरे जा, नूरी बदजात थी, रसूल से उल्टा जुबान लड़ाती थी। रसूल ने जो किया सही किया। औरत को अपने शौहर की बात पर ही चलना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसे वही सजा मिलती है, और उसका हश्र नूरी जैसा होता है। पर रसूल तुझे खुश रखेगा बेटी, उसके पास पैसा भी खूब है, मेहनत करता है, कमाता है। तुम दोनों बहुत बहुत खुश रहोगे।
1: नहीं अम्मी, पैसा कमाने से कोई अच्छा आदमी नहीं हो सकता। अम्मी, पूरे गांव में एक भी आदमी ना होगा जो रसूल के बारे में अच्छा सोचता हो, और तुम मेरा निकाह उसी के साथ पढ़वाना चाहती है?
2: अरे लोगों का क्या, लोग उसके पैसों से जलते हैं, उसकी तकदीर से जलते हैं।
1: तू अपने आप को धोखा दे रही है अम्मी, लेकिन मैं कह देती हूँ, मैं उस रसूल से कभी निकाह नहीं करूंगी।
2: बहुत जुबान चलने लगी है तेरी, एक बात कान खोल कर सुन ले। तुझे रसूल से निकाह करना होगा, और ये मेरा आखिरी फैसला है।
1: मैं इस फैसले को नहीं मानती।
2: तो उस मुश्ताक की बांदी बनकर रहती, उस घर में नौकरानी बनकर रहती।
1: अम्मी,
2: भूल जा उस मुश्ताक को, अब तेरा निकाह रसूल से होगा।

सारे के लाख मना करने के बावजूद फाता उसका निकाह रसूल के साथ कर देती है। निकाह के कुछ दिनों बाद ही उन दोनों में अनबन शुरू हो जाती है।

0: खाना बन गया क्या? बड़ी भूख लगी है। साराय, साराय मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। अरे अरे क्या सोच रही है, खाना दे।
1: हाँ लाती हूँ।
0: और ये रोनी सूरत क्यों बना रखी है तूने?
1: वो कुछ नहीं, बस।
0: कुछ नहीं? अरे तो क्या तू हंस नहीं सकती? रोनी सूरत बनाकर मेरे सामने खड़ी हो जाती है।
1: नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम खाना खाओ।
0: अरे रोनी सूरत लेकर खड़ी है और मैं खाना खाऊं?
1: खाना क्यों फेंक दिया?
0: चुप कर, रहती है मेरे साथ और रोती है उस मुश्ताक को याद करके। अब अगर मेरे सामने आई तो अच्छा ना होगा। अब जा यहाँ से, ऐसे क्या देख रही है मुझे, चल।

0: अब्बू अब्बू खाना खा लो, काम पर भी तो जाना है।
1: ला दो बेटा।
0: अब्बू मायूस लग रहे हो, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है?
1: ठीक ही हूँ बेटा, तबीयत का क्या होता है, तकदीर में जो लिखा है वही तो देखूंगा।
0: ऐसा क्यों सोचते हो अब्बू? दिल छोटा ना करो, जब तकदीर में ऐसा ही लिखा था तो इसके अलावा और क्या होगा, बस भुगतना तो है ही।
1: रसूल कब आ रहा है?
0: पता नहीं अब्बू, कहा तो था कि एक महीने में आ जाएगा।
2: सारे सारे
0: अब्बू लगता है रसूल आ गया।
1: जा उसे देख बेटा, किसी चीज की जरूरत हो उसे।
0: हाँ तुम जाओ अब्बू, मैं देखती हूँ।
2: साराय साराय
0: आती हूँ।
2: साराय साराय
0: कहा ना आती हूँ, फिर शोर क्यों मचा रहे हो?
2: क्या कर रही थी?
0: अब्बू को खाना खिला रही थी।
2: जब मैं आया तो पहले मेरे पास आना चाहिए था, तुम्हें तो मेरा ख्याल ही नहीं है।
0: चाय लाऊं?
2: रहने दे, मेरे आते ही तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज जाते हैं? पता नहीं किस मनहूस घड़ी में वास्ता पड़ा था तुझसे। अरे अब कहाँ जा रही है?
0: रसोई में।
2: चुपचाप यहीं खड़ी रह, समझी?
0: तुम हमेशा मुझसे इसी तरह क्यों बोलते हो?
2: तो चूमो तुझे? अरे सूरत तो ऐसे बनाए रहती है जैसे मैं मर गया हूं। अरे जा जा, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, जा उसी के पास जा जिसने तुझे थूक दिया है।
0: रसूल, अपने दिमाग की गंदगी अपने पास रखा करो।
2: अभी बताता हूँ तुझे।
0: रसूल

0: अबू चाय।
1: रहने दो बेटी, मन नहीं है।
0: अरे चाय पी लो।
1: अरे कहा ना रहने दो।
0: क्या हुआ, चाय क्यों नहीं पी रहे?
1: मन नहीं है।
0: अब मन नहीं है या और कोई बात है?
1: कोई बात हो भी तो तुम्हें क्या, तुम अपना काम तो कर ही रही हो।
0: तुम्हारे कहने का मतलब क्या है?
1: मैं क्या कह रहा हूँ तुम अच्छी तरह जानती हो।

0: पर तुम जानना नहीं चाहती।
1: अरे तुम बेकार की बातें सोच कर अपना मन खराब कर रहे हो। मेरी मानो तो जैसा चल रहा है चलने दो।
0: अरे सारे को देखो।
1: क्या हुआ है सारे को? अच्छी भली तो है।
0: तुम माँ हो उसकी या?
1: चुप करो, कभी तो मुबारक शब्द बोलो।
0: सारे के साथ रसूल कैसा बर्ताव करता है जानती हो?
1: अरे रसूल ठीक है, सारे ही उससे अच्छा बर्ताव नहीं करती तो ऐसा होगा ही।
0: फाता, तूने पैसों के लालच में आकर ऐसा किया है और अब रसूल के चंद पैसों ने तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल दिया है, जो तुम अपनी बेटी के दुख को नहीं देख पा रही हो। तुमने माँ होकर सारे को एक जानवर के हाथ में दे दिया है, जो हर बार उस पर जुल्म करता है, मारता पीटता है और सारे पल पल घुटती है।
1: अजी हटो भी, अब रहने भी दो। रसूल इतना बुरा नहीं, सारे अगर दो अच्छे बोल बोल लेगी तो जुबान नहीं कट जाएगी उसकी। हमेशा रोनी सूरत लेकर जाती है उसके पास, तो क्या बुरा करता है वो? अरे औरत उसी का प्यार पाती है जिसका मर्द उससे प्यार करे। पर सारे की ऐसी सूरत देखकर किसे प्यार आएगा? बोलो, बोलते क्यों नहीं?
0: इसकी जिम्मेदार भी तुम ही हो। तुमने अगर सारे का निकाह रसूल से ना किया होता तो ऐसा कभी नहीं होता।
1: अरे जाने दो, मैंने सारे की खुशी के लिए किया है ये सब।
0: तुम माँ नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अगर होती तो सारे का दुख देखती। मैं नहीं देख सकता, नहीं देख सकता।
1: हाँ हाँ, अगर नहीं देख सकते तो सारे को समझाओ कि वो रसूल से अच्छा बर्ताव करे, और नहीं तो तुम अपनी आंखें बंद कर लो।
0: मैं जा रहा हूँ, पुरानी कोठी में रह लूंगा, पर यहाँ रहकर सारे का दुख नहीं देख पाऊंगा।
1: ठीक है, जाओ। बड़े आए प्यार जताने वाले। अरे जितना पैसा रसूल देता है हमें उसका एहसान मानना चाहिए।

0: अब्बू।
1: कौन? सारे?
0: हाँ।
1: आ गई बेटी।
0: खाना खा लो अब्बू।
1: रख दे बेटा।
0: अब्बू एक बात पूछूं?
1: हाँ।
0: सच सच बताएंगे?
1: पूछो बेटी, क्या बात है?
0: अब्बू सब कुछ जानते हुए भी आपने मेरा दूसरा निकाह क्यों किया?
1: ये सवाल मुझसे ना पूछा कर बेटी।
0: क्यों ना पूछूं अब्बू?
1: मैं तेरे इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा।
0: मैं एक लड़की हूं, इसीलिए ना, आप पर बोझ बन गई थी, ऐसा ही था ना अब्बू?
1: नहीं,
0: लड़की सिर्फ जुल्म सहने के लिए होती है क्या? क्या लड़की की अपनी कोई जिंदगी नहीं होती? वो अपनी खुशियों को अपने तरीके से नहीं पा सकती, वो खुलकर हंस नहीं सकती, बोल नहीं सकती, अपनी जिंदगी को दूसरों के हाथों घोटती रहती है, बस पिसती रहती है, महज देह बनकर। आपने सब जानते हुए भी आप चुप रहे, मेरी बर्बादी देखते रहे आप, क्यों अब्बू? क्यों होने दी?

0: मेरा दूसरा निकाह उस रसूल के साथ, क्यों अबू क्यों?
1: बेटा मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तेरे इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। बस इतना जान ले कि तू अपनी अम्मी की नाजायज इच्छाओं की बलि वेदी पर चढ़ी है। वो चाहती है कि उसका जमाई उसे खूब पैसा दे। रसूल तेरी माँ को पैसा देता है और यही वजह है कि वो तुम पर होने वाले जुल्मों को अनदेखा करती है। पैसे के लालच ने उसे माँ से शैतान बना दिया है बेटी।
0: आपने कुछ क्यों नहीं किया अबू?
1: मैं मजबूर हूँ बेटी, तू जा घर जा बेटी।
0: अबू आप रो रहे हैं। अबू
1: नहीं बेटी, रो नहीं रहा हूँ, अपने गुनाहों की सजा पा रहा हूँ।
0: अबू
1: तू जा बेटे, तुझे देर हो रही है। ये तूने क्या किया इस फूल सी बच्ची?

0: कुछ समय बाद मुश्ताक के बीमार होने की खबर सुनकर हसन भट्ट उससे मिलने जाता है।
1: अरे फजी, जरा देखना तो कौन है।
2: देखती हूँ। अरे हसन भाईजान, आप? सलाम।
3: वालेकुम सलाम।
2: आइए, अंदर आइए।
3: क्या करीम भाईजान घर पे नहीं है?
1: अरे अरे हसन भट्ट, अस्सलाम वालेकुम। आइए।
3: वालेकुम सलाम।
1: आइए आइए, बैठे बैठे। हाँ भाई। अरे भाई फजी, जरा दो कप चाय तो बनाओ।
2: जी।
3: सब ठीक तो है ना?
1: बस सब ठीक है। कैसे हो हसन भट्ट? फातह कैसी है और सारे?
3: सब ठीक है।
1: आपके चेहरे पर मायूसी दिख रही है।
3: पहले ये बताइए, मुश्ताक कैसा है? सुना है उसकी तबीयत खराब है, सो मिलने आ गया।
1: ओ, बस क्या बताऊं, दवा असर ही नहीं कर रही है। दिनों दिन हालत खराब होती जा रही है।
3: किसी अच्छे डॉक्टर से क्यों नहीं मिलते?
1: हाँ बस वो इंतजाम में लगा हूँ, कुछ पैसे हाथ आ जाए तो दिखाऊंगा। मुश्ताक के बीमार हो जाने से भाई घर की माली हालत गड़बड़ा गई है।
3: करीम भाई, आप पैसों की चिंता ना करें, हम मदद करेंगे। अभी मैं जाता हूँ, एक डॉक्टर को लेकर आता हूँ।
1: आप?
3: उनका बड़ा नाम है, अल्लाह ताला ने चाहा तो मुश्ताक जल्दी ही ठीक हो जाएगा।
1: अरे नहीं नहीं हसन भट्ट, आप तकलीफ ना करें।
3: तकलीफ कैसी, मुश्ताक के प्रति मेरा भी तो कुछ फर्ज है, मुझे ना रोके।
1: अब जैसा आप बेहतर समझें।

0: अरे करीम भाई, ये है डॉक्टर साहब।
1: डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
1: आइए डॉक्टर साहब, मुश्ताक उस कमरे में
2: जी। अच्छा,

0: मैंने मुश्ताक को देख लिया है
1: जी।
0: मैं कुछ दवाई लिख देता हूँ, अल्लाह ने चाहो तो मुश्ताक एक सप्ताह में दौड़ने लगेंगे।
1: आमीन। डॉक्टर साहब आपकी फीस
0: आप फिक्र न करें, असाइनमेंट ने फीस पहले ही दे दी है, आप दवा मंगवा कर समय से दवा दें। अच्छा मैं चलता हूँ, जरूरत लगे तो मुझे बुलवा भी लीजिए।
1: जी
2: अच्छा डॉक्टर
1: जैसे आप बेहतर समझें।
2: ये दवा ले, समय पर दवा देते रहिएगा, मुश्ताक जल्द ठीक हो जाएगा।
1: हसन भट्ट आपका शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं, मेरे समझ में नहीं आता।
2: अरे ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा करीम भाई अब मैं चलूंगा।
1: खुदा हाफिज।
2: खुदा हाफिज।
3: कौन?
0: मैं मुश्ताक।
3: मुश्ताक मुश्ताक आप
0: सारे तुम अब्बू कहाँ हैं?
3: अब्बू बाहर गए हैं, आते ही होंगे, आओ बैठो।
0: कुछ बोलो सारे, नई जिंदगी कैसी चल रही है?
3: बेहतर है।
0: सारे एक बात पूछूं, सच बताओगी?
3: पूछो।
0: तुम मुझसे तलाक लेकर खुश हो? अगर ऐसा है तो मुझे किसी से कोई शिकायत ना होगी।
3: तुमने मुझसे दगा किया है मुश्ताक, प्यार का ढोंग रचते रहे हो, इंतजार भी ना कर सके और तलाकनामा भेज दिया।
0: सारे मेरे प्यार पर तोहमत ना लगाओ, तुमने तलाकनामा भेजा और मैंने तो सिर्फ तुम्हारी रजा मानकर उस पर दस्तखत किए हैं।
3: क्यों झूठ बोलते हो मुश्ताक, अपने गुनाह को मेरे सर क्यों मढ़ रहे हो? मैं ऐसा क्यों करती भला? मैं तुमसे तहे दिल से मोहब्बत करती थी, आज भी करती हूँ।
0: सारे अगर तुमने तलाकनामा नहीं भेजा तो फिर हमारे साथ धोखा हुआ है। हाँ सारे कोई है जिसने हमारे बीच ये दूरियां पैदा की है।
3: पर ऐसा कौन हो सकता है?
0: अल्लाह ना करे ऐसा हो, पर तुम्हारी अम्मी ही ऐसा कर सकती है।
3: क्या?
0: हाँ जैसा लोगों ने मुझे बताया है कि रसूल के पैसों की वजह से तुम्हारी अम्मी ने पहले हमें तलाक दिलवाया और फिर तुम्हारा निकाह रसूल से कर दिया।
3: इसका मतलब हमारे साथ धोखा हुआ है मुश्ताक। मेरा दिल कहता था मुश्ताक कि मेरा मुश्ताक ऐसा नहीं कर सकता। मैं तुमसे आज भी प्यार करती हूँ मुश्ताक, आज भी।
0: मैं भी। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता सारे, तुम्हारा दूसरा निकाह हो चुका है। तुम खुश रहो, अब यही दुआ करूंगा कि मेरा प्यार जहां भी रहे सलामत रहे।
3: मुश्ताक अल्लाह जानता है या मैं जानती हूँ कि रसूल के साथ सिर्फ मेरा शरीर रह सकता है, तुम्हारी सारे नहीं मुश्ताक।
0: तो क्या तुम रसूल के साथ खुश नहीं हो?
3: मैं कैसे खुश हूँ ये देखना चाहते हो? ये देखो ये निशान

0: उस रसूल के दिए है, यही है उसका प्यार। नहीं देख सकते ना, ये तो तन पर पड़े ऐसे जख्म है मुश्ता।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक सिसकियां का 8वां भाग। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें।
2: आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। ये पहल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। प्रदेश में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून तक जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान में विद्यालयों, महाविद्यालयों और सामाजिक संगठनों को जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्यों पर विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत का स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में पूर्व जज गिरिवाला सिंह और उनके बेटे समर सिंह को कल विशेष सीबीआई अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजते हुए 16 जून तक भोपाल सेंट्रल जेल में रखने का आदेश दिया। और मौसम विभाग के अनुसार टर्फ लाइन और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में फिलहाल प्री मानसून गतिविधियां सक्रिय हैं। मानसून 20 से 22 जून के बीच दस्तक दे सकता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
3: ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा।

बहनों, किसी ने क्या खूब कहा है, मुस्कुराहट एक ऐसा गहना है जिसे आप बिना कीमत के हर किसी को दे सकते हैं। और बहनों, किसी की आंखों के रोते हुए आंसू भी आप पोंछ सकते हैं, कितनी अच्छी बात है। इसलिए सदा मुस्कुराते रहें और अपने चेहरे की खुशी को हमेशा बरकरार रखें। इसी सुविचार के साथ ही आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है आपके अपने कार्यक्रम महिला सभा में। तो बहनों, मन तो यूं करता है कि आपसे इतने कम समय में ना जाने कितनी बातें कर डालें, लेकिन हमेशा समय की पाबंदी रहती है। समय उतना ही हम ले सकते हैं जितना कि हमें दिया जाता है, कोई बात नहीं। इसी समय में हम करते हैं ढेर सारी बातें। तो आइए शुरू करते हैं बातें करने का सिलसिला। आज बहनों, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, ऐसा कौन सा साधन है जो बिना डीजल के, बिना पेट्रोल के और बिना किसी आवाज के बड़ी ही शान से दौड़ता है और चलता है, और जो हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। तो कुछ आया क्या समझ में आपको? तो आप तो समझ ही गई होंगी ना बहनों कि ये है साइकिल, जो कि बिना धुआं किए हमारे पर्यावरण का ध्यान रखते हुए और हमारे शारीरिक और मानसिक विकास का भी ध्यान रखती है, और हमारे पैरों की द्विचक्र वाहिनी से हम न जाने कितनी दूर एक

की स्पीड से पहुंच जाते हैं। तो बहनों, आज 3 जून को प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन 2018 से की थी। तब से प्रतिवर्ष हम इस दिवस को मनाते चले आ रहे हैं और आज की थीम भी यही है कि पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए इससे अच्छा कोई साधन नहीं है। तो बहनों, हम सभी को भी बिना धुएं के, बिना डीजल और पेट्रोल में पैसा खर्च किए हुए ज्यादा से ज्यादा साइकिल का प्रयोग करना चाहिए। साइकिल में ब्रेक भी होते हैं, आप जितनी स्पीड से चाहें इसको चला सकती हैं और जहां मन चाहे उसे रोक सकती हैं। कितनी अच्छी बात है बहनों, आजकल तो मॉर्निंग वॉक के लिए लोग साइकिल का प्रयोग करते हैं। और बहनों, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि यदि आपको अपने घुटने सही सलामत रखना है, अपने शरीर का विकास अच्छा रखना है, अपने हार्ट को मजबूत रखना है और अपनी मांसपेशियों को सुरक्षित रखना है, तो आप नित्य प्रति साइकिल के द्वारा ही मॉर्निंग वॉक करें। अपने पैरों को की सहायता से आसानी से आप इसको चला सकते हैं और चाहे जितनी दूर बड़ी स्पीड से इसको ले जा सकते हैं। बहनों, इससे ना तो कोई धुआं निकलता है, ना ही कोई आवाज होती है और हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित और संरक्षित रहता है। बहनों, साइकिल से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचता है। हमारे आसपास के जो पेड़ पौधे हैं, वो भी उतनी ही शुद्ध हवा में सांस ले सकते हैं जितना कि हम मनुष्य लेते हैं। और बहनों, साइकिल तो एक इतना अच्छा साधन है कि ये खराब भी नहीं होता और ना ही इसको ज्यादा सुधरवाने की जरूरत होती है। बस इसमें केवल जो टायर ट्यूब होते हैं उनमें हमें समय समय पर हवा चेक कराना पड़ती है। तो बहनों, कितना अच्छा साधन है ना। आजकल तो हम सुबह से देखते हैं कि युवा वर्ग जितने भी हैं वो बड़ी स्पीड से साइकिल भांजते हुए चाहे जितनी दूर चले जाते हैं। और बहनों, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य भी यही है कि आप सब भी इसके प्रति जागरूक रहें, समाज में साइकिल के महत्व की जागरूकता को फैलाएं और हमारे बच्चों को भी साइकिल चलाने को दें। हम देखते हैं कि शाम को हमारी बहनें अपने छोटे छोटे नौनिहालों को गार्डन में ले जाती हैं और साथ में उनकी छोटी सी साइकिल भी ले जाती हैं। देखने में कितना अच्छा लगता है। इसी आदत को वह बड़े तक बरकरार रखते हैं और फिर बड़े होकर बड़ी बड़ी साइकिल आसानी से चलाते हैं। बहनों, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है या इसमें कोई आपका स्टेटस मेंटेन की भी बात नहीं है कि अरे हम कार चलाएं या मोटरसाइकिल चलाएं। लेकिन बहनों, स्वास्थ्य की दृष्टि से और पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित रखने की दृष्टि से साइकिल का प्रयोग बहुत ही अच्छी बात है। और फिर साइकिल जब दौड़ती है और साथ में हम सफर होता है तो फिर तो सफर का मजा दुगना हो ही जाता है।

0: बहनों, अभी आपने भाभी फिल्म का ये प्यारा सा गीत सुना। स्वर था अनुराधा पोटवाल और नितिन मुकेश का। हसरत जयपुरी के गीत को संगीतबद्ध किया था अनु मलिक ने। और अब मिलते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: बहनों, अब हम आपसे बात करते हैं घरेलू हिंसा के बारे में। देखिए बहनों, घरेलू हिंसा से मतलब है कि घर में जितने भी सदस्य रहते हैं वह बड़े ही प्रेम और आपस में भाईचारे के साथ रहें। किसी को भी आपकी कोई भी बात कहने से दुख नहीं होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि जब हम उसको टॉर्चर करें या बार बार उसी बात को रिपीट करें तो ये सब अच्छा नहीं है। ये भी तो घरेलू हिंसा ही है और इसको रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सभी जो बहने हैं वही आज की बेटी है, कल वो भी माँ बनेगी, आगे चलकर सास बनेगी और फिर उसके आगे चलकर वही दादी और नानी बनेगी। यदि आपके घर का माहौल अच्छा है, शांति प्रिय है, आपस में प्रेम है, तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखिए। छोटी छोटी बुराइयों से ही बड़ी बुराई बन जाती है और छोटी छोटी हिंसा से ही बड़ी हिंसा समाज के सामने आ जाती है। आप अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, जिससे कि घर के बाहर कोई भी बात न जाने पाए। और समाज के लोगों को भी चाहिए कि यदि मान लीजिए किसी के घर में घरेलू हिंसा की वारदात का कुछ पता चलता है तो समाज के सब लोगों को मिलकर उसकी हंसी न उड़ाएं या उसकी बदनामी ना करें, बल्कि सभी लोग मिलकर बैठकर एक उचित निर्णय करें, उस परिवार के सदस्यों को समझाएं। आप ये सोचें कि वो आपका ही परिवार है, किसी दूसरे का नहीं है। बहनों, यदि आप उसकी हंसी उड़ाएंगी या उसको इसी बात को लेकर बार बार टॉर्चर करेंगी तो फिर आपका समाज में रहने का मतलब ही क्या। समाज तो बनता है हम सभी सदस्यों से। जितने भी घर हैं, एक मोहल्ला है, सभी से मिलकर ही तो समाज बनता है ना। और यदि हम समाज में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे हैं और घरेलू हिंसा की वारदातें हमें आए दिन सुनाई पड़ रही हैं, तो फिर आपका समाज में रहने का मतलब ही क्या। समाज के लोगों को स्वयं इतना समझदार होना चाहिए। सरकार द्वारा भी समय समय पर घरेलू हिंसा को रोकने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं। हम सभी समाज के लोगों का ये कर्तव्य है कि टीवी के द्वारा, मोबाइल के द्वारा ऐसे कार्यक्रमों को घर घर तक पहुंचाएं, जिससे कि आए दिन जो हम अखबारों में, विज्ञापनों में या टीवी में इस तरह की जो छोटी मोटी घटनाएं देखते रहते हैं तो ये घटनाएं होना बंद हो जाएं। क्योंकि बहनों, आपके ही घर की बेटी है वह जो कल बहू बनेगी। यदि वह घरेलू हिंसा का शिकार होती है तो आगे हम कैसी पीढ़ियों को चला पाएंगे, कैसे देश का भविष्य चल सकेगा। आज की बेटी ही तो कल का भविष्य है बहनों, इसलिए समाज को इसमें एक निर्णायक भूमिका निभाना चाहिए, ना कि उसको गलत रास्ते पर मोड़ना चाहिए। बहनों, घरेलू हिंसा को रोकने में समाज की बहुत ही अहम भूमिका है। समाज के लोग साथ में मिलकर बैठकर इस तरह का एक नियम बनाएं, जिससे कि हर परिवार खुशहाल हो, वहां पर घरेलू हिंसा की वारदातें हो ही नहीं। और जब छोटी छोटी इन बातों को हम घर परिवार में इग्नोर करेंगे तो आप ये निश्चित मानिए कि घरेलू हिंसा की तो नौबत आएगी ही नहीं और परिवार हमेशा खुशहाल एक समाज में उदाहरण के रूप में बताया जाएगा कि उस परिवार में कितना प्रेम है, वहाँ के लोग कितने भाईचारे से रहते हैं और वहाँ की बहन बेटियाँ एक अच्छे परिवार की निशानी है। तो बहनों, अब तो आप समझ ही गई होंगी कि घरेलू हिंसा के रोकने में हमारे समाज की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है और रहेगी भी, इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो ये तो थी थोड़ी सी चर्चा, अब हम मिलते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।
2: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड AI बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।

0: Cancer Hospital and Research Institute, Cancer Hills, Gwalior.
1: बहनों, हमारा मन बड़ा ही चंचल होता है जब हम कभी किसी घटना को देखते हैं या सपनों में कुछ हमें ऐसा दिखाई पड़ता है तो कभी मन होता है कि कलम और कागज की सहायता से इस घटना को हम क्यों ना उतार डालें। और कभी यह कहानी बन जाती है तो कभी यह बन जाती है कविता। तो आइए सुनते हैं भुवनेश्वरी पाठक के मन के भावों को कहानी के माध्यम से। कहानी का शीर्षक है संगिनी।
2: समीर एकदम स्तब्ध रह गए। वे ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि श्वेता भरा पूरा घर छोड़कर एकदम अकेला करके चली जाएगी। घर में माँ बाबूजी की आंखों का तारा थी श्वेता। सभी से हंसकर बात करती, घर के काम में कभी क्रोध नहीं दिखाया। अपने तीनों बच्चों का लालन पालन किया था उसने, अच्छे संस्कार दिए थे उन्हें, अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी भी भली भांति की। अब समय मिला था दोनों सारी जगह घूमते तो अब श्वेता नहीं रही। सोचा था बच्चों से फुर्सत होंगे उसके बाद सभी तीर्थ स्थान के दर्शन करेंगे कि पहले कहाँ जाया जाए, इस पर विचार चल रहा था। वैसे तो समीर का भरा पूरा परिवार है लेकिन पत्नी के बिना इस संसार में मानो सब सूना हो। इतने वर्षों से संगिनी मरकर रही, हर सुख दुख में शामिल रही। वास्तव में पत्नी का ज्यादातर साथ बुढ़ापे में रहता है। बच्चे अपनी अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त रहते हैं, बुढ़े बुढ़िया की देखभाल कौन करे। समीर ने स्वयं से ही प्रश्न किया, कितने संघर्ष देखे हैं उसने। उस समय घर की हर जरूरतों को पूरा करना आसान नहीं था लेकिन घर चलाने के लिए सब कुछ किया। साधारण से मास्टर की हैसियत से घर को खूब चलाया, ट्यूशन की। गांव में थोड़ी बहुत जमीन थी, जब तक माँ बाबूजी थे उन्हीं ने खेती करवाई। उसके बाद खेती करवाने की जिम्मेदारी श्वेता ने ले ली थी। उसके घर में भी खेती होती रही थी इसलिए खेती की अच्छी जानकार थी वह, ट्रैक्टर भी बखूबी चला लेती थी। बच्चों की शादी के बाद से श्वेता समय निकालकर बस्ती में जाकर बच्चों को पढ़ाने का काम भी करने लगी थी। कुछ जरूरतमंद असहाय औरतों को उसने खेती का काम दे दिया था, उन्हें गांव भेज दिया था। श्वेता के जाने के बाद बच्चों का समीर से ज्यादा मतलब नहीं रह गया था। शुरू में तो साल में एक बार सभी आ जाते थे लेकिन अब वह भी आना छोड़ दिया था क्योंकि बहू को यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता था और लड़कियों के बच्चे रहने नहीं देते थे। समीर का रिटायरमेंट हो चुका था, नौकरी के कारण वे गांव नहीं गए। उधर घर से समय निकालकर श्वेता गांव जाती रही और खेती देखती रही थी, और जो खेती से आमदनी होती रही वह बस्ती में रहने वाले जरूरतमंद इंसानों को देती रही। श्वेता की याद में समीर बस्ती की ओर निकल पड़े। बस्ती के सभी लोग उसे घेर कर खड़े हो गए थे, कानाफूसी होने लगी कि अरे यही तो श्वेता माँ के पति हैं। सभी उसके पैर छूने लगे और वे गांव नहीं गए। उधर घर से समय निकालकर श्वेता गांव जाती रही और खेती देखती रही थी, और जो खेती से आमदनी होती रही वह बस्ती में रहने वाले जरूरतमंद इंसानों को देती रही। श्वेता की याद में समीर बस्ती की ओर निकल पड़े। बस्ती के सभी लोग उसे घेर कर खड़े हो गए थे, कानाफूसी होने लगी कि अरे यही तो श्वेता माँ के पति हैं।

0: में नायक का रोल रहता है, जिसका जो रोल है ईमानदारी लगन के साथ निभाओ। शरीर से आत्मा गई तो शरीर मिट्टी के समान है, संसार में सिर्फ अच्छाई और बुराई रह जाती है, इसलिए अच्छे कर्म करते रहो। वैसे भी बांटने से बढ़ती हैं खुशियाँ, जितना हो सके खुशियाँ बांटो। समीर को याद आए वे क्षण जब शैतान बच्चों को वह टेबल पर खड़ा कर देता था, बच्चे माफी मांगते तो वह तुरंत माफ कर उन्हें बैठने देता था। आज बाजार से फल खरीदते वक्त वही बच्चे मिल गए थे, समीर तो पहचान नहीं पाए थे, वे बच्चे समीर को पहचान गए थे। समीर से घंटों बतियाते रहे, उन्होंने बताया कि वे आज अच्छे अच्छे पदों पर हैं, ये सब आपके कारण हुआ। समीर ने पूछा, मेरे कारण कैसे हुआ? तो उन्होंने बताया कि टेस्ट में फेल होने के कारण एवं शैतानी करने पर आप सजा देते थे, तो हम घर पर जाकर पढ़ते थे, कहीं सजा फिर से ना मिल जाए, और ऐसा करते करते पढ़ने की आदत डल गई। आपका स्वास्थ्य बहुत गिर गया है, ध्यान रखिएगा। उन्होंने अपने अपने फोन नंबर भी दिए, कहा कि जब भी जरूरत पड़े अवश्य फोन करिएगा। आज इतने दिनों बाद समीर के होठों पर मुस्कान आई थी। समीर सोच रहा था कि अब बाकी का जीवन गांव में व्यतीत किया जाए, जहां श्वेता की यादें खड़ी उसका इंतजार कर रही हैं, साथ में खेत पर काम करने वाली दुखियारी महिलाएं, उनके बच्चे। माँ बाबूजी के जाने के बाद से उसने गांव जाना लगभग छोड़ ही दिया था। अब वह बाकी का जीवन खेत में बिताएगा, दुखी लोगों की मदद करेगा, बेसहारा बच्चों को पढ़ाएगा। समीर ने श्वेता की फोटो को मड़वाया और गांव जाने की तैयारी करने लगा। समीर को बचपन की याद आ गई, कैसे गांव में स्कूल की लाइन में खड़े होकर प्रार्थना करते थे, बाद में बैठा दिया जाता था तो बैठकर मिट्टी से अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनाया करते थे। मिट्टी की वही सौंधी खुशबू का एहसास हो रहा था, लहलाते खेत मानो अपनी गोद में बिठाने के लिए बुला रहे हों, चारों ओर हरियाली ही हरियाली। समीर सोच रहा था, वैसे तो हर हाल में परिस्थिति अनुसार मनुष्य को साहसी विनम्र होना चाहिए, अपनी उपलब्धियों का दायरा निरंतर बढ़ाते रहना चाहिए कि उसमें दूसरों का नुकसान न हो और स्वयं को भी संतोष हो। व्यक्तित्व की उदारता तथा बड़प्पन कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता, मगर दीर्घकाल में इससे दीर्घ लाभ होता है। दूर खड़े समीर चूल्हे पर रखी सब्जी को देख रहा था, बच्चे रंग बिरंगी तितलियों के पीछे भाग रहे थे, कच्चे आम तोड़कर नमक के साथ खाते, खट्टा होने पर तरह तरह का मुंह बनाते। खेत पर सभी का भोजन एक साथ बनता, सभी गरम गरम खाते, सबसे पहले वे लोग समीर को ही भोजन खिलाते। शाम को समीर जो बच्चों को सुबह पढ़ाता वह शाम को याद करवाता था। समीर को लगा कि ये सारा जीवन इन्हीं के लिए समर्पित है। उसने ये महसूस किया कि जो सुख दूसरों को देने में है वह लेने में नहीं। आज भी समीर को श्वेता की मौजूदगी खेत के आसपास ही महसूस होती है, जिसकी आदतों ने उसे एक अंतहीन मरुस्थल बनने से उबार लिया।
1: बहनों, अभी आप सुन रही थी भुवनेश्वरी पाठक से उनकी कहानी संगिनी। देखिए बहनों, इस समय गर्मियों का मौसम अपने शबाब पर है। मौसम का मिजाज बड़ा ही अटपटा सा चल रहा है। ऐसा लगता है कभी तेज धूप आ गई, कभी बारिश होने लगी, कभी अजीब सी गर्मी होने लगती है बेचैनी वाली। तो ऐसे मौसम में हमें अपनी स्किन का विशेष ध्यान रखना है। बहनों, इन दिनों बाजार में खूब फल आ रहे हैं, संतरा है, सेव फल है, पपीता है, खरबूजा है, कलिंदा है, सभी को आप ले लीजिए थोड़ा थोड़ा और इनको मिक्सी में अच्छी तरह पीस लीजिए, एक पेस्ट बना लीजिए, फिर इसको आप अपनी स्किन पर लगाकर करीब 10-15 मिनट छोड़ दीजिए और उसके बाद चेहरे को धीरे धीरे पानी से धो लें। इससे आपकी स्किन एकदम ब्राइट नजर आएगी। खूब पानी पिए, खूब सलाद खाएं, धूप में जब भी घर से बाहर निकलें भरपेट भोजन कर ही निकलें, शरीर को ढककर निकलें और सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल ना भूलें। घर में सभी के आटे का चोकर तो रहता ही है, इसमें आप थोड़ी सी शहद मिला लें, थोड़ी सी मलाई मिला लें और थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर इसको अच्छी तरह घोल लें, फिर इसको स्किन पर लगा लें। करीब 10-15 मिनट इसको स्किन पर लगा रहने दें और फिर धीरे धीरे हाथ से घिसकर इसको निकालें। ये आप हाथ पैरों पर भी लगा सकती हैं। आपके चेहरे पर, हाथ पैरों पर ये स्क्रब का काम करेगा और फिर धीरे धीरे इसको घिसते हुए हटाएं। ऐसा करने से आपकी जितनी भी डेड स्किन है या जहां जहां सांवली

की त्वचा हो जाती है तो वह धीरे धीरे साफ हो जाएगी। तो बहनों, सुबह से दही का लेप चेहरे पर अवश्य लगाएं और थोड़ी सी मलाई अवश्य लगाएं। यदि आप इन सभी साधनों का उपयोग करती रहेंगी तो आपकी स्किन ब्राइट और चमकीली नजर आएगी, और फिर जब स्किन अच्छी होती है तो मन खुश होता है और गीत संगीत तो बनता ही है।

अभी आपने साये फिल्म का ये प्यारा सा गीत सुना। स्वर था अलका याग्निक, उदित नारायण का। आनंद बख्शी के गीत को संगीतबद्ध किया था एमएम क्रीम ने। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है हमें पत्र अवश्य लिखें। खुश रहें, खुश रहें, अपनी मुस्कुराहट सदा बिखेरते रहें। इसी के साथ अनुमति दीजिए अपनी रेडियो मित्र दीपाली अग्रवाल को। नमस्कार।

0: कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात। 1936
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे स्वाति पाराशर के गाए कुछ भजन, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की।

0: स्वाति पाराशर के गाए इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। आज की ये प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है एक अंतराल का।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया फिल्म मौसम का ये गीत था। डर फिल्म का गीत अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और ए हरिहरन ने इसे गाया है। शिवहरी के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी ने लिखा है।

0: लता मंगेशकर और ए हरि हरन का गाया ये डर फिल्म का गीत था। शिव हरि के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी ने लिखा था। इसके साथ ही फिल्म संगीत अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास एजेंसियों को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और देश के हर गांव और हर व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए। उन्होंने ये भी चिंता जताई है कि अभी भी कई जनजातीय वर्गो को सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं है। जनजातीय गरिमा उत्सव के तहत आयोजित इस सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा के जॉर्ज कुरियन, सुमेर सिंह सोलंकी और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह का कार्यकाल 21 जून को खत्म हो रहा है। इन सीटों के लिए नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 9 जून को जांच होगी और 11 जून तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। जरूरत पड़ी तो 18 जून को मतदान और उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना होगी। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने से कई लोगों की मौत की खबर है। हालांकि प्रशासन ने अब तक 4 शवों की ही पुष्टि की है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रूपये की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने भी घटना पर गहरा दुख जताया है। सीबीएसई ने बताया है कि 12वीं के लगभग 40,000 छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए सफलतापूर्वक आवेदन जमा कर दिए हैं। बोर्ड ने कल उत्तर पुस्तिकाओं की जांच और पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला था। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए है जिन्होंने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी पहले ही प्राप्त कर ली है। प्रदेश का लोक निर्माण विभाग अब सड़क निर्माण को सिर्फ निर्माण कार्य तक सीमित नहीं रखेगा। इसी सोच के साथ मंत्री राकेश सिंह की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 1 और 2 जून को महाराष्ट्र और गुजरात के अध्ययन दौरे पर गया। वहां टीम ने महाराष्ट्र के वित्तीय मॉडल, डिजिटल गवर्नेंस और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम को समझा। अब इसी तर्ज पर प्रदेश में 1 रियल टाइम इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम बनाया जाएगा ताकि निर्माण स्थल पर कोई घटना होने पर मिनटों में कार्रवाई हो सके। खंडवा जिले ने जल संचय जन भागीदारी अभियान में देशभर में 5वां और अपने जोन में 2रा स्थान हासिल किया है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 4,22,000 से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण किया गया। इनमें सोकपिट, रिचार्ज पिट, बोरी बंधान और कंटूर ट्रेंच जैसी संरचनाएं शामिल हैं। 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। इस बार का वैश्विक अभियान जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित है। इसकी मेजबानी अजरबैजान कर रहा है। प्रदेश में भी इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। खंडवा समेत कई जिलों में इस दिन एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत विकास खंडों में पीपल, नीम, बरगद और आम के पौधे लगाए जाएंगे। दूसरी तरफ पश्चिम मध्य रेलवे भी

0: मई से 15 जून तक जबलपुर मंडल में पर्यावरण जागरूकता अभियान चला रहा है। भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में 6 जून से 5 दिवसीय महुआ महोत्सव शुरू हो रहा है। ये महोत्सव संग्रहालय की 13वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित किया जा रहा है। 10 जून तक चलने वाले इस महोत्सव में देश भर के जनजातीय नृत्य, लोकगीत, पारंपरिक शिल्प और देशज व्यंजनों की भरमार रहेगी। संस्कृति और पर्यटन मंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी 6 जून की शाम 6:30 बजे इसका शुभारंभ करेंगे। और अब बात मौसम की। इस बार नौतपा में गर्मी की जगह आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने डेरा जमाए रखा। बारिश और तेज हवाओं से पारा 8 से 10 डिग्री तक लुढ़क गया और कहीं भी हीटवेव नहीं बनी। मौसम विभाग ने आज इंदौर, उज्जैन सहित 36 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। नीमच कलेक्टर ने नीमच कलेक्टर ने कल समय सीमा पत्रों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में बारिश के पहले सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। आगरमालवा जिले के सुसनेर नगर परिषद द्वारा 3,27,00,000 रुपए की लागत से नगर में आधुनिक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कराया जाएगा। शिवपुरी में प्रतिबंधित और नियंत्रित श्रेणी की भूमियों के अवैध हस्तांतरण, पंजीयन, नामांकन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए जिले के सभी उपपंजीयकों, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को निर्देश जारी किए गए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 60 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला के परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारत सौर ऊर्जा विकास के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना। वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमेरिका को पीछे छोड़ा। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि 8 दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली के मालवीय नगर में आज सुबह करीब 9 बजे एक होटल में भीषण आग लग गई। इसके बाद दिल्ली दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कैट, एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दिल्ली पुलिस के अनुसार अब तक 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया है। 8 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि बचाव और तलाश अभियान अभी भी जारी है और सभी संबंधित एजेंसियां मौके पर तैनात हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
3: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल के हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी पीड़ित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह घटना बहुत दुखद है। उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने

0: की प्रार्थना की। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को इस दुख की घड़ी में शक्ति और साहस प्रदान करने की भी कामना की। गृह मंत्री ने बताया कि स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रत्येक गांव और व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए।
1: जनजातीय समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तली इलाकों में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व।
0: सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने मिजोरम में जनता से राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में विकसित भारत पहल के तहत 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में योगदान करने का आह्वान किया है। राज्य के कोलाबिस जिले में सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान श्री मुरुगन ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिन्द्र बोस को सौंपा गया है, जिसमें बनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। इस गुट ने मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज से विधायक अखरुजमान को मुख्य सचेतक नामित किया है। एंटाली से संदीपन साहा और कस्बा से जावेद खान को उपनेता के रूप में प्रस्तावित किया गया है। पश्चिम बंगाल की सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा योजना का आज औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। शहरी विकास, महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने नबन्ना में इसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। पहले चरण में लाभार्थियों को आज से उनके बैंक खातों में 3,000 रूपये मिलने शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य प्रशासन के अधिकारियों के अथक प्रयासों से ही योजना का संचालन तुरंत शुरू करना संभव हो पाया है। पश्चिम बंगाल में मॉनसून से पहले चलाए जा रहे नियमित सफाई अभियान के दौरान कल शाम कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में नोटों के बंडल बरामद किए गए। एक बंद कमरे में दो पुराने सूटकेसों में रखे गए ये नोट पूरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में मिले। भाजपा विधायक सजल घोष ने आरोप लगाया है कि ये कमरा एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता ने बनवाया था, जिसका इस्तेमाल वो अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करता था। हालांकि पार्टी सदस्यों ने इन दावों को निराधार बताया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा 12 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला, मजदूर, लेखक, अभिनेता, प्रमुख व्यवसायी तथा उद्योगपति शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज

0: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लेख को साझा किया है, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए अवसरों पर प्रकाश डाला गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली एक खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की कहानी लिख रही है। उन्होंने कहा कि यह लेख बताता है कि कैसे उद्यमिता और मूल्यवर्धन लद्दाख में समृद्धि के नए द्वार खोल रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने सौर ऊर्जा के स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे देश के 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को समय से पहले पूरा करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जैसे प्रमुख पहल लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। घरों पर लगे सौर पैनल से 40 लाख से अधिक परिवारों को बिजली मिल रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहली नीति के अंतर्गत एक प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत दोनों देशों के बीच विशेष और बहुआयामी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नई सरकार के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक है। ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमरीकी सेना के हमले के बाद हुए इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमरीकी सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ है। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलफायर मिसाइल ने जहाज के इंजन पर हमला किया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमरीका ने केशम द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमरीकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव बढ़ने के बावजूद अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। हालांकि मसौदा समझौते पर बातचीत अभी भी अधूरी है क्योंकि दोनों पक्षों के नेतृत्व ने अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
0: भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए RBI ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। सरकार ने उस अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य का सोना बेचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांचाई इकाई ने कहा कि समाचार एजेंसी का यह दावा फर्जी है। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने सूचित किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत मतदाताओं की पूर्व मैपिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों पर 7 जून को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब तक राज्य में 90% से निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 84.62% पूर्व SIR मैपिंग हो चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही।
2: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा।
0: इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज पुरुष सिंगल

में एचएस प्रणय आयरलैंड के नहन गुवेन से और आयुष शेट्टी चीन के वेन होंगयांग से मुकाबला करेंगे। लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओमबाम रुंगफान को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को आज मलेशिया के खाई शिंगकांग और आरोई ताई ने 6-11 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा का सामना जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा से होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर

0: में आंधी आ सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 58 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों द्वारा भेजी पसंद का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम में पहला गीत प्यार का मौसम फिल्म का गीत, किशोर कुमार की आवाज में, मजरू के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत सुनना पसंद किया है। कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली ने, ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम और कुसुम नेताम ने, गोला बाजार भक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित, रामजी आर्य ने, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव, मीका, बलविंदर बिरक, जैतिक बिरक और मीका बिरक ने, गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस तपस्या और करिश्मा कामले ने।

कार्यक्रम में अगला गीत सुनना पसंद किया है बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा ने। मोहल्ला हलवाइन शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वाकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू साजिदा रानी और हिना कौसर ने। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राजी राशि, रक्षित चित्रंजन, कमलेश उमेश, सरोज आरती, रेखा ऋतिक, ऋचा स्वीटी, सागर रिया, रीत ऋषभ राजावत और राजावत परिवार के सदस्य। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से सुनना चाहा है अभिजीत और साथियों का गाया ये दिल लगी फिल्म का गीत। समीर ने गीत लिखा है, स्वरबद्ध किया है दिलीप सेन समीर सेन ने।

अगले गीत के लिए अनुरोध लिख भेजा है आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ, शाइना और निवान शर्मा ने। जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जासमीन और प्रयागराज भट्ट ने। मगरलोट धमतरी से पुनू राम साहू राज, तेजेश्वरी साहू, राजश्री राज साहू ने। इचलकरंजी महाराष्ट्र से बसंत जी हजारे, प्रमोद हजारे, महेश हजारे, मितांशु हजारे और आदित्य हजारे ने। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, नुपुर, मोनिका, ऋषिका और रॉबिन ने। ये दिल आशिकाना फिल्म का टाइटल ट्रैक है। कुमार सानू और अलका याग्निक ने इसे गाया है। नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में समीर ने लिखा है गीत।

अगली पसंद शामिल कर रहे हैं स्टोर रेडियो श्रोता संघ रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल की पसंद है। और पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री सुनना पसंद किया है। स्वीकार किया मैंने फिल्म का ये टाइटल, स्वीकार किया मैंने फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। निदा फाजले ने लिखा, उषा खन्ना की धुन।

कार्यक्रम में अगला गीत गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस तपस्या और करिश्मा कामले ने सुनना पसंद किया है। छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, केआर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री ने पसंद किया है। ग्राम महसवाड़ी मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीकि धाड़े, निनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े और अजय खिरोड़कर की पसंद है। शक्ति फिल्म का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने इसे गाया है। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार आरडी बर्मन।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए फिल्म शक्ति के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास एजेंसियों को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है, देश के हर गांव और हर व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए। प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा के जॉर्ज कुरियन, सुमेर सिंह सोलंकी, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह का कार्यकाल 21 जून को खत्म हो रहा है। इन सीटों के लिए नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 9 जून को जांच होगी, 11 जून तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने से कई लोगों की मौत हो गई है। हालांकि प्रशासन ने अब तक 4 शवों की ही पुष्टि की है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख, घायलों को 50,000 रूपये की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। सीबीएसई ने बताया है कि 12वीं के लगभग 40,000 छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए सफलतापूर्वक आवेदन जमा कर दिए हैं। बोर्ड ने कल उत्तर

0: पुस्तिकाओं की जांच और पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला था और 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। इस बार का वैश्विक अभियान जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित है। इसकी मेजबानी अज़रबैजान कर रहा है। प्रदेश में भी इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेब पर सभा समापन के पूर्व बता दें आपको सांधिकालीन सभा के मुख्य आकर्षण। शाम 5:02 पर युवाओं का कार्यक्रम युववाणी होगा। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की होगी। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम सुनेगा शाम 6:00। रात्रि 8:00 समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष मध्यम वर्ग कल्याण, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8:00। चर्चा का विषय है कार्यक्रम रात 9:30 पर दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 10:00 नाटक सुनेगा अशोक वन का पेड़, लेखक जगदीश अधिकारी, प्रस्तुतकर्ता भी जगदीश अधिकारी होंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आप सुनिएगा रमेश प्रेम का विचित्र वीणा पर बजाया राग रिहाग। शाम 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल से कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण होगा। ये थी जानकारी आकाशवाणी के सांधिकालीन सभा के प्रसारण की। मीडियम वेव 188.32 यानी 1593 किलोहर्ट्ज, डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और साथ ही वेव्स ओटीटी ऐप पर, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। इस समय दोपहर के 3:22 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा समाप्त होती है। शाम 5:00 मीडियम वेव पर हम अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। इस बीच डीटीएच पर हमारा प्रसारण जारी है।

मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में सुनिए युवा साथियों का मनचाहा कार्यक्रम युववाणी।

0: साथियों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी में। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त खुशी गांधी और मेरे साथ हैं
1: सावनी पांडे।
0: तो स्वीकार कीजिए हम दोनों का नमस्कार। साथियों, आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे हमारी पहली चर्चा से, जिसका विषय है बहुत खास। आज के विषय जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है विश्व साइकिल दिवस।
1: विश्व साइकिल दिवस हर वर्ष 3 जून को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य साइकिल के महत्व, उसके स्वास्थ्य लाभ, पर्यावरण संरक्षण, उसकी भूमिका और सतह परिवहन के रूप में उसकी उपयोग के प्रति लोगों को जागरूक करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2018 में 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मान्यता दी थी।
0: बिल्कुल सही कहा शावनी तुमने। साथियों, साइकिल एक ऐसा साधन है जो कम खर्चीला होता है, सरल और सभी वर्गों के लोगों के लिए सुलभ भी होता है। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर बड़े शहरों तक साइकिल आज भी लाखों लोगों के दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है।
1: साथियों, वर्तमान समय में बढ़ते प्रदूषण और ईंधन की खपत के बीच साइकिल पर्यावरण के लिए एक बेहतर विकल्प बनकर उभरा है। साइकिल चलाने से ना तो धुआं निकलता है और ना ही प्रदूषण होता है, जिससे स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनने में मदद मिलती है।
0: बिल्कुल साथियों, क्या आप जानते हैं नियमित रूप से साइकिल चलाने से हृदय मजबूत होता है, सहन शक्ति बढ़ती है, वजन नियंत्रित रहता है तथा मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है। ये मानसिक तनाव हटाकर सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ाती है।
1: साथियों, बढ़ते हैं स्क्रीन टाइम के दौर में साइकिल चलाना युवाओं के बच्चे के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का प्रभाव माध्यम है, जिससे शारीरिक गतिविधियां और सक्रिय बढ़ती हैं।
0: बिल्कुल साथियों, साइकिल पर्यावरण के अनुकूल परिवर्तन साहन के इसके अधिक उपयोग से प्रदूषण और यातायात का दबाव कम होता है तथा आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ भारत का वातावरण मिल सकता है।
1: साथियों, साइकिल आर्थिक रूप से है क्योंकि इसमें ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है और रखरखाव का खर्चा भी कम होता है, इसलिए यह काम लोगों के लिए सुविधाजनक साधन है।
0: बिल्कुल शावनी। साथियों, विश्व साइकिल दिवस हमें ये संदेश देता है कि साइकिल को केवल परिवहन का साधन न मानकर स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास के प्रतीक के रूप में अपनाना चाहिए। तो साथियों, ये तो थी एक छोटी सी चर्चा जिसका विषय था विश्व साइकिल दिवस। कहीं मत जाइएगा, रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: साथियों, अंतराल के बाद पुनः स्वागत है आपका युवाणी कार्यक्रम में। कार्यक्रम श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ले चलते हैं आपको हमारे कार्यक्रम की अगली चर्चा की ओर, जिसका विषय है युवाओं में सोशल मीडिया का प्रभाव।
1: आज के समय में सोशल मीडिया युवाओं के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। यह केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि सूचना, शिक्षा, संवाद और आत्म अभिव्यक्ति का भी सशक्त मंच बन गया है।
0: बिल्कुल साथियों, युवाओं को देश, दुनिया की ताजा घटनाओं, नई तकनीकों, करियर में अवसरों और शैक्षिक सामग्री तक आसानी से पहुँच मिलती है। इससे उनकी जागरूकता और ज्ञान में वृद्धि भी होती है।
1: साथियों, सोशल मीडिया ने युवाओं को अपने प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया है। संगीत, नृत्य, कला

0: लेखन, फोटोग्राफी और अन्य क्षेत्रों में युवाएं अपनी पहचान बना रहे हैं और कई लोग इसे करियर के रूप में भी अपना रहे हैं।
1: बिल्कुल साथियों, विभिन्न सामाजिक और राष्ट्रीय मंचों पर युवाओं को मार्गदर्शन बढ़ रही है सोशल मीडिया की वजह से। वे अपनी राय व्यक्त करते हैं, जन जागरूकता अभियानों से जुड़ते हैं और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास भी निरंतर करते हैं।
0: दूसरी ओर सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग समय की बर्बादी का कारण भी बन सकता है। कई युवा पढ़ाई, खेलकूद और पारिवारिक गतिविधियों से दूर होते जा रहे हैं।
1: बिल्कुल सही कहा शावनी तुमने। साथियों, लगातार मोबाइल और सोशल मीडिया पर बने रहने से मानसिक तनाव, चिंता, नींद की समस्या और एकाग्रता की कमी जैसी चुनौतियों में भी वृद्धि देखी गई है।
0: साथियों, सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाले आदर्श जीवन शैली और तुलना के प्रवृत्ति कई युवाओं के आत्मविश्वास को प्रभावित करती है। इससे हीन भावना और असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
1: बिल्कुल, फेक न्यूज के इस दौर में जहां जानकारी भी एक गंभीर समस्या है, बिना सत्यापन के जानकारी साझा करने से समाज में मम्र और गलतफहमियां बढ़ जाती हैं।
0: बिल्कुल, साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी और निजात से जुड़े खतरे से भी बढ़ते हैं, इसलिए युवाओं की डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक होना आवश्यक है।
1: बिल्कुल साथियों, सोशल मीडिया का प्रभाव शिक्षा, रोजगार, परिवार और समाज के विकास में सहायक है, बशर्ते इसका सही और जिम्मेदार उपयोग किया जाए। तो साथियों, ये तो थी एक छोटी सी चर्चा जिसका विषय था युवाओं में सोशल मीडिया का प्रभाव। शावनी, मैं सोच रही हूँ कि कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हम हमारे दोस्तों का करवा दें मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।
0: बिल्कुल खुशी।
1: आइए साथियों, ले चलते हैं आपको इस गीत की ओर।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे बीवी नंबर वन फिल्म का ये गीत।
1: गायक थे अभिजीत और अनुराधा श्रीराम।
0: गीतकार थे सुखविंदर सिंह
1: और संगीतकार थे अनु मलिक।
0: साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और ले चलते हैं आपको वार्ता की ओर। वार्ता का विषय है महिला सुरक्षा में युवाओं की सोच। वार्ताकार हैं जय कुमार प्रजापति।
2: नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे महिला सुरक्षा में युवाओं की सोच। किसी भी समाज की प्रगति का सबसे बड़ा आधार उसकी महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वतंत्रता होती है। यदि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो उस समाज में सभ्य और विकसित नहीं कहा जा सकता। आज भारत सहित पूरी दुनिया में महिला सुरक्षा एक गंभीर सामाजिक मुद्दा बन चुका है। समाचार पत्रों, टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़, घरेलू हिंसा, दुष्कर्म, साइबर अपराध और मानसिक उत्पीड़न जैसी घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं। ऐसी घटनाएं समाज के सामने यह प्रश्न खड़ा करती हैं कि आखिर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है। इस संदर्भ में युवाओं की सोच अत्यंत महत्वपूर्ण होती जाती है, क्योंकि युवा किसी भी राष्ट्र का भविष्य होते हैं। आज का युवा कल का नागरिक, नेता, शिक्षक, पुलिस अधिकारी, न्यायाधीश और परिवार का मुखिया बनेगा। इसलिए महिलाओं के प्रति युवाओं की सोच समाज की दिशा तय करती है। यदि युवाओं की मानसिकता सकारात्मक, संवेदनशील और समानता पर आधारित होगी तो महिला सुरक्षा स्वयं मजबूत होगी। महिला सुरक्षा केवल कानून या पुलिस का विषय नहीं है, बल्कि यह सामाजिक सोच, संस्कार, शिक्षा और नैतिकता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। युवाओं की सोच में परिवर्तन लाकर ही एक सुरक्षित समाज की स्थापना की जा सकती है। महिला सुरक्षा का अर्थ हम बताते हैं। महिला सुरक्षा का अर्थ है केवल महिलाओं को शारीरिक हिंसा से बचाना नहीं है, बल्कि उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में भयमुक्त वातावरण प्रदान करना है। महिला सुरक्षा के प्रमुख आयाम शारीरिक सुरक्षा, महिलाओं को छेड़छाड़, हिंसा, दुष्कर्म और उत्पीड़न से सुरक्षित रखना, मानसिक सुरक्षा, महिलाओं को अपमान, धमकी, मानसिक दबाव और सामाजिक भेदभाव से बचाना, आर्थिक सुरक्षा, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार में समान अवसर देना, सामाजिक सुरक्षा, समाज में महिलाओं को सम्मान और समान अधिकार प्रदान करना, डिजिटल सुरक्षा, ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर बुलिंग और फर्जी सोशल मीडिया गतिविधियों से सुरक्षा देना, भारतीय समाज और महिलाओं की स्थिति। भारत में महिलाओं को देवी का रूप माना जाता है। नवरात्रि जैसे पर्वों में स्त्री शक्ति पूजा की जाती है, लेकिन वास्तविक जीवन में कई महिलाओं को असुरक्षित और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। विरोध भाष, एक ओर महिलाएं अंतरिक्ष विज्ञान, राजनीति और खेलों में देश का नाम रोशन कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें सड़क, कार्यस्थल और घर तक में सुरक्षा की चिंता रहती है। युवाओं की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है? युवा समाज का सबसे सक्रिय और प्रभावशाली वर्ग होता है। उनकी सोच और व्यवहार समाज में बदलाव ला सकती है। युवा क्यों महत्वपूर्ण है? वे नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे सामाजिक परिवर्तन की शक्ति रखते हैं, वे तकनीक और शिक्षा से जुड़े होते हैं, वे पुराने भेदभाव पूर्ण विचारों को बदल सकते हैं। यदि युवा महिलाओं के प्रति सम्मानजनक सोच अपनाएं तो अपराधों में कमी लाई जा सकती है। महिला सुरक्षा में वर्तमान स्थिति, आज महिलाओं के खिलाफ अपराध कई रूपों में सामने आते हैं। छेड़छाड़, दुष्कर्म, घरेलू हिंसा, किलिंग, साइबर अपराध, दहेज उत्पीड़न, मानव तस्करी, इन अपराधों के पीछे केवल अपराधी ही नहीं बल्कि समाज की गलत मानसिकता भी जिम्मेदार होती है। युवाओं की सोच सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष, सकारात्मक सोच, आज का शिक्षित युवा महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने में विश्वास रखता है। सकारात्मक बदलाव, लड़कियों की शिक्षा को समर्थन, महिला अधिकारियों के प्रति जागरूकता, कार्यस्थल पर समानता, महिला नेतृत्व को स्वीकार करना, कई युवा महिला सुरक्षा अभियानों में सक्रिय भाग लेते हैं। नकारात्मक सोच

0: कुछ युवाओं में आज भी महिलाओं के प्रति गलत मानसिकता मौजूद है। कारण अशिक्षा, गलत संस्कृति, गलत संगति, अश्लील सामग्री का प्रभाव, पितृसत्तात्मक सोच, सोशल मीडिया का दुरुपयोग। ऐसी सोच महिलाओं के प्रति हिंसा और अपराध को बढ़ावा देती है। पितृसत्तात्मक मानसिकता। भारतीय समाज लंबे समय से पुरुष प्रधान रहा है, इस कारण महिलाओं को कई बार कमजोर और पुरुषों से कमतर समझा जाता है। लड़कियों की स्वतंत्रता सीमित करना, कपड़ों और जीवन शैली पर नियंत्रण, निर्णय लेने के अधिकार में कमी। युवाओं को इस सोच को बदलने की आवश्यकता है। शिक्षा की भूमिका। शिक्षा समाज में जागरूकता लाने का सबसे बड़ा माध्यम है। शिक्षा से होने वाले परिवर्तन, लैंगिक समानता की समझ, महिलाओं के अधिकारों की जानकारी, संवेदनशीलता व्यवहार, नैतिक मूल्यों का विकास। स्कूल और कॉलेजों में महिला सुरक्षा पर विशेष शिक्षा दी जानी चाहिए। सोशल मीडिया और युवाओं की सोच। आज सोशल मीडिया युवाओं के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। सकारात्मक प्रभाव। महिला अधिकारों की जागरूकता, अपराधों के खिलाफ आवाज उठाना, सुरक्षा अभियानों का प्रचार। नकारात्मक प्रभाव। साइबर बुलिंग, फर्जी तस्वीरें, वीडियो, महिलाओं के प्रति गलत सामग्री। युवाओं को सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करना चाहिए। महिलाओं के प्रति सम्मान की आवश्यकता। महिला सुरक्षा का सबसे बड़ा आधार महिलाओं के प्रति सम्मान है। सम्मान कैसे विकसित हो। परिवार से अच्छे संस्कार, स्कूल में नैतिक शिक्षा, समाज में समान व्यवहार, महिलाओं की उपलब्धियों को पहचानना। जब युवा महिलाओं को वस्तु नहीं बल्कि व्यक्ति के रूप में देखेंगे, तभी वास्तविक सुरक्षा संभव होगी। परिवार की भूमिका। परिवार बच्चों की पहली पाठशाला होती है। लड़का और लड़की समान हैं। महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। हिंसा गलत है। सहानुभूति और संवेदनशीलता आवश्यक है। यदि बचपन से यही संस्कार दिए जाएं तो युवा सकारात्मक सोच विकसित करेंगे। फिल्मों और मनोरंजन का प्रभाव। फिल्में और वेब सीरीज युवाओं की सोच को प्रभावित करती है। समस्या। कुछ फिल्मों में महिलाओं को केवल मनोरंजन की वस्तु की तरह प्रस्तुत किया जाता है। परिणाम। गलत मानसिकता। महिलाओं के प्रति असमान। कानून और युवाओं की जागरूकता। महिला सुरक्षा के लिए भारत में कई कानून बनाए गए हैं। प्रमुख कानून दहेज निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न विरोधी कानून, बाल विवाह निषेध कानून। युवाओं को इन कानूनों की जानकारी होनी चाहिए। साइबर अपराध और महिला सुरक्षा। डिजिटल युग में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। साइबर अपराध के प्रकार हैं, जैसे फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट, ऑनलाइन ब्लैकमेल, मॉफर्ड तस्वीरें, ट्रोलिंग। युवाओं को साइबर नैतिकता सिखानी चाहिए। आत्मरक्षा और आत्मविश्वास। महिला सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण भी आवश्यक है। लाभ। आत्मविश्वास बढ़ता है। खतरे से बचाव संभव होता है। मानसिक मजबूती आती है। स्कूलों और कॉलेजों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए। युवाओं की जिम्मेदारी केवल अपराध न करना नहीं बल्कि अपराध रोकना भी है। युवा क्या कर सकते हैं। महिलाओं का सम्मान करें, गलत व्यवहार का विरोध करें, सोशल मीडिया पर जिम्मेदार बने, पीड़ित महिलाओं का समर्थन करें, लैंगिक समानता का प्रचार करें। महिला सुरक्षा में पुरुष युवाओं की भूमिका। पुरुष युवाओं की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। क्या करना चाहिए। महिलाओं को बराबरी देनी चाहिए। गलत सोच का विरोध करना चाहिए। महिलाओं की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। असली पुरुष वही है जो महिलाओं का सम्मान करते हैं। महिला युवाओं की भूमिका। महिलाएं स्वयं भी जागरूक और आत्मनिर्भर बनकर सुरक्षा मजबूत कर सकती हैं। आवश्यक कदम। शिक्षा प्राप्त करना, आत्मरक्षा सिखाना, अपने अधिकार जानना, गलत के खिलाफ आवाज उठाना। महिला सुरक्षा की समस्याएं अलग अलग हैं। ग्रामीण क्षेत्र अशिक्षा, बाल विवाह, सामाजिक दबाव। शहरी क्षेत्र हैं, जैसे साइबर अपराध, कार्यस्थल उत्पीड़न, सार्वजनिक स्थानों पर असुरक्षा। महिला सुरक्षा और रोजगार। कार्यस्थल पर सुरक्षा वातावरण महिलाओं की प्रगति के लिए आवश्यक है। चुनौतियां, यौन उत्पीड़न, वेतन असमानता, मानसिक दबाव। युवाओं को कार्यस्थल पर समानता और सम्मान की संस्कृति बनानी चाहिए। शिक्षा, नैतिकता, जागरूकता और तकनीकी के माध्यम से महिला सुरक्षा को मजबूत बनाया जा सकता है। अंततः यह कहा जा सकता है कि जिस समाज में महिलाएं सुरक्षित और सम्मानित होती हैं, वही समाज वास्तव में सभ्य और विकसित कहलाता है। महिला सुरक्षा केवल महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हर युवा, हर परिवार, पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।
1: साथियों, अभी आपने सुनी वार्ता जिसका विषय था महिला सुरक्षा में युवाओं की सोच। वार्ताकार थे जय कुमार प्रजापति। साथियों, कार्यक्रम श्रृंखला

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे बद्रीनाथ की दुल्हनिया फिल्म का ये गीत,
1: जिसमें गायक थे अखिल सचदेवा और मनशील गुजराल।
0: गीतकार व संगीतकार थे अखिल सचदेवा। साथियों, कहीं मत जाइएगा, रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए।
2: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
3: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर।

0: माता।
1: साथियों, आपका पुनः स्वागत है अंतराल के बाद। अब आपको बता देते हैं हमारी अगली चर्चा, जिसका विषय है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
2: साथियों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये केवल सरकार की एक योजना नहीं है, बल्कि हमारे समाज के लिए एक नई सोच का जन्म देने वाला एक महा आंदोलन है।
1: यह आंदोलन हमारे देश की आधी आबादी को उसका हक, सम्मान और पहचान दिलाने की एक ऐतिहासिक पहल है।
2: बिल्कुल शावनी। साथियों, गर्भ में ही बेटियों को मार देने और लड़कों को प्राथमिकता देने की इस सामाजिक बीमारी के खिलाफ 22 जनवरी वर्ष 2015 को हरियाणा के पानीपत से इस राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत हुई थी।
1: साथियों, इस अभियान का पहला और सबसे जरूरी लक्ष्य है कि बेटियों को इस दुनिया में आने का अधिकार मिले।
2: बिल्कुल, इसके साथ ही लिंग निर्धारण यानी सोनोग्राफी के जरिए लिंग की जांच करने वाले अस्पतालों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कानून, जिसे PCPNDT एक्ट के अंतर्गत लागू करना इसका मुख्य उद्देश्य है।
1: साथियों, लेकिन बेटियों का सिर्फ जिंदा रहना काफी नहीं है, हमें उन्हें पंख देना जरूरी है।
2: बिल्कुल साथियों, जब एक बेटी पढ़ती है तो वो केवल अपने पैरों पर खड़ी नहीं होती, बल्कि पूरे परिवार को और आने वाली पीढ़ी को भी शिक्षित करती है।
1: साथियों, शिक्षा ही वो एकमात्र अधिकार है जो एक बेटी को बोझ से धरोहर में बदलता है।
2: दोस्तों, एक बेटी कहती है, मैं कल्पना बनकर अंतरिक्ष छू सकती हूँ,
1: मैं सरकम पर खड़े होकर देश की रक्षा कर सकती हूँ,
2: तुम मुझे बस एक मौका, एक हौसला दो,
1: मैं तुम्हारी छाती गर्व से चौड़ी कर दूंगी,
2: बचाओगे मुझे तो ही तो ये पीढ़ी आगे बढ़ेगी,
1: बताओगे मुझे तो ही मैं सफल की नई सुबह आऊंगी।
2: मैं अंश हूँ तुम्हारा, मैं देश की सबसे सुंदर तस्वीर हूँ,
1: बेटी हूँ मैं, कोई पराया तकदीर नहीं।
2: साथियों, ये तो थी एक छोटी सी चर्चा जिसका विषय था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब हम आपको ले चलते हैं मनोरंजन की ओर इस प्यारे से गीत के साथ।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे बॉम्बे फिल्म का ये गीत।
1: गायक थे चित्रा,
0: गीतकार थे महमूद
1: और संगीत से सजाया था AR रहमान ने।
0: साथियों कहीं मत जाइएगा, रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए।
2: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
3: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
1: साथियों, अंतराल के बाद आपका पुनः स्वागत है। अब हम आपको बता देते हैं हमारी आज की रोजगार सूचना।
0: साथियों, RRB यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है।
1: पद का नाम है सहायक लोको पायलट।
0: पदों की संख्या है 11,127।
1: शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा पास और ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है।
0: आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 33 वर्ष। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी।
1: आवेदन की अंतिम तिथि है 16 जून 2026।
0: अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट www.rrbapply.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। साथियों, कार्यक्रम श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और ले चलते हैं आपको इस प्यारे से गीत की ओर।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे सिम्बा फिल्म का ये गीत।
1: गायक थे नेहा कक्कड़, मीना सिंह और कुमार सानू।
0: गीतकार थे तनिष्क बागची, संगीतकार थे शब्बीर अहमद। साथियों, अब समय हो चला है हमारा आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले हम आपको बता देते हैं कल के कार्यक्रम। कल आप सुनेंगे फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स,
1: और होंगी चर्चाएं और रोजगार सूचना।
0: साथ ही आपके मनोरंजन के लिए होंगे गीत भी। तो दीजिए इजाजत, मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त खुशी गंधी, और मेरे साथ थी
1: सावनी पांडे।
0: तो स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का मनचाहा कार्यक्रम युववाणी, मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

श्रोताओं, अभी आपने सुना शिल्पा राव और जावेद अली की आवाज में स्वानंद किरकिरे का लिखा गीत, संगीत निशात खान का था और फिल्म का नाम था ये साली जिंदगी। मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।

AIR at 90. फिल्म संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए टूनपुर का सुपर हीरो। इस फिल्म का गीत रूप कुमार राठौर, जावेद अली व साथियों की आवाज में। गीत के बोल लिखे मुन्ना धीमन ने, संगीत अनु मलिक का।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए पटियाला हाउस फिल्म का गीत शफाकत अमानत अली की आवाज में। गीत के बोल लिखे अन्विता दत्त ने और संगीत शंकर एहसान लॉय का।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए आपको हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में बता दें। सबसे पहले सुनिए आज की सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर बाद 6 बजे सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT जिसे हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। शाम 6:30 पर बुंदेली लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में आज कलाकार हैं मीना गौड़। 7:20 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे नाटक अटकन चटकन का नौवां भाग। भेंटवार्ता क्रम में सुनिएगा गहरी जुताई से किसानों को फायदा विषय पर मस्तु पटेल से रविन्द्र कुमार प्रजापति की बातचीत। आज की सीख का विषय होगा जात जात को पावनो जात जात में जाए। फिल्म संगीत सुनिएगा रात 8:15 पर सुनिएगा रसावतरण कार्यक्रम। इसके अंतर्गत सुनिएगा कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि होंगे धीरेन्द्र सिंह परिहार महेंद्र कुमार चौधरी और वीरेंद्र कुमार तिवारी। दिल्ली केंद्र से रिले होने वाले कार्यक्रमों में रात 9:15 पर सुनिएगा स्पॉटलाइट कार्यक्रम। रात 9:30 पर सुनिएगा चर्चा का विषय है कार्यक्रम। रात 10 बजे आप सुनेंगे श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। ये तो थे हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रम। लीजिए सुनिए कल की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। कल प्रातः 7:20 पर बुंदेली सुगंध के अंतर्गत सुनिएगा बुंदेली किस्सा कंडेल साहब। किस्साकार होंगे नारायण दास सोनी। फिल्मी गीतों का आनंद आप लेंगे प्रातः 7:30 पर और रात 8:15 पर। प्रातः 8:30 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग जिसे हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। प्रातः 9 बजे लोकरंग कार्यक्रम में कलाकार होंगे उमाशंकर पाठक। प्रातः 9:30 पर आप सुनेंगे एक ही गायक क्रम में उदित नारायण के गाए कुछ फिल्मी गीत। 10:05 पर सबरंग कार्यक्रम में लोकराग के अंतर्गत सुनिएगा बघेली लोकगीत। कलाकार हैं वीड़ा श्रीवास्तव। प्रातः 10:30 पर सुनिएगा श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। महिला कार्यक्रम सुनिएगा दोपहर 1 बजे। इसमें महिलाएं सुनेंगी कहानी तुमने सही कहा। कहानीकार हैं डॉक्टर शरद सिंह। साथी होगी सौंदर्य सलाह। शाम 5 बजे युवाणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा जिसमें युवा साथी सुनेंगे श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। साथी होगी रोजगार सूचना। शाम 6:30 पर बुंदेली लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में कलाकार होंगे देवी सिंह यादव। 7:20 पर ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण होगा जिसमें आप सुनेंगे जनोपयोगी चर्चाओं और लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम सुनोगीत गुणवत्ता। प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की और भेंटवार्ता क्रम में सुनिएगा प्रगतिशील कृषक अभिषेक रेखा।

अखबार से बिरजू भैया की बातचीत। आज की सीख का विषय होगा, जी को दूल्हा पांव पे आ दे, ओ की बारात छुटपुटैया। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित कार्यक्रमों की श्रृंखला में सुनिएगा 11 बजे फोन इन कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे, आपकी फरमाइश कार्यक्रम सुनिएगा दिन में 12 बजे और 2:30 पर संग्रहालय से। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 12:30 पर। लोक संगीत सुनिएगा दिन में 1:30 पर और सुगम संगीत का समय होगा 1:45। फिल्म संगीत सुनिएगा दोपहर 2 बजे। सांध्यकालीन सभा में शाम 6 बजे सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी। दिल्ली केंद्र से रिले होने वाले कार्यक्रमों में रात 9:15 पर कार्यक्रम स्पॉटलाइट, 9:30 पर कंट्री वाइड कार्यक्रम, 9:45 पर इनसाइड कार्यक्रम और रात 10 बजे क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती का ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 5:58 होने वाले हैं। न्यूज हेडलाइंस कुछ ही समय में हम भोपाल केंद्र से रिले करते हैं।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास एजेंसियों को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और देश के हर गांव और हर व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज केन्द्रीय मंत्री चिराग पासवान के एक लेख को साझा किया, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए आर्थिक अवसरों की चर्चा है। श्री मोदी ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली एक खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की नई कहानी लिख रही है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज भोपाल में हिन्दी पत्रकारिता द्विशताब्दी महोत्सव के तहत आयोजित पोस्टर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिन्दी पत्रकारिता ने अपनी शुरूआत से ही समाचार प्रसार से आगे बढ़कर राष्ट्रीय चेतना जगाने और स्वाधीनता आंदोलन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। प्रदेश में 5 जून से 21 जून तक एक विशेष जन कल्याण अभियान चलाया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी तैयारियों की समीक्षा की। अभियान की शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृहद पौधरोपण से होगी। और राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दीपक सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पंचायत और नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ये काम तय समय सीमा में पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार, जिसे हमें भेजा है अकोला महाराष्ट्र राधेनगर से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
0: गलत लोग आपकी अच्छाई से भी नफरत करते हैं और सही लोग आप में बुराई जानकर भी आपसे प्यार करते हैं और यही मानव संबंध की विडंबना है।
1: बहुत सुंदर संदेश राजेश पी कारिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
0: महाराष्ट्र से प्रशांत रमेश पाटिल।
1: और धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का।
0: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
1: और साथ ही साथ

0: हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
1: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रसिद्ध शीत मरुस्थलों की।
1: इस क्रम में कल हमने चर्चा की थी अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल की और जाना था इससे जुड़ी रोचक बातों को। आज हम चर्चा करेंगे एक और अनोखे शीत मरुस्थल की और वो है गोभी का मरुस्थल। तो अजीत जी, चर्चा को विस्तार दीजिए।
0: जी विमलेश जी, आइए चर्चा को विस्तार देते हैं। तो श्रोताओं, आपको हम बताना चाहते हैं कि अंटार्कटिक का शीत मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है।
1: जी।
0: लेकिन यदि एशिया महादेश की बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोभी। इसका क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। विमलेश जी, अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओं, ये मरुस्थल मुख्य रूप से मंगोलिया और चीन के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। स्थानीय भाषा में गोभी को गोब कहते हैं जिसका अर्थ है निर्जल स्थान। एक बात और आपको बता दें कि ये रेत का नहीं लेकिन पत्थरों का मरुस्थल है क्योंकि इसका अधिकांश भाग चट्टानी और पथरीला है। केवल 5% भाग ही रेतीला है।
0: तो श्रोताओं, अब बात करते हैं इस मरुस्थल के तापमान की। जहाँ तक तापमान का प्रश्न है, यहाँ तापमान बहुत कम होता है।
1: जी।
0: सर्दियों में ये -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है जबकि गर्मी के मौसम में यहाँ का तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है।
1: यानी एक ही मरुस्थल में कड़कती ठंड भी और झुलसाने वाली गर्मी भी।
0: जी।
1: लेकिन इसे शीत मरुस्थल इसलिए कहा जाता है कि यहाँ अधिकांश समय सर्दियों का ही होता है। अजीत जी, एक बड़ी विशेष घटना हुई है जिसके कारण गोभी का मरुस्थल बहुत प्रसिद्ध हुआ है। क्या थी वो घटना?
0: विमलेश जी, वो घटना थी जब वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में डायनासोर के अंडे और जीवाश्म मिले।
1: जी।
0: यहाँ और भी कई दुर्लभ प्राणियों के जीवाश्म मिले हैं जिसके कारण वैज्ञानिकों और संचार माध्यमों ने इसे प्राचीन जीव जगत के खजाने की संज्ञा दी है।
1: अजीत जी, अब श्रोताओं को जरा यहाँ रहने वाले लोगों की जानकारी दे दें।
0: जी हाँ जरूर।
1: श्रोताओं, गोभी मरुस्थल में रहने वाले अधिकांश लोग आज भी घुमंतू जीवन यानी नोमेडिक लाइफ जीते हैं। मंगोल परिवारों का पारंपरिक घर गोलाकार का होता है जिन्हें यर्ट कहते हैं। इन घरों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि आसानी से खोले और दूसरी जगहों पर ले जाए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग यहाँ मौसम को देखते हुए जगह बदलते हैं। वैसे गोभी मरुस्थल के बाहरी इलाकों में आधुनिक शहर भी हैं।
0: तो श्रोताओं, आपको ये भी बता दें कि आज के आधुनिक वाहन यहाँ बहुत कम मिलते हैं। यहाँ के ऊंट 2 कुबड़ वाले होते हैं जो अत्यधिक ठंड और गर्मी दोनों सह सकते हैं। एक बात और आपको बता दें कि ठंड के समय ये ऊंट बर्फ खाकर अपनी पानी की जरूरत को पूरा करते हैं। घुड़सवारी यहाँ के प्रतिदिन के लोक जीवन का हिस्सा है और घुड़दौड़ है यहाँ का प्रिय खेल और मनोरंजन का माध्यम।
1: जी अजीत जी, क्योंकि उमंग रेडियो कार्यक्रम है तो ये बताना तो बहुत ही प्रासंगिक होगा कि गोभी मरुस्थल के दूर दराज के इलाकों में भी आज भी टेलीविजन की पहुंच बहुत कम या नहीं के बराबर है।
0: जी,
1: यहाँ लोग रेडियो सुनकर ही मौसम का हाल जानते हैं, समाचार सुनते हैं और मनोरंजन भी करते हैं। अब आधुनिकता के दौर में पर्यटन बढ़ गया है, सैलानी देश विदेश से आते हैं और यहाँ के घुमंतू परिवारों के साथ होम स्टे करते हैं।
0: श्रोताओं, यहाँ की दिनचर्या भी बहुत मजेदार और गतिविधियों से भरी हुई है। सुबह उठकर दूध दुहना महिलाओं का काम है जबकि पुरुष मवेशी चराने का काम करते हैं।
1: जी।
0: दिन भर की मेहनत के बाद शाम को पूरा परिवार एक साथ भोजन करता है और कहानियों और गीतों के द्वारा मनोरंजन करता है। ये गाते हैं, बजाते हैं।
1: बजाने के लिए इनके खास वाद्य यंत्र हैं जैसे मोरिन खोर।
0: ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है?
1: ये 2 तारों वाला वाद्य यंत्र है। एक और बहुत लोकप्रिय वाद्य यंत्र है लिम्बे। ये बांसुरी जैसा वायु वाद्य यंत्र है। एक रोचक बात ये है कि यहाँ लोग अपने संगीत को ऊंट घोड़े और प्रकृति से जोड़ते हैं। कई धुनें यहाँ ऐसी होती हैं जो जानवरों को बुलाने और शांत करने के लिए बनाई गई हैं।
0: बहुत सुंदर जानकारी विमलेश जी। सचमुच गोभी का शीत मरुस्थल जीवन की कठिनाइयों और उसे सुंदर ढंग से जीने का अनूठा उदाहरण है।
1: तो श्रोताओं, ये थी रोचक जानकारी गोभी के शीत मरुस्थल की।
0: अब आज का प्रश्न सुनिए आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, गोभी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: गोभी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं?
0: श्रोताओं, आप प्रश्नों के उत्तर और संदेश हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर या हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। और हाँ, NCERT की पाठ्य

0: पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें यानी ऑडियो बुक्स आप दीक्षा या एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है दोस्त की पहचान।
0: कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस लोक कथा में बताया गया है कि एक सच्चे मित्र की पहचान कैसे की जाती है। संदेश दिया गया है कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय काम आए।
2: एक जंगल से दो दोस्त गुजर रहे थे।
3: कितने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ तो।
4: हाँ बहुत बड़े पेड़ हैं।
3: अरे देखो देखो कितने अच्छे पक्षी हैं यहाँ पर। अरे वो देखो चिड़िया।
4: अरे वो देखो बंदर। ओ मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है।
3: मुझे तो थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है।
4: हाँ ये तो सही कह रहे हो। अरे कोई जानवर आ गया तो क्या करेंगे हम?
3: क्या करेंगे? देखेंगे जब जानवर आएगा तब।
2: अचानक
4: ओ ये तो रीछ की आवाज है। अरे अरे मुझे तो लगता है रीछ आ रहा है। ओ अब हम अपनी जान कैसे बचाएंगे?
3: क्या करे क्या करे? जल्दी सोचो क्या करे।
4: मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
3: अरे मुझे तो पेड़ पर चढ़ना आता है।
2: रीछ को देखकर उनमें से एक दोस्त झट से दरख्त पर चढ़ गया।
3: ओ ऐसा करता हूँ पेड़ पर चढ़ जाता हूँ।
2: और दरख्त की टहनियों में छुपकर बैठ गया। दूसरा दोस्त नीचे अकेला रह गया।
4: ओ अब मैं क्या करूं? मैं
2: जब उसको कुछ नहीं सूझा
4: मैं ऐसा करता हूँ जमीन पर लेट जाता हूँ और अपनी सांस रोक लेता हूँ तभी जान बचेगी।
2: तो वो सांस रोककर चुपचाप जमीन पर लेट गया। रीछ उसके करीब आया। उसने उसे सूंघा।
4: ये रीछ तो मुझे सूंघ रहा है। मैं ऐसा करता हूँ सांस रोक के लेटा रहता हूँ तभी जान बच पाएगी।
2: और मुर्दा समझकर छोड़ दिया।
4: बच गए। लगता है रीछ चला गया।
2: रीछ जब चला गया तो दूसरा दोस्त
3: अरे रीछ तो चला गया अब मैं पेड़ से नीचे उतर सकता हूँ
2: और अपने साथी से जाकर पूछा
3: एक बात तो बताओ रीछ ने तुम्हारे कान में क्या कहा?
2: पहले दोस्त ने जवाब दिया
4: मेरे कान में कहा ऐसे दोस्त से दोस्ती मत करो जो मुसीबत के समय काम न आए और तुम्हारा साथ छोड़ दे।
2: पंचतंत्र की कहानी मश्क। सोचिए और बताइए
1: महफूज तरीके से जंगली जानवरों को कैसे देखा जा सकता है? जंगलों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं उनकी फेहरिस्त बनाइए। अगर आप उन दोस्तों में होते तो दोस्त की मदद कैसे करते? दोस्त की पहचान। अभी आप सुन रहे थे ये प्रोग्राम अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, रिकॉर्डिंग मंजू कुमारी, फनकार फरहान अली नकवी, बाल कलाकार सोहम और वान्या, हिदायतकार विमलेश चौधरी, पेशकश कुसुमलता। ये प्रोग्राम CIET NCERT नई दिल्ली भारत के जरिए पेश किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम दोस्त की पहचान।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गौरा देवी।
2: इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाट्य प्रस्तुति के द्वारा चिपको आंदोलन की जानी मानी नायिका गौरा देवी के जीवन और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है।
3: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
4: लाटा गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
3: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
5: मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
6: अरे
5: नहीं लगा ना, लाओ लाओ, रुको रुको रुको। अरे मैं
6: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो।
5: हाँ?
6: अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
5: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो
6: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
7: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
6: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
5: बड़ी आई रोकने वाली। हाँ, वही करेंगे।
3: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
4: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
3: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई।

0: गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
1: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
2: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
3: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
2: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
1: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
2: आप तो काम करती है ना?
1: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
2: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
0: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है, चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
1: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगू का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
0: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांवों के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
1: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
0: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थी। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
1: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
4: गौरमा, गौरमा,
2: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
4: गौरमा, वो लोग आ रहे हैं।
2: कौन लोग आ रहे हैं?
4: अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो। गौरमा,
2: हाँ,
4: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
2: क्या?
4: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियां, रस्सियां और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके, उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
2: अच्छा, तो ये बात है। बहनों,
5: हाँ,

0: हाँ गौरम्मा,
1: चलो हम सब तैयार हो जाएं।
0: बिल्कुल,
1: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
2: हाँ, हाँ सब तैयार है, तैयार
0: है, नहीं नहीं कटने देंगे,
2: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
3: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ओज था।
1: ये है जंगल के उपकार,
4: मिट्टी पानी और बयान,
1: मिट्टी पानी और बयान।
5: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
0: कुछ नहीं हो जाए, अरे तो बात होती तुम्हारी, ये क्या है? अरे क्या कर रहे हो?
6: मेरा मुंह के ताक रहे हो? बोलो शुरू, मारो पे।
0: अरे भाई कौन है? रुको, इस अब निकल जाएंगे पेड़ से।
1: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे, जिस जंगल ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
6: सुनो, आगे बढ़ो।
0: अरे कहाँ
6: से? तुम इनकी बातों में मत आओ। मैंने तुम्हें पेशगी दी है, पेशगी इस काम के लिए।
0: चिपक जाएंगे, चिपक जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे हम।
1: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम, एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे आज।
2: नहीं लगाने देंगे।
1: बहनों, आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
4: हाँ,
0: चिपक जाएंगे।
6: ठीक है, तो वहाँ चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
3: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
5: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
6: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
3: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में यह आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
5: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
3: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
5: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
1: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहाँ से हमें फल फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।

0: छिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था, जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा प्रवीण शर्मा और गीतांजलि, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: तो श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, और इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
3: उमंग। अभी आपने एनसीईआरटी का ये प्रायोजित कार्यक्रम सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
4: मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती का ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हम आपको बता दें, रात 10 बजे आप सुनेंगे श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनभावन। श्रोताओं, ईमेल का पता है airchatarpur1976@gmail.com। तो श्रोताओं, अपने मेल जरूर करिएगा। मीडियम वेब पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। इसमें आज कलाकार हैं मीना गौण, इनके साथ ढोलक पर संगत दे रहे हैं हरिशंकर बैन, बैंजो पर हैं मदन सेन और बांसुरी पर हैं मनोज। कार्यक्रम में सबसे पहले लीजिए इनसे सुनिए ये गणेश वंदना।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा आप आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से सुन रहे हैं। इसमें आज कलाकार हैं मीना गौण, इनके साथ ढोलक पर संगत दे रहे हैं हरिशंकर बैन, बैंजो पर हैं मदन सेन, बांसुरी पर हैं मनोज। लीजिए कार्यक्रम, इनसे सुनिए ये देवी गीत।

90. लोकधारा कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए मीना गौड़ की आवाज में ये देशभक्तिपूर्ण रचना।

0: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड AI बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
2: बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा आप आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से सुन रहे हैं। इसमें आज कलाकार हैं मीना गौण, इनके साथ ढोलक पर संगत दे रहे हैं हरिशंकर बैन, बैंजो पर हैं मदन सेन और बांसुरी पर मनोज। कार्यक्रम में लीजिए इनसे सुनिए ये लोक शैलीबद्ध लोकगीत।

0: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड AI बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
2: बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा आप आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से सुन रहे हैं। इसमें आज कलाकार हैं मीना गौड़, इनके साथ ढोलक पर संगत दे रहे हैं हरिशंकर बैन, बैंजो पर हैं मदन सेन और बांसुरी पर मनोज। कार्यक्रम में लीजिए इनसे सुनिए ये पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित लोकगीत।

इसी के साथ बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा अब संपन्न होता है। इसमें आज कलाकार थे मीना गौड़, इनके साथ ढोलक पर संगत दे रहे थे हरिशंकर बैन, बैंजो पर थे मदन सेन और बांसुरी पर मनोज। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। गुमशुदा व्यक्ति के संबंध में सूचना सुनिए। गुमशुदा व्यक्ति का नाम विनी देवी, पति का नाम श्री नाहर सिंह यादव, निवासी भैलावली, थाना रामपुरा, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश। इनकी उम्र 35 वर्ष। इनका चेहरा गोल, रंगोरा, आंख नाक कान सामान्य, कद 5 फुट 2 इंच। ये पीले रंग की साड़ी और काले रंग की चप्पल पहने हुए हैं। ये दिनांक 15 मार्च 2026 को समय करीब सुबह 10 बजे अपने घर से अपने पुत्र को, जिसकी उम्र 10 वर्ष है, लेकर साथ कहीं चली गई हैं। इनके बारे में किसी भी प्रकार की सूचना होने पर कृपया फोन नंबर 9026900984 या फिर 8707774939 पर संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर एक बार पुनः सुन लें, 9026900984 और 8707774939 पर संपर्क कर सकते हैं। एक और सूचना सुनिए।

गुमशुदा व्यक्ति का नाम श्रीमती जानकी, पति का नाम उत्तम, निवासी ग्राम बड़ी बंधौली, थाना डकोर, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश। इनकी उम्र 27 वर्ष। कद 5 फीट, रंग गोरा, चेहरा गोल, बाल काले, ये हरी साड़ी छापदार, पैरों में कत्थई कलर की चप्पल स्लीपर पहने हुए हैं, ये दिनांक 16 अप्रैल 2026 को, समय सुबह 11 बजे, मौनी मंदिर उरई से कहीं गुम हो गई हैं। इनके संबंध में थाना डकोर में गुमशुदगी पंजीकृत है। इनके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी होने पर कृपया मोबाइल नंबर 6387709330 पर संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर एक बार पुनः सुन लें, 6387709330 पर संपर्क कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 7:10 होने वाले हैं प्रादेशिक समाचार। कुछ ही समय में हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। केंद्र सरकार ने प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 347 बी के चौड़ीकरण के लिए 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को मंजूरी दी। प्रदेश में 5 से 12 जून तक विशेष जन कल्याण अभियान चलाया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने आज इसकी तैयारियों की समीक्षा की। और राज्यपाल बंगोभाई पटेल ने भोपाल में हिंदी पत्रकारिता द्वी शताब्दी महोत्सव के तहत पोस्टर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि शामिलाने से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहले नीति के तहत एक अहम साझेदार है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत दोनों देशों के विशेष संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नेपाल की नई सरकार के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमान ईंधन यानी ATF की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता को मंजूरी दी है। पश्चिम एशिया संकट के कारण

0: टीएफ की कीमतें मार्च में 60 रुपए से बढ़कर मई में 182 रुपए प्रति लीटर हो गई थी। ये सहायता अगले 36 महीनों तक जारी रहेगी। इससे विमानन क्षेत्र के 77 लाख रोजगार सुरक्षित रहेंगे। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया,
1: एटीएफ प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया है। एटीएफ प्राइस फॉर दी एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल एटीएफ प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरम्भ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: इसके अलावा मंत्रिमंडल ने दिल्ली एनसीआर में पुराने 2 लाख ट्रक और 16,000 बसों को BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने की योजना को भी हरी झंडी दी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 347 बी के उन्नयन और चौड़ीकरण को मंजूरी दे दी है। 233 किलोमीटर से अधिक लंबी इस परियोजना पर 4,415 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे बैतूल, खंडवा, खरगोन, बड़वानी जिलों में सड़क की स्थिति सुधरेगी, यातायात जाम की समस्या से राहत मिलेगी। ये मार्ग इंदौर और नागपुर हवाई अड्डों के साथ साथ कई औद्योगिक और जनजातीय केंद्रों को भी बेहतर संपर्क देगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास एजेंसियों को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और देश के हर गांव और हर व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के एक लेख को साझा किया, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए आर्थिक अवसरों की चर्चा की है। श्री मोदी ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की नई कहानी लिख रही है। प्रधानमंत्री ने इसे वोकल टू लोकल की दिशा में देश की वैश्विक छलांग बताया। दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई है। 8 दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया और 40 से अधिक लोगों को बचाकर पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रूपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। प्रदेश में 5 जून से 21 जून तक एक विशेष जनकल्याण अभियान चलाया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी समीक्षा की। अभियान की शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृहद वृक्षारोपण से होगी। इसके बाद 8 जून से स्वच्छता अभियान, 12 जून से 18 जून तक जन कल्याण शिविर और 19 से 20 जून को प्राकृतिक खेती पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। ये पूरा अभियान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी 21 जून को संपन्न होगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज भोपाल में हिंदी पत्रकारिता द्विशताब्दी महोत्सव के तहत आयोजित पोस्टर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिंदी पत्रकारिता ने अपनी शुरुआत से ही समाचार प्रसार से आगे बढ़कर राष्ट्रीय चेतना जगाने, स्वाधीनता आंदोलन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने आज कहा कि इस दौर में हिंदी पत्रकारिता को वीडियो, पॉडकास्ट और मोबाइल मंचों के जरिए युवा पीढ़ी से जोड़ना जरूरी है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दीपक सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंचायत और नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ये काम तय समय सीमा में पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। सचिव ने अंतिम मतदाता सूची समय पर जिले की वेबसाइट पर अपलोड करने के भी निर्देश दिये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने के मौके पर शिवपुरी जिले की मैहर शक्ति और स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष ज्योति जाटव ने अपनी प्रेरक कहानी साझा की है। लखपति दीदी योजना से जुड़कर ज्योति ने स्वरोजगार की राह पकड़ी और आज वे आत्मनिर्भर जीवन जी रही हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा,
3: हमारे गाँव में समूह चला दी, मेरे समूह में 11 समूह है, उनकी बैठक करती हूँ।

0: और उन मतलब जो भी बैंक सखी का काम करती हूँ और बुककीपर का भी करती हूँ, तो उसमें मुझे 5,000 रुपये महीने के मिल जाते हैं। और घर पे मेरी साड़ियों की दुकान भी है, तो साड़ियों की दुकान भी चलाती हूँ संध्या सवेरे के टाइम में। तो आज मेरी इनकम 1,44,000 से अधिक है। मोदी जी के लिए मैं धन्यवाद बोलूँगा।
1: भोपाल की रविन्द्र भवन में कल शाम मशहूर शायर और पद्मश्री प्राप्त बशीर पुत्र को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के इस यादें बशीर बद्र कार्यक्रम में कई बड़े शायर, गायक और फिल्म निर्माता बशीर बद्र की विरासत पर अपने विचार रखेंगे। इसके बाद अखिल भारतीय मुशायरा शुरू होगा, जिसमें देश भर के नामचीन शायर अपना कलाम पेश करेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले के इटारसी में सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में मंगल दिवस के तहत सुपोषण दिवस और टीकाकरण दिवस का आयोजन किया गया। देवास में आज यूजीसी के संबंध में सुझाव और विचार प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई। अनूपपुर जिले की छात्रा कुमारी आंचलपुरी ने जीडब्ल्यू एडवांस्ड 2026 में शानदार सफलता प्राप्त करते हुए एसटी पीडब्ल्यूडी श्रेणी में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। छिंदवाड़ा में अवैध खनन के मामले में उमरनाला पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें पैदल न्यायालय पेश किया है। शिवपुरी जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर ने धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। कटनी में मलेरिया से बचाव रोकथाम संबंधी व्यापक जन जागरूकता फैलाई जा रही है। खरगोन में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत जिले में दहेज सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा। नशे को कहे ना अभियान के अंतर्गत शाजापुर में आज पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। खंडवा में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक कल 4 जून को होगी। शहडोल जिले में श्रमिकों के कल्याण के उद्देश्य से नागरिकों से श्रम प्रहरी बनकर श्रम विभाग को सहयोग देने की अपील की गई है। नीमच की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से पिछले 2 वर्षों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए प्लेसमेंट सुनिश्चित किया जाएगा। आगर मालवा पुलिस विभाग द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों को सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर 6 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बैतूल कलेक्टर ने आज विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून तक आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती का ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। ग्रामीण भाइयों के लिए प्रस्तुत है ग्राम सभा कार्यक्रम।

0: ग्राम सभा सुनने बारे सबई भैया बहनन खां किसु भैया
1: और रघु भैया की
0: राम राम राम राम, राम रघु भैया आओ नैया दरी पे हंस सरक आओ। और आज तो खूब दिखा रहे हष्ट पुष्ट से, का बात है।
1: देखो भैया गर्मी पड़ रही थी बहुत।
0: हाँ
1: अब एक दो दिन से तरह मौसम ठीक लग रहा है।
0: अच्छा
1: तो कहा जब तरह मौसम ठीक रहा तो शरीर वैसे ही हाल
0: उठ हो जाता। और हम तो देख रहे कि अपन ऐसा लग रहा हो जैसे खूब साइकिल से चलाओ चले आए हो।
1: देखो भैया साइकिल चलावो तो बहुत जरूरी है। कैसे साइकिल चलावे से भी एक तो अपनो शरीर फिट रहा।
0: बिल्कुल।
1: दूसरा भैया देखो वजन भी कम हो।
0: बिल्कुल।
1: और पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाए।
0: बिल्कुल रघु भैया। और देखो आज

0: तो आज तो विश्व साइकिल दिवस हो है
1: भैया, आज के दिन 3 जून का यहाँ मनाया जाता है। साइकिल दिवस मनावे को प्रमुख कारण स्वच्छ पर्यावरण और स्वस्थ मनुष्य और जन जागरूकता को संदेश देते हैं।
0: बिल्कुल, अच्छा ई दिना को मनावे को मुख्य उद्देश्य लोगन का भैया साइकिल के उपयोग पे होवे वाली स्वास्थ्य लाभन पे और भैया पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करवो है आज के दिना।
1: देखो भैया, साइकिल सबसे सस्तो वाहन है, इसके अनेक फायदे हैं। देखो, एक तो पेट्रोल की बचत हो, पेट्रोल अपन देख रहे खूब कीमतें बढ़ रही है, तो पेट्रोल की बचत हो, संग भैया देखो प्रदूषण नहीं फैला।
0: बिल्कुल, और रघु भैया हम तो जो कहे कि हमारे सभी पंच कम से कम 20-30 मिनट दिन भर में से एक बेर कौन उबेरा चाहे सवेरी चाहे शाम के साइकिल चला ले, तो इसे उनको शरीर जो है बहुत ही स्वस्थ बनो रहा।
1: और भैया देखो, इसे शरीर के इम्यून सेल्स एक्टिव हो जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसे भैया बीमारी को खतरा भी।
0: अच्छा एक बात और होते रघु भैया, आर्थिक बचत सो हो।
1: देखो भैया, आर्थिक बचत तो होता ही है, साथ में भैया देखो कई पंच भैया कान लगत के अब हमारे घुटना प्राण लगे चलो नहीं जा।
0: बिल्कुल,
1: अगर पंच भैया शुरू से साइकिल चलाएं तो जो समस्या ही ना भैया।
0: बिल्कुल ना है, और देखो भैया पेट्रोल डीजल में कितना खर्चा हो, और आजकल तो भैया हमारे पंच हैं तन कई जाने सो तुरंत फटफटिया उठाई और मारी के को चल दो, तो भैया हमारे पंचन से तो जो ही के वो है कि हमारे पंच जो है साइकिल को उपयोग करें और स्वस्थ बने रहें।
1: भैया एक बात और है, साइकिल चलाए से अपना दिमाग ज्यादा एक्टिव होता है।
0: बिल्कुल,
1: और जिसे ब्रेन पावर बढ़ाता है, और भैया जो अपना दिमाग है ना 15-20% ज्यादा काम करने लगा।
0: बिल्कुल रघु भैया, तो अब तनक रोक ना लेते अपन।
1: बिल्कुल,
0: ले लेते तनक सो विराम।
1: बिल्कुल।

0: Akashwadi at 90. कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।
2: रघु भैया।
3: हाँ किशु भैया,
2: पंचन को स्वागत करते हैं फिर से कार्यक्रम में विराम के बाद।
3: बिल्कुल भैया, और देखो जैसे अपन अभी चर्चा चल रही थी, साइकिल चलाए से
2: बिल्कुल
3: फायदा है।
2: बिल्कुल,
3: और भैया देखो अपन चर्चा कर रहे थे कि पर्यावरण के लाने बहुत बढ़िया सुरक्षित है, और पर्यावरण संरक्षण भी हमें पंचभियन का करना है, और अपने चारों तरफ फैले आवरण जैसे वायु, जल, मिट्टी, पेड़ पौधे, वन्य जीवन का प्रदूषण से बचाना है।
2: बिल्कुल रघु भैया, पर्यावरण सुरक्षा के लाने के उपाय करे जा सकते हैं, जैसे वृक्षारोपण, ज्यादा से ज्यादा अगर हमारे पंच पेड़ लगावे तो इसे भैया पर्यावरण संरक्षण होते हैं।
3: बिल्कुल भैया,
2: है नहीं?
3: और देखो ई कलाने तो पंच भैया पेड़ तो लगाए, साथ में भी ये बनन की कटाई बिल्कुल ना करें।
2: बिल्कुल, जा तो ई पे तो जरूर रोक लगू चाहिए।
3: ऐसा भैया जब अपने जेब 40-40 साल पुराने जो पेड़ है,
2: बिल्कुल
3: ये भैया देखो हमें कितनी अच्छी हवा दे,
2: हवा दे,
3: और देखो जैसे गर्मी में आया तो कम से कम नीचे बैठ जाते
2: हैं जाते नहीं। अच्छा, इसे प्रदूषण नियंत्रण के लाने भी अपना देखो का है, कारखाना के जो धुआं है, रासायनिक जो कचरा है, इका भी नियंत्रित कर वो बहुत जरूरी है।
3: और देखो भैया के औद्योगिकरण के कारण वनन की कटाई हो रही, तो प्रदूषण के कारण हमारी पृथ्वी को संतुलन भी बिगाड़ रहा है।
2: बिल्कुल,
3: जिससे ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर चुनौतियां पैदा हो रही हैं।
2: बिल्कुल रघु भैया, पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत एक चीज और आउट है कि बिजली की बचत कर वो, और सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा जैसे स्रोतन का बढ़ावा मिलो चाहिए
3: भैया, जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है।

0: और हमें सभी पंच भैया का जो पंच भैया जागरूक नहीं है उन्हें जागरूक करो चाहिए।
1: बिल्कुल। और रघु भैया एक चीज और है, देखो प्लास्टिक को भी बहिष्कार हो वो बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल भैया, और सिंगल यूज प्लास्टिक को उपयोग तो बिल्कुल बंद कर दो चाहिए। उसकी जगह भैया कपड़ा या जूट के थैलन को पंच भैया प्रयोग करें।
1: बिल्कुल।
0: स्वच्छ ऊर्जा बिजली की बचत करें और ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा जैसे वैकल्पिक स्रोतों को उपयोग करें।
1: और संगे संगे पानी को विवेकपूर्ण उपयोग करके भी अपनी जो नदियां हैं उखा प्रदूषण से बचाव जा सकत के।
0: बिल्कुल भैया, देखो कारखानों के कचरे को सही प्रबंधन करो बहुत जरूरी है, और निजी वाहनों की जगह पंच भैया सार्वजनिक वाहन को प्रयोग करें।
1: बिल्कुल रघु भैया, तो अब पंचन है ले चला थे अपन एक धारावाहिक अटकन चटकन को।
0: बिल्कुल भैया, तो
1: सुनवाते हैं आज अटकन चटकन को भाग नौ।
0: बिल्कुल अपन सुने पंचने धारावाहिक अटकन चटकन।
2: बस एक लुटिया में जल,
3: हाँ।
2: अगरबत्ती कछु फूल होए ता ले आओ।
3: हाँ, हाँ, हाँ, बाबा अपन तो पूजा की शुरुआत ही करो, मैं अब भी ले आऊ सब चीजें, इतना ही ले आऊ तुम्हें।
2: हम पूरत हैं चौक।
3: हाँ, हाँ।
2: तो लो तुम जो जो कछु सामान दूनो करवाओ ने हो सो उठा ले आओ देवी। हाँ।
3: दूनो सासों।
2: अरे तुम्हारे भाग खुले हैं यार।
3: अरे तो तेरा जल्दी विस्तारो बाबा, जल्दी विस्तारो जो पूजा पाठ, लियो लियो मैं अब भी आऊ।
2: अपने तो सोनो चांदी और नगदी जो कछु होए सो धरो, पूजा जैसे ही हो जाए सो सब सोनो चांदी रुपया पैसा सब झुलमिला उठे दुगने हो जाए देवी।
3: अरे
2: अब नीचो आँखें एक नई देवी, दो ही आँखें देवी, बिल्कुल नजर न पड़े ना, नहीं तो सब उड़ जाए है तुम। दोनों न हुई है
3: जी
2: चलाई ठीक है देवी। अब जो लो हम ना के भी तो लो आँखें ना खुले हैं अपन की देवी। दून दून दून कर चिन में दूनर देव धन दूनों का तनक में घर को भर दो, जय दूनर देव की अड़ अक्षरम गोल कलाम। देवी देवता लेव मनाए जो सब धन दुख न हो जाए, जय दूनर देव की।
4: काय चटकन?
5: हाँ भैया अटकन,
4: आज काल खूब सुनबे में आ रहा हूँ कि कछु ढोंगी नाय माए घूम रहे गांव में। और जहाँ सुनो घर पा जात सो उते की और तनखा धन दोगने करबे की लालच दे के अपने जाल में फंसा ले।
5: हाउ भज्जा, और कऊ कछु सुंगा देत, कऊ पानी किंच देत, कऊ ककरा पड़ के मार देत, कऊ कछु नहीं है तो फूल ही सुंगा के उन्हें बेहोश कर देते वे, और धन लेके नोने से एक दो तीन हो जात हैं। और भैया का बताइए, अपन तो रोजीना अखबार में जे जो छप रहो ना रोजीना नो ही बांच रहे।
4: अरे चटकन,
5: हाँ
4: कऊ कऊ सुनबे में तो इतलो आई के बे जोन बा मोहिनी विद्या नहीं हुआ तो बाहर पड़े रात पन बिसरे।
5: अच्छा अच्छा।
4: हाँ सो और तनखा जैसो काट जात,
5: हाँ।
4: सुबह उसे ही काट दी जाती। उनने कही कि जो ले आओ सुबह सब ले आ लिया, धर दी जाती। और जब भी लेके सब गोल हो जात सो उन्हें होश आ जात।
5: काय अटकन भैया, अपने ही कछु ये सो सोचो के अपने ही कछु धनवारे हो जाए हमारे को।
4: चटकन, अपन खा तो छल कपट बिल्कुल नहीं सीखने ना बेलो सीखो आए। अरे अपन तो मेहनत की रोटी खात तो वही खाने अपन खा।
5: अच्छा।
4: और एकदम से बड़ो आदमी सोनी बनने या चटकन?
5: अरे अटकन भैया, एक बेर की मोई खबर है कि अपने गांव में एक कपड़ा सीमेवारो आओ हतु।
4: हाओ हाओ हाओ।
5: सो कल दिन लो तो दुकान अच्छी खोले रहो, खूब चली उकी दुकान।
4: अच्छा।
5: और जब ज्यादा कपड़ा आदमी ने खूब समाये खूब समाये तो खूब कपड़ा हो गए उलो। सो एक दिन उन्हें रात के सबरे घर आए और भगो सबरे लेके।
4: आओ ओ कछु तो भैया चटकन,
5: हाँ।
4: जो चिल्लात रहे कुल दिन लो कि मोरो पेंट ले गो,
5: हाँ।
4: मोरो शर्ट को कपड़ा ले गो, मोरो ब्लाउज कोन न ले गो।
5: हमारी वे जो काकी है ना,
4: हाँ।
5: बेकाती के मोए लड़का को नाप ले गो।
4: अरे चटकन,
5: हाँ भैया अटकन,
4: आज काल तो जाने काका बदमाशी करके आदमी पैसा कमाऊ।
5: हाँ, हाँ।
4: कहूं तुम्हारी नौकरी लगवा देवी, कहूं जॉब करवा देवी,

0: कछु रुपया जमा इकट्ठे कर लो सो कछु सदस्य बनाऊ
1: हाँ।
0: फिर भी सदस्य और सदस्य बनाऊ ऐसे लाखन रुपया कमावे को लालच दे दुनिया भर को।
1: अब कछु न पूछो अटकन भैया, आजकल जितनी बेरोजगारी फैली उतई बदमाशी से पैसा कमावे के ढंग सो आदमी सीखत जा रहे।
0: साचिया हम तो जो जानत चटकन
1: हाँ।
0: कि ई दुनिया भर के फदालन में सभ्या न पड़े
1: कभू न पड़े
0: ना को की बातन में आवे ना पैसा टका फसावे। अरे ऐसे ही तो सट्टा और जुआ होत
1: हाँ।

0: કછું પૈસા ટકા આપણે અહીંયા બચી જાય જો એસો
1: જા કરી ઉમદા ચટકન તમને વાત ચલો લો આ જઈ સરપંચ સાહેબ લો ચલો ઓ બતકાઓ હો જા હે ઓને કો નહીં કરને
0: બિલકુલ નહીં કરને ચલો ચલો સરપંચ સાહેબ લો ચલીએ ચલો
2: અરે સરપંચ સાહેબ ઓ સરપંચ સાહેબ સરપંચ સાહેબ
3: पूजा पाठ में एक बिजी हूँ अभी नहीं आ सका तुम्हें जाओ तुम
4: आज काय की पूजा पाठ में बिजी अपन अरे तरक मनक भोग की जुगाड़ हमारी लग जाए है हमारे बैठे हैं बाहर है कर लो पूजा
3: अरे मैं कहा जात के अभी जाओ तुम अरे जो भोग बारी पूजा पाठ नहीं आए फिर खवाओ में मिठाई मिठाई अरे जाओ तो अबे तुम और बेखंडार भी आ गए बेमतलब में पूजा पाठ
0: अरे काय अब हमारे काय कहाँ बेखंडार रहे ले हमारे बाहर ही बैठे हैं अब तुमाओ काल है हमारे ले तो जाइए थे चलो चले भैया चलो चले
5: अरे अटकन भैया बस बस बस रुक जाओ
0: हाँ। वो देखो इतने से काकी को घर दिखा
1: हाँ। चटकन भैया एक बात देखी है पुन्ने काकी काती को पूजा करवा भी बारो दूसरो नैया और पनैया नहीं उतरी दिखाती वे जब भी आओ
0: ओई मैंने सोची अटकन भैया कछु ना कछु गड़बड़ है इते दार में जो है कारो तनक मनक नहीं है पूरी दार कारी है
1: अरे चटकन भैया हाथ कंगन का आरती का
0: हो हो
1: चलो चलिए एक काम करने का तुम
0: फिर से चले का
1: हो हरा के दबे पावन हो का करने तू के बारे में बस सांस नहीं दिखात बड़ी सी
0: हो हो हो हो
1: ऊ में हो झांक के देखो के का का हो रहा होते
0: हो चलो चले
1: तो सब पतो पर हो जा
0: मजे मजे चलिए
1: झाको झाको ऊ में हो देखो का दिखात
0: अटकन भैया इते तो वो बाबा बैठो कछु गानो गुरिया रुपया पैसा सबई कछु मुलक को सामान जाने का का था
1: चटकन अब काकी बतावे चाहे न बतावे जो जरूर ओई धन दोगुने करवे बार वा बैठो इते
0: बिल्कुल
1: काकी का पसाले जाल में और सबरू धन सोनो चांदी लेके गोल हो जाए
0: ऐसा ही मोए लगत अटकन भैया कि आज काकी फंस गई उठोंगी के चक्कर
1: अब एक काम करो खुशा भूसा सुना रहा हूँ
0: हाँ हाँ हाँ हाँ
1: खुलवाओ के बारे काकी के तान के
0: हाँ हाँ हाँ अरे काकी ओ काकी
3: अरे काय आए फिर आ गए तुम्हारे हमने कही थी जवाब है नहीं है सरपंच कब का हैं
0: अरे काकी तुम सोई जो तो बताओ
3: हाँ
0: और कुआ है तुम्हारे संग है कहा पूजा हो रही कैसी पूजा हो रही
3: को है को नहीं है हम ही तो कर रहे हैं पूजा
4: अरे फेजे पनैया की धरी उतरी दोरे में काकी
0: काकी हाँ। तुम झूठी बोल रहे कछु न कछु हमें लग रहो है कछु
4: काय काकी
3: हाँ
4: तुम वो धन दोगुने करवे बारे के चक्कर में तो नहीं बनी तो नहीं बैठो धन दोगुने करवे बारो तो पक्को ढोंगिया है तनाक देर में पूजा पाठ करवा के और साफ ले जा सोनो चांदी जो है सो जिंदगी भर रोती जाना तुम्हें
0: अरे अबे तो काकी मान जाओ खोलो तो के बारे तो खोलो
4: एक काम करो काकी
3: ले लो
4: के बारे खोलो पहले
3: हां ले लो
4: फिर हमोरन के सामने कह धन दूनो कैसे करे तब मानियो काम
0: हो हो
4: चटकन भाई
0: अपन और यहीं बैठे
4: हां फिर कह धन दूनो अपनो खोलो के बारे खोलो
0: खोलो के बारे खोलो हां जे ढोंगी बाबा
4: हां
0: अब हमोरन के सामने करो तब धन दूनो ढोंगी बाबा
6: अरे आप का करिए अब तो पीते दूरो तो एक ही है कौन कर भी हम अबे तो हो गई आफत
0: अरे भैया अटकन जो वो ढोंगी बाबा निश्चित काकी विधियां जाती बिल्कुल आज पकड़ को पकड़ो पकड़ो
4: है काकी
0: है तुमने बताओ नहीं है काकी दी
4: धन दूनो करवा रही थी तुम अपनो
3: अटकन चटकन तुम्हारे कैसे जान दे अकेले जो के जो ढोंगी बाबा
0: अरे जो भगन ना पाए खड़जे है इको पकड़ लो पकड़ लो
7: अरे अरे अरे अरे हवा अरे अरे हम तो पूजा पाठ करवा रहे थे पूजा पाठ अरे हमने अबे का ले लो काय अरे हम जात है जात है
4: अरे हम जात है भाई अरे
3: भला भला बेटा छोड़ दो नहीं तुम भला बेटा करवा बे जात है हम तो जात है देखो
7: तुम्हारे अकेले में कर भी अकेले में काम आ गए मैं तो जात हूं
3: बिल्कुल
4: पकड़ो थाने चलो थाने में
3: भला अटकन चटकन ईको बिल्कुल बिल्कुल छोड़ियो ना, जो तो मुंह तो बिल्कुल बर्बाद करें दे तो। हाय राम।

0: सरपंच साहब राम राम।
1: राम राम, अटकन चटकन राम राम। आओ बैठो बैठो, कुल दिनन में हमले का है गांवदारी के हालचाल?
2: अब गांव की तो हालचाल सब ठीक ही ठाक है।
1: हाँ।
2: अकेले सरपंच साहब हमारी औरन के हाल चाल बिगड़े से दिखात कछु
1: काय कहो गो जो ने सुकात
3: भाव तो कछु नहीं है सरपंच साहब। अब जो यह है कि हम और सब यार सरतारे फिर रहे कछु काम ही आम की जुगाड़ लग जाती से दो ही जने अपन लो भगत आए सरपंच साहब।
1: अब देखो ऐसो है, नौकरी चाकरी तो बड़ी बड़ी मुश्किल है।
3: हो हो।
1: अब जो ही हो सकत के कछु एंक बैंक से कर्जा ले लो सो कोनो धंधा पानी कर लो।
3: हो।
1: सो तुमोरन खां और तुम्हारे संगे दूसरन खां उन सब खां रोजगार मिले काय?
2: हाँ जो तो ठीक है सरपंच साहब, अकेले जोन वो स्टाफ डेम नहीं बनने हतु सो वही को कम से कम काम लगवा देती। अरे हमोरन खां का अचानक है देखी तक की करत राती।
3: देखो अटकन भैया, सरपंच साहब आए अपने घर के आए के नहीं।
2: हाँ।
3: सो उनसे घुमा फिरा के काय हाँ बतकाव कर रहे। अरे सीधो सीधो काय नहीं कह रहे कि हम औरन खां वो स्टाफ डैम को ठेका दे दो ठेका।
1: अब देखो ऐसो है अटकन चटकन भैया,
3: हाँ
1: ऊ को तो ठेका ही सो आए।
3: हाँ हाँ।
1: तो मोरन खां तो ऊ काम करवाऊ नहीं है, काय और कुआ है करावे है? पैसा पूरा बैंक में जमा ही है।
3: हाँ।
1: चाहे जब से काम लगवा लो।
2: लो चटकन बन गई बात करी।
3: बिल्कुल अटकन बन गई।
2: अब एक काम करो, तलाशो जल्दी से जल्दी मजूर और कारीगर, लगाओ काम।
1: अटकन चटकन, सबसे बड़ी परेशानी तो जेईया है और यही से अब जो काम नहीं लग पाओ।
3: काय की परेशानी सरपंच साहब?
2: अरे चटकन अभी तुम्हारी समझ में नहीं आई।
3: अरे
2: सरपंच साहब मजूर नन की बात कर रहे।
3: अच्छा, अच्छा।
2: आज काल मजूर ढूंढे ढूंढे नहीं मिल रहे।
3: जा बिल्कुल साची बात करी अटकन भैया अपन ने। जोन देखो सो दिल्ली पंजाब कहूँ हरियाणा जात जैसे होते धन सेत में मिलत हुई उन्हें।
1: खाए के जोन पढ़े लिखे नहीं
3: है
1: सो आठ आठ है उनके लड़का बारे।
2: हाँ।
1: खेती किसानी है नहीं है, गाँव में मजूरी मिलत कम सो का करें।
2: अरे ऐसे तो आजकल पढ़ाई लिखाई को महत्व तो ज्यादा है सरपंच साहब, कि साहब जने सीमित परिवार की फायदा अच्छी तरह से समझे। अरे एक या दो संतान हो गए तो आदमी की गुजर तो आराम से चल ही सकत का नहीं चटकन?
3: बिल्कुल अटकन भैया। अरे वो जी के खेती किसानी नहीं है सो वो दूसरन की सोंजे आई बटे आई पे ले सकत।
2: हाँ, खेती
3: और कछु सालन पहला सरकार ने जो भूमिहीन भैया थे उन्होंने कहा भूमि के पट्टा नहीं बांटे थे।
2: तो है चटकन के कर्महीन किलपत फिरे कल्प वृक्ष की छाओ। अरे घर की आधी रोटी जो खुद बहुत साजी होत और परदेश के छप्पन भोजन साजी नहीं होत।
1: हम तो जो कहत के जोन विकास के काम आदमी घरे रह के कर सकत भी बाहर जाके कभी नहीं कर सकत।
2: अरे चटकन हमने एक बात और देखी।
3: कैसी?
2: के बाहर जाके चार छह महीना काम करो सो जितो कमाओ सो घरे आए जितना सो दिवाली सी मनाई।
3: भैया रोज ही ना कहूँ दारू मुर्गा जुगा और फिर बढ़ा गए पैसा सो ओने पोने ब्याज पे ओने।
4: देखो किस्सू भैया।
5: हाँ रघु भैया।
4: अबे अपन सुनते हैं धारावाहिक अटकन चटकन को भागनो और देखो अब कार्यक्रम का आगे बढ़ाए ई के पहले थोड़ी रुकत है।
5: बिल्कुल रघु भैया।
6: Cancer Hospital and Research Institute

0: इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निःशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।
2: हाँ रघु भैया।
3: हाँ किशोर भैया,
2: विराम के बाद फिर पंचन को स्वागत है और अब लेके चलते हैं पंचन खां भेंट वार्ता कूद और सुनवाउत है गहरी जुताई से किसानों को फायदा
3: विषय पर मस्तु पटेल से रविंद्र कुमार प्रजापति की
2: बातचीत।
3: तो अपन सुने जा भेंट वार्ता।
2: बिल्कुल रघु भैया,
4: हमारे किसान भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार और आज फिर हम अपने किसान भाइयों के लिए महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं और आज का जो हमने विषय रखा है डीप प्लोइंग यानी गहरी जुताई से किसानों को लाभ। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच में कृषि विशेषज्ञ मस्तु पटेल जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आकाशवाणी छतरपुर के स्टूडियो में।
5: नमस्कार सर
4: जी। जैसा कि हमारा आज का विषय है गहरी जुताई के लाभ, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि गहरी जुताई आखिर क्या होती है, किसको कहेंगे हम गहरी जुताई?
5: सामान्यतः सर जुताई तो नॉर्मल भी होती है लेकिन नॉर्मल से ज्यादा जुताई करते हैं जिसकी गहराई 20 से 30 सेंटीमीटर होती है तो उसको गहरी जुताई कहते हैं। यह विशेष रूप से जो हार्ड कड़ी परत हो जाती है उसको तोड़ने के लिए और उर्वरता शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है।
4: जी जी जी जी। और गहरी जुताई करने से किसानों को क्या फायदा होता है, उन्हें क्यों करनी चाहिए गहरी जुताई?
5: सामान्यतः गहरी जुताई से मिट्टी भुरभुरी बनती है, पानी का संचय बढ़ता है और जड़ों का विकास होता है। इसके साथ साथ ही खरपतवार और जो कीट रहते हैं, जो नुकसानदायक कीट हो गए, खरपतवार हो गए, इनका भी नष्ट, ये भी नष्ट हो जाते हैं।
4: जी जी।
5: जिससे फसल उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में वृद्धि हो जाती है।
4: अच्छा, अगर किसान भाई गहरी जुताई नहीं करते हैं, उथली जुताई करते हैं, तो उन्हें क्या नुकसान और क्या फायदा होते हैं?
5: किसान भाइयों को जो कीट होते हैं और जो खरपतवार होते हैं, क्योंकि खरपतवार का बीज 20-20 30-30 साल तक जीवित रहता है, जो अनुकूल प्रभाव मिलने पर वो जर्मिनेट हो जाता है
4: और जो गहरी रहता है, गहराई में रहता
5: जी
4: है।
5: जी जी बिल्कुल। तो अभी जो नुकसान किसान उठा रहे हैं खरपतवारों से, लगभग 30-40% तक नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो सबसे ज्यादा फायदा तो इसमें है कि खरपतवारों का नियंत्रण हो जाता है, उसके साथ साथ जो नुकसानदायक कीट होते हैं उनका भी निवारण हो जाता है गहरी जुताई से, और उसके साथ साथ पानी का संचार और जो डीप रूटेड गहरी जड़ों वाली फसलें होती हैं वो नीचे से पानी को अवशोषित करती हैं जिससे फसल सूखा ग्रस्ती में आसानी से उग जाती है।
4: जी जी जी जी। तो गहरी जुताई की बात हो रही है तो आखिर हमारे किसान भाइयों को कौन सा सही समय है गहरी जुताई करने का?
5: वैसे तो किसान कोई भी फसल कटने के बाद गहरी जुताई कर सकते हैं
4: जी,
5: लेकिन यहाँ पे बात हो रही किसानों को फायदा कैसे होगा।
4: बिल्कुल।
5: तो जो किसानों को फायदा होगा वो अप्रैल से जून में होगा क्योंकि वातावरण का टेम्परेचर ज्यादा होता है
4: जी,
5: इससे नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है और ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाती है जिससे सूक्ष्म जीव होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और जो हमने पहले ही बोला कि जो नुकसानदायक कीटों के अंडाणु होते हैं, खरपतवार होते हैं, वो नीचे चले जाते हैं जिससे खरपतवारों का जर्मिनेशन और नुकसानदायक कीटों के अंडाणु खत्म हो जाते हैं।
4: जी जी।
5: तो विशेष रूप से अप्रैल से जून के बीच गहरी जुताई करना चाहिए किसानों को।
4: तो क्या हमारे किसान भाइयों को हर साल गहरी जुताई करनी चाहिए?
5: नहीं, वैसे तो गहरी जुताई 2-3 साल में की जाती है क्योंकि गहरी जुताई से किसान को अत्यधिक कॉस्ट भी लगता है और इससे संरचना में भी विकार होता है अगर लगातार हर साल गहरी जुताई करते हैं, क्योंकि संरचना एक ऐसी प्रॉपर्टी है सॉइल की जिससे एक निर्धारित होता है कि पोषक तत्व पौधों को कितने अवेलेबल होंगे। तो हर एक किसान को 2-3 साल बाद गहरी जुताई करवाना चाहिए।
4: गहरी जुताई की बात हुई है तो हमारे किसान भाइयों को कुछ विशेष कृषि यंत्रों की जरूरत पड़ती है या सामान्य रूप से जो उपलब्ध रहते हैं उनसे हो जाती है गहरी जुताई?
5: नहीं, सामान्यतः गहरी जुताई के लिए किसानों को मोल्ड बोल्ड प्लाव हो गया, चीजल प्लाव हो गया, सब सॉयलर एंड रिवर्सिबल प्लाव जैसे कृषि यंत्रों का उपयोग करना पड़ेगा।
4: बिल्कुल बिल्कुल। तो गहरी जुताई से पानी की बचत भी हो सकती है?
5: जी सर।
4: हो सकती है तो कैसे हो सकती है?
5: जिन फसलों की जड़ें गहराई तक जाती हैं
4: जी,
5: क्योंकि अपना बुंदेलखंड रीजन की बात करते हैं तो यहाँ पे वर्षा विशेष रूप से अन्य राज्यों की तुलना में कम होती है, तो जो फसलें गहरी जड़ें के साथ ग्रो होती हैं वो नीचे से पानी अवशोषित कर लेती हैं, इसलिए गहरी जुताई आवश्यक होती है।
4: जी जी जी। आपने बताया है कि खरपतवार नियंत्रण में बहुत मदद मिलती है गहरी जुताई से। इसके साथ जो मिट्टी की उर्वरता है उस पर

0: क्या प्रभाव पड़ता है गहरी जुताई से?
1: क्योंकि मिट्टी भुरभुरी बनती है और जो अवशेष रहते हैं मिट्टी में वो भी उसके साथ मिल जाते हैं, जिससे सूक्ष्म जीव बनते हैं
2: जी।
1: जैसे ही सूक्ष्म जीव बनते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाती है
2: जी,
1: जिससे पोषक तत्वों का मिनरलाइजेशन होता है और पौधों को ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व मिलते हैं
2: जी जी जी। गहरी जुताई के लिए कुछ फसलें भी होंगी चुनिंदा, तो किन फसलों में गहरी जुताई लाभकारी होती है?
1: वैसे तो किसानों को सभी फसलों के लिए गहरी जुताई करना चाहिए, लेकिन जिनका रूट गहराई तक जाता है जैसे कपास हो गया, गन्ना हो गया, दलहनी फसलें हो गई, इनमें मुख्यतः से गहरी जुताई करना चाहिए किसानों को।
2: गहराई तक जाता
1: और अपने बुंदेलखंड रीजन में पल्सेस में जैसे दाल वाली फसलों में मसूर हो गया, चना हो गया, अच्छी खासी मात्रा में होता है
2: जी जी जी,
1: तो इन फसलों के लिए बहुत ही आवश्यक है गहरी जुताई
2: जी जी जी जी। गहरी जुताई के लिए कौन कौन से कृषि यंत्र होते हैं ये आपने देखिए बताई दिया है, जो हमारे किसान भाई आसानी से और उनके पास जो उपलब्ध रहते हैं और आपने नाम बताए हैं, तो कहीं ना कहीं से देखिए वो अवेलेबल करवाई लेंगे।
1: बिल्कुल,
2: तो गहरी जुताई जरूर करेंगे।
1: आजकल हर एक जिले में या ब्लॉक में कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित कर रही है सरकार
2: जी,
1: तो वहाँ से भी आसानी से मिल सकते हैं किसानों को
2: जी,
1: क्योंकि ये थोड़ी महंगे आते हैं तो हर एक किसान को खरीदना थोड़ा मुश्किल होता है, तो सरकार ने एक कस्टम हायरिंग योजना निकाली है
2: जी,
1: जहाँ पे किसानों को उपलब्ध करवाती है सरकार
2: जी जी, कुछ न कुछ सब्सिडी देखे।
1: बिल्कुल
2: किसान भाई,
1: बिल्कुल जी जी जी।
2: तो कई बार देखिए सूखे की स्थिति भी बनती है हमारे बुंदेलखंड में
1: जी जी,
2: तो क्या सूखे की स्थिति में जो गहरी जुताई है ये कुछ फायदा करवा सकती है किसान भाइयों?
1: बिल्कुल, जैसे देखा आप बुंदेलखंड रीजन की अपन बात कर रहे हैं
2: जी,
1: तो यहाँ अन्य राज्यों की तुलना में या अदर रीजन की तुलना में बारिश कम होती है।
2: बिल्कुल,
1: तो गहरी जुताई इसलिए आवश्यक हो जाती है क्योंकि जड़ें नीचे से पानी तभी उठा पाती हैं जब उसमें पोर स्पेसेस ज्यादा होते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: पोर स्पेसेस ज्यादा होंगे तो रूट नीचे तक जाएगी और जब रूट नीचे तक जाएगी तो पानी वहां से आसानी से उठा सकती है, इसलिए गहरी जुताई 2 से 3 साल में बहुत ही आवश्यक है किसानों को।
2: बिल्कुल बिल्कुल, तो जब गहरी जुताई की बात हो रही है तो किसान भाई सोच रहे होंगे कि अगर हम गहरी जुताई करवाते हैं तो कीट रोग भी हो सकता है हमारे कम लगे, तो क्या इसमें भी फायदा मिलता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, अभी कीटों का तो और खरपतवारों का मैंने पहले ही बताया
2: जी,
1: है
2: जी, जी।
1: लेकिन कीट का क्या है कि जो साइकिल होता है अगर वो अपन उनका ब्रेक करते चाहे वो गहरी जुताई से हो चाहे वो कंजर्वेशन के थ्रू हो, तो इससे लाभ होता है कि जो कीट होते हैं वो पनप नहीं पाते ज्यादा से ज्यादा, इसलिए वो गहरी जुताई में ही ज्यादा से ज्यादा उनका नियंत्रण होता है।
2: किसान भाई जब गहरी जुताई करवाते हैं तो उन्हें क्या ऐसा फर्क देखने को मिलता है कि हमने जो जुताई करवाई वो गहरी हुई है?
1: एक तो गहरी जुताई से क्या है कि पोर स्पेसेस ज्यादा होने की वजह से फसलों का विकास बहुत ज्यादा होता है और पोषक तत्व की अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाती है
2: जी जी,
1: जिससे सीधा सीधा उसकी गुणवत्ता पे और उत्पादन पे फर्क पड़ता है
2: जी जी जी जी
1: जी जी।
2: हमारे छोटे और सीमांत किसानों के लिए गहरी जुताई के लिए कितनी मतलब उनके लिए फायदेमंद किफायती हो सकता है?
1: जो सीमांत और छोटे किसान है, बड़े किसानों के लिए तो है ही लाभ, लेकिन ये छोटे और सीमांत किसानों के लिए ज्यादा है क्योंकि उनके पास जमीनें कम है, तो वो क्रॉप साइकिल या क्रॉप चक्र होता है जो
2: जी,
1: वो अपनाने से पहले एक गहरी जुताई कर सकते हैं जिससे पूरी जो क्रॉप साइकिल होती है या क्रॉप चक्र होता है उसमें पोषक तत्व और खरपतवार और कीट नियंत्रण आसानी से हो जाते हैं जिससे उत्पादन में डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है।
2: गहरी जुताई से जो मिट्टी की गुणवत्ता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब पोषक तत्वों का जो बैलेंस है वो बढ़ता है घटता है या क्या होता है?
1: गहरी जुताई से अभी अपन ने चर्चा की थी कि सूक्ष्म जीव बढ़ जाते हैं जिससे ह्यूमस की मात्रा
2: बढ़ जाती है।
1: जैसे ही ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है तो संरचना की मिट्टी की संरचना में वृद्धि हो जाती है जिससे कि सीधा सीधा पोषक तत्वों पर प्रभाव पड़ता है।
2: बिल्कुल,
1: और पोषक तत्व रूट जोन के जो जड़ होती है उसके आसपास ही रहते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फसल उसको अवशोषित कर पाते हैं।
2: हमने बात की है कि जहां सूखा प्रभावित क्षेत्र है वहां गहरी जुताई तो फायदा करती है, लेकिन जहां वर्षा ज्यादा होती है
1: जी जी,
2: वहां कैसे क्या किसानों को फायदा मिल सकता है गहरी जुताई?
1: जहां पे वर्षा होती है देखो सूखे स्थानों में तो है ही है, लेकिन जहां पे ज्यादा वर्षा होती है वहां भी आवश्यक है क्योंकि बारिश के बाद पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है। अगर गहरी जुताई अपन करवा रहे हैं तो खेत में प्रॉपर पानी नीचे चला जाएगा और वो एक जगह एकत्रित नहीं होगा क्योंकि इसमें पोर स्पेसेस पूरे खुल जाते हैं जिससे पानी नीचे आसानी से संचय हो जाता है
2: जी जी,
1: इसलिए वर्षा आधारित क्षेत्रों में बहुत ही आवश्यक है कि गहरी जुताई करवाएं।
2: हम माप की बात करें तो जो सामान्य जुताई है और गहरी जुताई है
1: जी जी,
2: कितना फर्क होता है?

0: होगा सेंटीमीटर में?
1: जो सामान्य जुताई है वैसे तो 0 से 15 सेंटीमीटर होती है, गहरी होती है
0: जी।
1: जो गहरी जुताई होती है वो 20 से 30 सेंटीमीटर तक जाती है, इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि 2 से 3 साल बाद ही करें इसको।
0: जी जी, जी आजकल कृषि में बहुत सारी तकनीकें आ गई हैं, आधुनिक तकनीकें आ गई हैं, तो आधुनिक तकनीकों के साथ हम गहरी जुताई को कैसे रिलेट कर सकते हैं?
1: आधुनिक तकनीकों के अभी ये पूरा चल रहा है कि पोषक तत्व या सॉइल का कैसे संरक्षण करना है, पोषक तत्वों को कैसे उपयोग करना है, लगातार उर्वरकों का उपयोग करने से जमीन के साथ साथ एनवायरमेंट भी पॉल्यूटेड हो रहा है, तो इसको कोरिलेट ऐसे कर सकते हैं कि गहरी जुताई से पोषक तत्व और सूक्ष्म जीव ज्यादा बनते हैं, तो उसके स्थान पर उर्वरकों का कम उपयोग होता है, जिससे मिट्टी और जो अपना एनवायरमेंट है दोनों पॉल्यूटेड होने से बचता है।
0: जी जी
1: जी,
0: थोड़ी सी गहराई पे हम जाते हैं जुताई में, तो जो मिट्टी की सख्त परत है
1: जी जी,
0: तो वो टूटती है क्या गहरी जुताई से?
1: चूंकि लगातार अपन बजनी जो टूल्स होते हैं, ट्रैक्टर वगैरह या हार्वेस्टर होते हैं, इससे भी हार्ड परत बनती है, और जैसे ही गहरी जुताई करते हैं तो जो इसमें एक हार्ड लेयर बन जाती है, परत बन जाती है, वो भी टूट जाती है, तो जिससे पोषक तत्व हो गया और रूट के नीचे जाने की क्षमता हो गई या कम मतलब ज्यादा हो जाती है।
0: जी जी जी, अंत में हमारे किसान भाइयों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें गहरी जुताई करवाना चाहिए और क्या संदेश देना?
1: अंत में किसान भाइयों से मैं यही कहना चाहता हूं कि हर 2 से 3 साल बाद गहरी जुताई करवाएं, जिससे पोषक तत्व और जो आपका उत्पादन है वो आसानी से बढ़ सकता है और किसानों को सीधा सीधा लाभ हो सकता है।
0: जी, डीप प्लोइंग यानी गहरी जुताई से हमारे किसान भाइयों को क्या फायदा होगा, इस विषय पर बात कर रहे थे हम कृषि विशेषज्ञ मस्तु पटेल जी से। बहुत ही महत्वपूर्ण उम्दा जानकारी दी, हमारे किसान भाई बताई गई बातों पर ध्यान देंगे और अपने खेतों में गहरी जुताई जरूर करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।
1: धन्यवाद सर।
2: तो किशु भैया,
3: हाँ रघु भैया,
2: अबे पंच भैया सुन रहे थे भेंट वार्ता गहरी जुताई से किसानों को फायदा विषय पर मस्तु पटेल से रविन्द्र कुमार प्रजापति जी की बातचीत।
3: और देखो रघु भैया, अबे देखो हमारे पंच जोन है लू लपट से जरूर बचे, कैसे अबे पूरी तरह से ठंडक आई न कहाई।
2: और देखो मौसम तो भैया बदला ही रहो है, तो गर्मी के मौसम में पंच भैया पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, नारियल के पानी, मठा, नींबू जैसे तरल पदार्थों के सेवन से ये शरीर भर ठंडक मिलता है।
3: और संगे संगे भैया आज के मौसमी फल जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी जो ज्यादा मात्रा में खात रहे तो इसे शरीर स्वस्थ बनो रहते।
2: और भैया अगर चक्कर आए, सिर दर्द हुए, मतली आए और मालो मानसिक स्थिति में बदलाव हो या बेहोशी आए, तो भैया जी लू के लक्षण है
3: बिल्कुल,
2: तो अगर ऐसे लक्षण देखें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपना उपचार जरूर करा
3: बिल्कुल। तो अब रघु भैया हो रही है आज की सीख की,
2: आज की सीख को बसाया भैया कि जात पात को पावनो और जात जात में जाए।
3: ई को मतलब है कि भैया जात जात के अपने विशेष तौर तरीके, मान्यताएं और संस्कार हो, तो लोग हमेशा का करत अपने जैसे लोगन में या समुदाय में उठो बैठो पसंद करत के, अलग अलग जात पात और अलग अलग लोगन के रीति रिवाज, खावे पीवे की आदतें और रेवी को तौर तरीका सभी अलग होत। यही से भैया एक विशेष समुदाय के लोग अपनी बिरादरी के आयोजन, उत्सव और संबंध में ज्यादा रुचि लेते हैं।
2: हाँ, सही कह रहे भैया,
3: लेकिन मनुष्य भैया मिलजुल के रहो,
2: मिलजुल के रहो चाहिए, सभी लोगों के संग समान व्यवहार रखें,
3: ऐसी है।
2: और जो जा तो हती आज की सीख
3: बिल्कुल, तो चलत चलत अब हो जाए मनोरंजन और सुनवाऊ थे काशीराम विश्वकर्मा को गाओ भाव जो छुआ छूत पे आधारित लोकगीत।
2: तो पंच सुने।

0: रघु भैया यही लोकगीत के संगे आज को जो कार्यक्रम पूरा होते है काशीराम विश्वकर्मा जी से सुन रहे थे। और अब बता दें काल के कार्यक्रम
1: कल पन सुने सुनो गीत गुनो बात का कार्यक्रम प्रस्तुत हुई है रविन्द्र कुमार प्रजापति
0: बिल्कुल संगे भेंट वार्ता प्रगतिशील कृषक अभिषेक रेकवार से बिरजू भैया की बातचीत हुए और आज की नसीहत सीख को विषय हुए जी को दूला पांव पियावे ओई की बारात छुटपुटैया और अपनो तपनो बतका हुए। तब तक के लाने लेते हैं पंचन से अनुमति पंचो
1: राम राम।

अभी ग्रामीण भाइयों के लिए ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती का ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

श्रोताओ, अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में दाग फिल्म का गीत। गीत के बोल लिखे थे साहिर ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार की आवाज में अनजान का लिखा गीत, संगीत कल्याण जी आनंद जी का और फिल्म का नाम मुकद्दर का सिकंदर।

श्रोता, अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में मुकतर का सिकंदर फिल्म का गीत। गीत के बोल लिखे थे अनजान ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए गोलमाल फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में, शब्द रचना गुलजार की, संगीत आरडी वर्मन का।

0: श्रोता, अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में गोलमाल फिल्म का गीत। गीत के बोल लिखे थे गुलजार ने और संगीत आरडी वर्मन का था। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती का ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं रसावतरण कार्यक्रम। इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि हैं धीरेन्द्र सिंह परिहार, महेंद्र कुमार चौधरी और वीरेंद्र कुमार तिवारी। तो आइए सुनते हैं ये कवि गोष्ठी।
1: लीजिए मित्रों, आज के इस काव्य गुलदस्ते में कवि गोष्ठी में हमारे बीच में उपस्थित हैं बुंदेलखंड और देश के माने हुए युवा और बुजुर्ग साहित्यकार रचनाकार। तो सर्वप्रथम हमारे बीच में आदरणीय दादा वीरेंद्र तिवारी जी, जो अपनी साहित्य साधना से लेकर जिनकी पत्रकारिता अपने युग की धमक के साथ अपनी कलम चलाती आई है। मैं इन चार पंक्तियों के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वह अपनी तेवर की रचनाओं की प्रस्तुति यहां दे सकें। जो टूटी है सदा मक्कार से आशा बदल देना, जो टूटी है सदा मक्कार से आशा बदल देना, तुम्हें सौहार्द सद्भाव की परिभाषा बदल देना। जो हिंदुस्तान की धरती पे करते हैं नजर टेढ़ी, तुम्हें ऐसे मानचित्रों की सकल ढांचा बदल देना। लीजिए इन्हीं पंक्तियों के साथ इस कवि गोष्ठी का शुभारंभ दादा श्री वीरेंद्र तिवारी जी द्वारा।
2: धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम देश के उन वीर जवानों के चरणों में चंद पंक्तियां रखूंगा जो आज सीमा पे तैनात हैं और जिनकी वजह से हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। भारती की आनवान शान को लिए जो हाथ, भारती की आनवान शान को लिए जो हाथ, सर्दी गर्मी बरसा सब सीमा पे बिताते हैं और भूख प्यास त्याग कर जो जागते हैं रात दिन, खुद नहीं सोते सारे देश को सोते। दुश्मन की आहट पे भरते हुंकार जो युद्ध में कदम न पीछे जो हटाते हैं, और सत्य सत्य नमन करूं ऐसे वीर भाकरों का, देश की सुरक्षा में जो शीश को चढ़ा।
1: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
2: कि सीमा की सुरक्षा में जो करते निछावर प्राण, सीमा की सुरक्षा में जो करते निछावर प्राण, वीर बांकरे उन जवानों को नमन है, और देशभक्ति में जो करती बलिदान सुत्र, ऐसी मात पन्ना धाय को नमन है।
1: बहुत बढ़िया।
2: कि मानी नहीं दास्ता जो झूल गए फांसी पर, आजादी के उन परवानों को नमन है, और भारती की आन पर सिंदूर दिया मांग का, शहीदों की उन विधवाओं को नमन है।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर।

0: अब मैं एक युद्ध का चित्र प्रस्तुत करूंगा।
1: स्वागत है।
0: देखिए, आप युद्ध चल रहा है और उसमें एक ऐसा सैनिक भाग ले रहा है जिसकी हाल में ही शादी हुई है, तो उसकी और उसकी पत्नी की
1: मार्मिक चित्र है।
0: वार्ता क्या है इसको मैंने रखा हुआ है, इसमें कुछ बुंदेली शब्दों का भी प्रयोग किया है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है।
0: शमशेर सिंह सेना को मुखिया डटो मोर्चा आगे, शमशेर सिंह सेना को मुखिया डटो मोर्चा आगे, और सोच रहो अब कौन जतन से दुश्मन पीछे भागे।
1: क्या बात है, वाह वाह।
0: सोच रहो अब कौन जतन से दुश्मन पीछे भागे। उसी समय एक साथी ने आके उसे बताया, कि आज तुम्हारे घर से देखो एक पत्र है आया। अब देखिए, आप वो पत्र पढ़ रहा है कि पत्र पढ़ो गदगद हो करके, आहो कब तुम पास हमारे, और पहली होली हैगी ठाकुर हम खेलेंगे साथ।
1: क्या बात, बहुत बढ़िया।
0: तुम छुट्टी लेके आ जाओ, बहुत ही याद सतावे, और मैया कथा करा हूँ जो युद्ध बंद हो जावे।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
0: मैया कथा करा हूँ जो युद्ध बंद हो जावे। इतने में फिर सीटी गूंजी, सैनिक तुरते ही भागे, और सारी टुकड़ी पीछे चल रही। शमशेर सिंह था, भीषण युद्ध भयो बैरी संग, गोली गोला बरसे, वो गिरे सिपाही पड़े मौत को, गोली खाकर गिरे सिपाही पड़े मौत को तरसे, कि दुश्मन को मुए फेर दियो अपनी बंदूक चला, दुश्मन को मुए फेर दियो अपनी बंदूक चला के, और भारत माँ की सरहद पार बैरी को टैंक जला।
1: बढ़िया बढ़िया।
0: भारत माँ की सरहद पार बैरी को टैंक जला के, फिर घायल शमशेर सिंह, शमशेर सिंह घायल हो गया, कि फिर घायल शमशेर सिंह को घर की यादें आई, कि घर की होरी कैसे खिले है रण की होरी मन को, भाई कि क्षमा करो मात बहनिया अब कबहू ना मिले। सैनिक समझ रहा है कि हम इतने घायल हो गए हैं कि अब हमारा बचना मुश्किल है, तो वो कह रहा है कि क्षमा करो मात बहनिया अब कबहू ना मिले हैं, और प्यारी तेरी यादों के संग अब हम होली खेले, कि आज हिमालय के आंगन में खेल रहे हम होली।
1: क्या बात,
0: आज हिमालय के आंगन में खेल रहे हम होली, और भारत माँ ने बड़े प्यार से भर ली मेरी कोरी।
1: क्या बात,
0: भारत माँ ने बड़े प्यार से भर ली मोरी कोरी, के दोनों कंधों से लहू बह, चित्र देखिए आप,
1: स्वागत,
0: कि दोनों कंधों से लहू बहे, लाल धरा हो गई सारी, और रंग उड़े ले होरी खेले दोनों हाथ लिए, पिचकारी, कि पकड़ तिरंगा बैठ गयो बोलो मंजिल अब पाली, और माँ अब रंग कहाँ से लाऊं, हो गई है पिचकारी खाली, कि बेसुर होकर गिरो लाड़ो। इतने में फिर आई होली, किंतु समय सब गुजर गयो, तो खेल चुको वो जम के
1: होली। बहुत ही सुंदर आदरणीय दादा की प्रस्तुति, और लीजिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, इस तेवर से बिना किसी ज्यादा छेड़छाड़ किए हुए, देखो वीर गाथा काल एक बाकायदा एक युग हमारे हिंदी साहित्य में हुआ है, जबकि एक युद्धों का दौर था, इधर आला उदल
0: वाह
1: और उधर पृथ्वीराज चौहान, ये चंदबरदाई, एक अलग ही दृश्य होता था। मित्रों, जो साहित्य के विद्यार्थी हैं वो भलीभांति इस चीज को समझते हैं कि ओज क्या है और वीर रस की क्या प्रासंगिकता राष्ट्र के प्राणों में होती है। लीजिए तेवर से बिना किसी छेड़छाड़ किए, एक युवा रचनाकार जो आग का अनुवाद करता है, आग के ऐसे ही मौसम में, इन चार पंक्तियों के साथ बुलाता हूँ कि साजिशें बैरी की, अपनी ही पंक्तियों से आमंत्रित करता हूँ कि साजिशें बैरी की अपनों से मिलाकर मानी, साजिशें बैरी की अपनों से मिलाकर मानी, कोशिशें कश्ती डुबाने की बचा कर मानी, और हार ही जाता मैं शुभकामनाएं ऐसी थी, बेईमानों की बद्दुआएं जिता कर मानी, तो ऐसी शुभकामनाएं और बद्दुआएं हमें मिलती रहनी चाहिए, जिससे हमारा देश उन्नति करता रहे और हम भी करते रहे।

0: स्वागत है। भाई महेंद्र चौधरी जी हमारे बीच में है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं छतरपुर आकाशवाणी के सभी सुधी श्रोताओं को सादर नमन करता हूं और मैं बिना भूमिका के चार पंक्तियों से इस काव्य गोष्ठी का आगाज करता हूं। सुनिएगा।
0: स्वागत।
1: कि मुकम्मल किसी की इबादत न होगी, मुकम्मल किसी की इबादत न होगी, कि भारत से जिसको भी चाहत न होगी, कि भारत से जिसको

ना होगी। और एक छंद देखिएगा हमारे देश में प्रतिक्रियाएं क्या चल रही हैं दादा। देखिएगा छंद कि गली गली नफरतें, लोग करें हिंसा दंगे, जातियों में देश को हम बांटना सिखा रहे। गली गली नफरतें, लोग करें हिंसा दंगे, जातियों में देश को हम बांटना सिखा रहे। और कांटों के बबूल सूले हमसे न छाटे गए, कलियों को फिर कैसे छाटना सिखा रहे। कि कांटों के बबूल सूले हमसे न छाटे गए, कलियों को फिर कैसे छाटना सिखा रहे। तो नई नई पीढ़ियों को पढ़ना सिखाया नहीं, नई नई पीढ़ियों को पढ़ना सिखाया नहीं, फुटपाथों पर भीख मांगना सिखा रहे। वो एक दूसरे से गले लगना सिखाया नहीं, एक दूसरे से गले लगना सिखाया नहीं, एक दूसरे का गला काटना सिखा रहे। एक दूसरे से गले लगना सिखाया नहीं, एक दूसरे का गला काटना सिखा रहे। चार पंक्तियां देखिएगा, देश के लिए सभी की जिम्मेदारी क्या रहनी चाहिए दादा। कि जब जब पार्थ कौरवों से हुए भयभीत, भगवान श्याम गीता ज्ञान देने आ गए। जब जब पार्थ कौरवों से हुए भयभीत, भगवान श्याम गीता ज्ञान देने आ गए। और ऋषियों की हड्डियों से वज्र को बनाया गया, ऋषि मुनि धर्म हेतु प्राण देने आ गए। कि ऋषियों की हड्डियों से वज्र को बनाया गया, ऋषि मुनि में हेतु प्राण देने आ गए। तो अस पाके अब्दुल वाले दानी को न मने, अस पाके अब्दुल

आरती में कुर्बानी मांगी, जब भारती के लाल बलिदान देने आ गए। माँ भारती ने आरती में कुर्बानी मांगी, जब भारती के लाल बलिदान देने आ गए। और वीरों का दर्द था क्या, इतिहास उठा के देखें तो वीरों का दर्द, वीरों की वेदना, वीरों की संवेदनाएं को समझिएगा। कि शहीदों की माताओं से पूछिएगा वेदनाएं, चूड़ी बिंदी कंगन कहारों से भी पूछिए। इस शहीदों की माताओं से पूछिएगा वेदनाएं, चूड़ी बिंदी कंगन कहारों से भी पूछिए। और तुम मुझे खून दो, हाँ मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इंकलाब वाले खूनी नारों से भी पूछिए। तुम मुझे खून दो, हाँ मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इंकलाब वाले खूनी नारों से भी पूछिए। तो जलिया वाले बाग में हुआ जो नरसंहार, जलिया वाले बाग में हुआ जो नरसंहार, गोलियों के चलते प्रहारों से भी पूछिए। जलिया वाले बाग में हुआ जो नरसंहार, गोलियों के चलते प्रहारों से भी पूछिए। ओ काली पानी की कहानी दर्दनाक कितनी थी, काले पानी की कहानी दर्दनाक कितनी थी।

0: जेले की दीवारों से भी पूछिए, काले पानी की कहानी दर्दनाक कितनी थी। सेकुलर जेल की दीवारों से भी पूछिए। और दादा, अपने औलाद के लिए एक पिता का दर्द क्या, एक पिता की मजबूरी क्या होती है? पंक्तियां देखिएगा कि खुद खाते सूखी रूखी काया रह जाती भूखी, रोटियों में सूखे बोने वाले देखते नहीं। ये खुद खाते सूखी रूखी काया रह जाती भूखी, रोटियों में सूखे बोने वाले देखते नहीं। वो जलते हैं दीप वही आंधियों में डट कर, दरमियां जो खुद के उजाले देखते नहीं। जलते हैं दीप वही आंधियों में डट कर, दरमियां जो खुद के उजाले देखते नहीं। तो जीते जी पिता के हर सुख मिलता है हमें, जीते जी पिता के हर सुख मिलता है हमें। बच्चे दिन जिंदगी में काले देखते नहीं। जीते जी पिता के हर सुख मिलता है हमें, बच्चे दिन जिंदगी में काले देखते नहीं। वो देखते हैं बच्चे बस पिता की कमाई को ही, देखते हैं बच्चे बस पिता की कमाई को ही, किंतु क्यों हाथों के बोछाले देखते नहीं। देखते हैं बच्चे बस पिता की कमाई को ही, किंतु क्यों हाथों के बोछाले देखते नहीं। और एक पुत्र, एक शहीद जब अपने परिवार से जुदा होकर सरहद पे जाता है तो वो दर्द क्या होता है, समझिएगा भाई साहब। कि माता की दुआएं लेके, बीबी की सदाएं लेके, सुनसान चला गया संसार छोड़कर। माता की दुआएं लेके, बीबी की सदाएं लेके, सुनसान चला गया संसार छोड़कर। ओ बहना की राखी लेके, अखियों में आंसू देके, बूंद बूंद रक्त की वो दे गया निचोड़कर। बहना की राखी लेके, अखियों में आंसू देके, बूंद बूंद रक्त की वो दे गया निचोड़कर। तो बूढ़े मात पिता का जो बुढ़ापे का आसरा था, बूढ़े मात पिता का जो बुढ़ापे का आसरा था, गोलियां वो खाता रहा बारूदों को ओढ़ कर। ये बूढ़े मात पिता का जो बुढ़ापे का आसरा था, गोलियां वो खाता रहा बारूदों को ओढ़ कर। और रिश्ता निभाया एक माता भारती का नेक, अरे रिश्ता निभाया एक माता भारती का नेक, परिवार वाले सभी रिश्तों को तोड़ कर। रिश्ता निभाया एक माता भारती का नेक, परिवार वाले सभी रिश्तों को तोड़ कर। रिश्ता भाया एक माता भारती का नेक, परिवार वाले सभी रिश्तों को तोड़कर। और एक छंद देखिएगा, वीरों का एहसास, वीरों का दर्द समझिएगा, वीर रस की एक कल्पना देखिएगा कि प्राणों की आहुतियां दी वीरों ने, जवानियां दी आजादी में, क्रांतिकारी पग बढ़ने लगे। कैसे मिली हमें आजादी? ये प्राणों की आहुतियां दी वीरों ने, जवानियां दी आजादी में, क्रांतिकारी पग बढ़ने लगे। और बलिदानियों ने बम तोपों को भी ओढ़ लिया, गोलियों के मुख मोड़ बख्श लड़ने लगे। कि बलिदानियों ने बम तोपों को भी ओढ़ लिया, गोलियों के मुख मोड़ बख्शे अड़ने लगे। तो बार बार काट काटे अंग भंग बाट बाट, बार बार काट काटे अंग भंग बाट बाटे, लहू लेखनी से इतिहास गढ़ने लगे। बार बार काट काटे अंग भंग बाट बाटे, बार बार काट काटे अंग भंग बाट बाटे, लहू लेखन से इतिहास गढ़ने लगे। ओ थक थक मुंडे कटे रड़ में गिरे जो यदि, अरे थक थक मुंडे कटे रड़ में गिरे जो यदि, रड़ वाकरों के उठे धड़ लड़ने लगे। के थक थक मुंडे कटे रड़ में गिरे जो यदि, रड़ वाकरों के उठे धड़ लड़ने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, अभी हमारे समक्ष जो एक कृष्ण की भांति इस काव्य गोष्ठी का संचालन कर रहे थे, मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ। आदरणीय हमारे सबरस कवि धीरेन्द्र विभू जी, स्वागत है।
1: यहाँ सभी डीजे मित्रों कुछ मुक्तक और एक आध गीतिका के साथ आपके बीच में अपनी प्रस्तुति देना चाहूंगा। कि यहाँ आप सभी का ध्यान चाहूंगा पंक्तियों पर, कि यहाँ सभी परस्पर स्वार्थ सुविधाओं के मेले हैं, सभी परस्पर स्वार्थ सुविधाओं के मेले हैं, हैं कुछ जो अपनी अपनी भीड़ में होकर अकेले हैं। यहाँ सभी परस्पर स्वार्थ सुविधाओं के मेले हैं, हैं कुछ जो अपनी अपनी भीड़ में होकर अकेले हैं। अलग हैं।

मर्ज सबके ही, दवाएं भी अलग सबकी अलग हैं, मर्ज सबके ही दवाएं भी अलग सबकी, किसी को हम शहद जैसे किसी को हम करेले हैं, किसी को हम शहद जैसे किसी को हम करेले हैं। लीजिए एक और छोटा मुक्तक, होता अनमोल भी क्या कभी कीमती, होता अनमोल भी क्या कभी कीमती। छोटा सा मतलब छोटी सी आत्मा के साथ एक बड़ा विस्फोट करने का प्रयास कि होता अनमोल भी क्या

0: कोई तय करो दोस्तों, मूल्य अपना
1: ना कोई,
0: अपना कोई तय करो दोस्तों, ना बिके तो रहोगे नहीं कीमती, ना बिके तो रहोगे नहीं कीमती। तो जरूरी है कि कहते हैं, और किसी और ने नहीं, हमने ही कहा है कि सच से बनाकर चलना जरूरी नहीं है, सच से बनाकर चलना जरूरी नहीं है, सबसे बनाकर चलिए। सच से बनाकर चलना जरूरी नहीं है, सबसे बनाकर चलिए। चोरों की चोरी में शामिल और चौकीदार भी रहिए, चोरों की चोरी में शामिल और चौकीदार भी रहिए। तो लीजिए, इसी क्रम में हर कोई खुद को बनाने का काम करता है। व्यंग गीतिका को कुछ यथार्थ के निकट लाने का प्रयास किया है कि हर कोई खुद को बनाने का काम करता है, श्रेय पाने का दिखाने का काम करता है। हर कोई खुद को बनाने का काम करता है, श्रेय पाने का दिखाने का काम करता है। तुम ही बन जाते हो सीढ़ी उन्हें चढ़ने के लिए, तुम ही बन जाते हो सीढ़ी उन्हें चढ़ने के लिए। कौन मंजिल तक बढ़ाने का काम करता है, कौन मंजिल तक बढ़ाने का काम करता है? बन के आधार कंगूरों को उठाने के लिए, बन के आधार कंगूरों को उठाने के लिए। नींव की सिला वह होने का काम करता है, बन के आधार कंगूरों को उठाने के लिए। नींव की सिला वह होने का काम करता है। और अगला शेर की, दर्द है पीर है थर के भी सीने में यहाँ, दर्द है पीर है पत्थर के भी सीने में यहाँ। कौन यह पीर निभाने का काम करता है, कौन यह पीर निभाने का काम करता है? और आखिरी विश्राम गीतिका का, कि कोई अवतार युग पुरुष है कोई पैगंबर, कोई अवतार युग पुरुष है कोई पैगंबर। कौन इंसान को बचाने का काम करता है, कौन इंसान बचाने का काम करता है? लीजिए, अपने कुछ यथार्थ के और निकट आने का प्रयास करता हूँ कि बहुमत की चाल से भी बहुत फैल हो गए, बहुमत की चाल से भी बहुत फैल हो गए। जंगल में लकड़ बग्घा असली शेर हो गए, बहुमत की चाल से भी बहुत फैल हो गए। जंगल में लकड़ बग्घा असली शेर हो गए। पाबंदियां दहाड़ने पे जब से लग गईं, पाबंदियां दहाड़ने पे जब से लग गईं। किके आते लकड़ बग्घे सूरवीर हो गए, किके आते लकड़ बग्घे सूरवीर हो गए। तो एक अगला मुक्तक, कि कितने ही धूर्त बड़े अकलमंद बन जाएं, कितने ही धूर्त बड़े अकलमंद बन जाएं, जेहन से चाहे जितने बंद कुंद बन जाएं। कितने ही धूर्त बड़े अकलमंद बन जाएं, जेहन से चाहे जितने बंद कुंद बन जाएं, मगर इतने ना अकीदे में हम गिरे इंसान, मगर इतने ना अकीदे में हम गिरे इंसान, कि तुम्हारे जैसे खुदा की पसंद बन जाएं, कि तुम्हारे जैसे, मगर इतने ना अकीदे में हम गिरे इंसान, कि तुम्हारे जैसे खुदा की पसंद बन जाए। और एक अगला मुक्तक, की दर्दे दिल फिर दवा आजमाई गई, दर्दे दिल फिर दवा आजमाई गई, अपनी सीरत ही ऐसी बनाई गई। दर्दे दिल फिर दवा आजमाई गई, अपनी सीरत ही ऐसी बनाई गई। और जिंदगी को शिकायत ना हो दर्द से, जिंदगी को शिकायत ना हो दर्द से, मिट गया जख्म फिर चोट खाई गई, मिट गया जख्म फिर चोट खाई गई। निकट के कितने आसन सिद्ध कर लिए, कितने आसन सिद्ध कर लिए। लीजिए, सामाजिक विसंगतियों में और जहाँ तक आपकी व्यंजना पहुँच सके वहाँ तक, कि कितने आसन सिद्ध कर लिए भोग के लिए योग गजब है, कितने आसन सिद्ध कर लिए भोग के लिए योग गजब है। केवल दवा बेचने को ही पाल रहे हैं रोग गजब है, केवल दवा बेचने को ही पाल रहे हैं रोग गजब है। और गजब नहीं कि कोई बिकाऊ होने से इनकार करे पर, गजब नहीं कि कोई बिकाऊ होने से इनकार करे पर, दाम बढ़ाने को अपना यह ना बिकने का ढोंग गजब है, दाम बढ़ाने को अपना यह ना बिकने का ढोंग गजब है। और एक और मुक्तक प्रस्तुत है, कि सही जो मशवरा माना नहीं तो फल भुगतना है। सिर्फ सोशल मीडिया की उस पीढ़ी को ही नहीं, बल्कि उनके जो अभिभावक हैं उनको भी विनम्रता पूर्वक यह समर्पित है यह मुक्तक, कि सही जो मशवरा माना नहीं तो फल भुगतना

0: है, सही जो मशवरा माना नहीं तो फल भुगतना है, जो दोहराओगे फिर भूलें वही फिर कल भुगतना है। सही जो मशवरा माना नहीं तो फल भुगतना है, जो दोहराओगे फिर भूलें वही फिर कल भुगतना है, समेटा ना अगर कीचड़ पुराने युग के चलनों का, समेटा ना अगर कीचड़ पुराने युग के चलनों का, तुम्हारी पीढ़ियों को ही तो ये दलदल भुगतना है। समेटा ना अगर कीचड़ पुराने युग के चलनों का, तुम्हारी पीढ़ियों को ही तो यह दलदल भुगतना है। जी धन्यवाद, और लीजिए अगला मुक्तक कि उन्हें पता जो चले सफर में, उन्हें पता कहते हैं भैया किसे पता, कौन कहाँ कैसा क्या, तो हम कहते हैं प्रयास करते हैं कि उन्हें पता जो चले सफर में, क्या क्या सिर्फ जुगाली है, उन्हें पता, उन्हें पता जो चले सफर में क्या क्या सिर्फ जुगाली है, कितना त्याग परिश्रम का फल क्या क्या फर्जी जाली है। उन्हें पता जो चले सफर में क्या क्या सिर्फ जुगाली है, कितना त्याग परिश्रम का फल क्या क्या फर्जी जाली है, और लगातार चल चल कर भी वह उसी रास्ते अब भी है, लगातार चल चल कर भी वह उसी रास्ते अब भी है, और नहीं चले जो कभी सफर में उनने मंजिल पाली है। नहीं चले जो लगातार चल चल कर भी वह उसी रास्ते अब भी है, नहीं चले जो कभी सफर में उनने मंजिल पाली है। और एक आखिरी मुक्तक प्रस्तुत है कि क्रूर कुटिल या कूड़ा करकट या कोई भी हो विषधर, क्रूर कुटिल या कूड़ा करकट या कोई भी हो विषधर, अक्सर कुछ शोर कुछ हल्ला कुछ आवाजें आती रहती हैं, क्योंकि लोकतंत्र है तो सभी को चीखने का चिल्लाने का बोलने का, सिर्फ अभिव्यक्ति की ही स्वतंत्रता नहीं है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे जाने क्या क्या स्वतंत्रताएं हैं, तो हम तो एक सीमा के दायरे में इंगित करते हैं, व्यंजना है कुछ इशारा है चार पंक्तियों के मैं कि क्रूर कुटिल या कूड़ा करकट या कोई भी हो विषधर, मनोरोगी या दिवालिया हो है सबको समान अवसर। यही लोकतंत्र है भाई साहब, कि क्रूर कुटिल या कूड़ा करकट या कोई भी हो विषधर, मनोरोगी या दिवालिया हो है सबको समान अवसर, तो नेता घटिया से लेकर बढ़िया हर कोई पसरा है, नेता घटिया से लेकर बढ़िया हर कोई पसरा है, फिर भी चिल्लाते हैं कुछ की लोकतंत्र को खतरा है, फिर भी चिल्लाते हैं कुछ की लोकतंत्र को खतरा है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज की इस बहुत ही सुंदर विशेष कवि गोष्ठी का विश्राम की घोषणा करता हूं, और आभार प्रकट करता हूं आज के सभी हमारे वरिष्ठ एवं हमारे प्रिय अनुज कवियों के प्रति। वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे रसावतरण कार्यक्रम, इसमें आज आपने सुनी कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि थे धीरेन्द्र सिंह परिहार, महेंद्र कुमार चौधरी और वीरेंद्र कुमार तिवारी।

श्रोताओ, हम आपको याद करा दें, दिल्ली केंद्र से आज आप रात 9:15 पर सुनेंगे स्पॉटलाइट कार्यक्रम। 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। रात 10 बजे आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से सुनिएगा श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनभावन। मनभावन में ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है AIR छतरपुर 1976@gmail.com। एक बार पुनः सुन लें, AIRCHHATARPUR1976@gmail.com। तो अपने ईमेल आप हम तक भेज सकते हैं अपनी फरमाइशों के साथ। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज़ पर,

और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 8:45 होने वाले हैं समाचार संध्या। हम कुछ ही समय में दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। समाचार संध्या के बाद 9 आप सुनेंगे न्यूज एट 9 अंग्रेजी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्सकैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्सकैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति मिली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बैनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
2: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
1: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
3: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा।
3: ओडिशा में कोस्टल हाईवे जो स्टेट की बहुत लंबे समय से एक डिमांड रही है बिकॉज कोस्टल एरियाज का बार बार साइक्लोन से इम्पैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज जो है फिशिंग हो, पान की खेती हो, धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया, इन सब की कनेक्टिविटी अलोंग दी कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से ओडिशा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट में अप्रूव किया।
1: मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग

231 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को चार लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: वकील और न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बाकी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। एक रिपोर्ट।
2: ऋतव्रत बनर्जी पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन मिल गया है। यह संख्या दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आवश्यक 2/3 बहुमत के आंकड़ों से अधिक है। ममता बनर्जी गुट ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष नेता नामित किया था। इससे पहले पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए जमा किए गए हस्ताक्षरों से जुड़े विवाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साह को निष्कासित कर दिया था। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 3,000 रूपये भेजे गए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा शपथ ग्रहण के बाद एक्स साइट में कहा कि इस बदलते टेक्नोलॉजी के युग में कर्नाटक नए आइडियाज के साथ अपने विकास पथ में सबसे आगे बढ़े। लोकभवन से विधानसौध पहुंचने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर बीआर अंबेडकर, जगत ज्योति बसवण्णा और अन्य महान पुरुषों की पुतली पर पुष्प नमन किया। उसके बाद उन्होंने विधानसौध के नॉर्थ गेट पर झुककर नमस्कार किया। अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में वह कुछ नए समाज कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करने की संभावना है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आज सुबह आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
4: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने की घटना में गैर इरादतन हत्या के आरोप में FIR दर्ज किया है। इस हादसे में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। 26 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने कहा है कि कल से जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उपायुक्तों और नगर निगम के उपायुक्तों की संयुक्त नेतृत्व में 1 महीने तक चलने वाला प्रवर्तन और रोकथाम अभियान शुरू किया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश ने अमरीका को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर

0: विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के कदमों की।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
2: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
1: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
3: दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
1: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन तेज वर्षा हो सकती है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और अगले कुछ सप्ताह में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंग यांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हू लिंग फांग और यांग पो ह्यूआन को पराजित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारत और कम्बोडिया से संचालित मानव तस्करी गिरोह मामले में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने बताया कि इस गिरोह के मानव तस्करी, साइबर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। निदेशालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज FIR और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
5: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक कम होकर 23,406 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 44 पैसे कमजोर होकर 95.70 रूपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है मॉनसून पूर्वानुमान, कृषि क्षेत्र के लिए संभावनाओं और चुनौतियों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉ जेपीएस डबास। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: जब तपती धरती की दरारें आसमान की ओर उम्मीद से देखती हैं, जब किसान की निगाहें खेत से ज्यादा क्षितिज पर टिक जाती हैं, जब गांव की चौपाल से लेकर देश के बाजार तक एक ही सवाल गूंजने लगता है, मॉनसून कब आएगा, तब ये सिर्फ मौसम का इंतजार नहीं होता, ये इंतजार होता है नई फसल का, नए अवसरों का, नई उम्मीदों का। भारत में मॉनसून महज बारिश नहीं है, ये खेतों की धड़कन है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है और करोड़ों लोगों के सपनों का आधार है। इसकी चाल तय करती है कि खेतों में कितनी हरियाली होगी, गांव में कितनी खुशहाली होगी और अर्थव्यवस्था की रफ्तार कितनी तेज होगी। यही वजह है कि मॉनसून का हर पूर्वानुमान केवल मौसम विज्ञान का विषय नहीं बल्कि कृषि, ग्रामीण विकास और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेत बन जाता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, मॉनसून का पूर्वानुमान, कृषि, ग्रामीण विकास और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। हमारे साथ हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जेपीएस डबास। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि इस वर्ष का मॉनसून क्या संदेश लेकर आ रहा है, किसानों के लिए इसमें क्या संभावनाएं हैं और ग्रामीण भारत और अर्थव्यवस्था पर इसके क्या दूरगामी प्रभाव पड़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं अखिल जी आपके साथ, आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस साल मौसम विभाग ने जो मॉनसून का पूर्वानुमान जारी किया है उसमें डायनेमिक और सांख्यिकीय मॉडल के क्या संकेत हैं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हमारी पूर्वानुमान तकनीक भी बदली है और उसमें बहुत ज्यादा एफिशिएंसी भी देखने को मिली है।
3: जो भारत मौसम विज्ञान विभाग जो नॉर्मल फोरकास्ट को हम बोलते हैं, जो मॉनसून की वर्षा के लिए फोरकास्ट जारी करता है, इसके लिए अब भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है पिछले कुछ वर्षों से एक डायनेमिक जो है मॉडल का उपयोग कर रहा है, जिसमें स्टैटिस्टिकल यानी कि सांख्यिकीय से संबंधित जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसके साथ साथ जो डायनेमिकल मॉडल्स होते हैं क्लाइमेट के वो भी रन किए जाते हैं, फिर उन दोनों को आधार बना करके जो वर्षा का क्या रेंज रह सकता है आने वाले मॉनसून के सीजन के दौरान, ऋतु के दौरान, उसको वह फिर जारी किया जाता है। तो अभी अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ वर्षों से अगर आप उसके डेटा को भी देखेंगे तो जो ये मॉनसून का जो पूर्वानुमान जा रहा है यानी कि फोरकास्ट में जो एक्यूरेसी है उसमें भी काफी जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है, काफी बेहतर हुई।
1: जी डॉक्टर डबास, चूंकि आप कृषि वैज्ञानिक हैं और जब आप बोलते हैं तो भारत के किसान बहुत गौर से सुनते हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान को देखते हुए इस खरीफ के मौसम में किसानों को किस तरह की फसल योजना अपनानी चाहिए, क्या कम पानी वाली या जल्दी पकने वाली किस्मों पर ध्यान देना उन्हें चाहिए।
2: आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस बार हमें उम्मीद है कि थोड़ी वर्षा कम है, 10% के करीब कम बता रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, क्योंकि फसल जो है पानी से ज्यादा जरूरी है कौन कौन सी स्टेज पे उसको कोई सूखा ना पड़े, तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जहां तक हमारी कृषि विज्ञान का सवाल है, इस समय हमारे पास 700 से अधिक कृषि विज्ञान

केंद्र हैं, लगभग 80 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं और आईसीएआर इंस्टीट्यूट है जो कि किसानों को गाइड करने के लिए और भारत सरकार की तरफ से एक किसान कॉल सेंटर 24 आवर काम कर रहा है। हमारे पास ऐसी किस्में हैं जो कम पानी में तैयार हो जाती हैं, हमारे पास कुछ ऐसी विधियां हैं जिसमें कम पानी लगता है और पैदावार अच्छी मिलती है, और साथ साथ में हमारे जो किसान है उसको हमें शिक्षित करना है कि जो भी पानी जमीन पे गिरे उसमें कम से कम रन ऑफ से मतलब फ्लड के तौर में बहे, ज्यादा से ज्यादा पानी हमारी जमीन मिट्टी के अंदर जाए और उसका सदुपयोग कर पाए, और पानी जो फसल को होता है

0: का वहाँ पूर्वानुमान है, इसके बावजूद भी हम खरीफ के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं और अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं। तो मैं अपने किसान भाइयों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि बीज के साथ साथ हमें एक तो जितने भी हमारे पास देसी खाद है, खासकर चाहे कुरडी का खाद हो, चाहे हमारे पास वर्मी कम्पोस्ट हो, चाहे बायोगैस की सलरी हो, अगर बायोगैस की सलरी और वर्मी कम्पोस्ट है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये खाद न केवल हमारी फसलों को पोषण देते हैं बल्कि हमारी जमीन की जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं। और साथ साथ में बरसात से पहले ही हमें अपने खेतों की जुताई भी करनी है, और जुताई करने के साथ साथ में उसकी मेड़बंदी को मजबूत करना है कि जो भी बूंद गिरे वो या तो हमारे खेत में मिट्टी में नीचे जाए, जमीन के अंदर जाए, या हमारी फसल को मिले, और कम से कम जो पानी का ह्रास जो है वो रनऑफ के तौर पर हो या खरपतवार ले पाए, तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। दूसरी ध्यान रखने वाली बात होती है, जो भी हम फसल लेते हैं उसमें कुछ क्रिटिकल अवस्थाएं होती हैं, जिसमें हमारे किसानों को जो भी बरसात का पानी होता है वो इकट्ठा करके उसमें अगर हम प्रयोग कर पाते हैं तो उसके बावजूद भी हम अपना फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारा जो कृषि विज्ञान तंत्र है और साथ साथ में जो हमारा मौसम विभाग है, ये जब दोनों मिलकर क्योंकि काम कर रहे हैं, इस समय मौसम विभाग की तरफ से हर आईसर इंस्टीट्यूट को, हर कृषि विज्ञान केंद्रों को काफी सूचना जाती है कि हफ्ते में के दो दिन बाद मंगलवार को शुक्रवार को कि नेक्स्ट 5 डे कैसा मौसम रहने वाला है, क्या पूर्वानुमान है, उसी के आधार पे हमारे कृषि वैज्ञानिक हर एक सब्जेक्ट के बैठते हैं और वो बताते हैं कि हमारे किसानों को कौन सा बीज बोना है, कब बोना है, कैसे बोना है, बीज की ट्रीटमेंट किससे करना, उपचार कैसे करना है, और हमें इस हालात से निपटने के लिए हमारे साथ में हमारा जो प्रसार तंत्र है, खासकर हमारा दूरदर्शन मास मीडिया है और हमारे ऑल इंडिया रेडियो है और साथ में दूसरी जो चीजें हैं वो भी किसानों को एजुकेट करने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम इसका लाभ उठाएंगे, हम इससे किसी तरह हरास नहीं होने देंगे और इस विपरीत परिस्थिति को भी हम एक अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारा उत्पादन भी बढ़े, उत्पाद की गुणवत्ता भी बेटर हो, हम कीड़े मकोड़े बीमारियों का भी ठीक से प्रबंध कर पाए और साथ साथ में हम मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हुए हर बूंद का सदुपयोग करके अधिक से अधिक अन्न, सब्जी, फल और सभी फूल और सभी चीजें उगाएं।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव, आपसे ये समझना चाहेंगे कि अक्सर देखा जाता है कि देश में सामान्य मानसून का औसत तो ठीक रहता है, लेकिन कुछ राज्यों में सूखा और कुछ में बाढ़ आ जाती है। इस बार वर्षा के जो स्थानिक वितरण को लेकर मौसम विभाग का क्या आकलन है?
2: मानसून जो है वो हर साल एक नई तरह की परिस्थिति को लेकर के आता है, तो इस वर्ष भी जो मानसून में जो वर्षा है पूर्वानुमान दिया गया है उसके अनुसार वो करीब करीब 90% रहने की संभावना है, जो लॉन्ग टर्म एवरेज है यानी दीर्घावधि औसत का, जिसमें प्लस माइनस 4% की त्रुटि भी हो सकती है। अब ये जो वर्षा का पूर्वानुमान किया गया है ये अगले 4 महीनों के लिए जो है वो किया गया है, यानी कि जून से लेकर के सितंबर तक का। अब इसमें ये बात समझने की बहुत जरूरत है कि जैसे आपने अभी बताया कि कुछ राज्यों में जो मानसून की वर्षा है वो कम हो सकती है, कुछ राज्यों में ज्यादा हो सकती है। इसमें अभी तक का जो स्थानिक जो हमारा प्रण है पूर्वानुमान का, उसमें ये है कि जो पूर्वोत्तर राज्य है यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वहां पर जो वर्षा है वो करीब करीब सामान्य रहने की संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में यानी कि जो लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी दीर्घावधि औसत का 94 से 106% तक की रेंज में वर्षा हो सकती है। वहीं मध्य भारत में और दक्षिण पूर्वी भारत में 94% जो है दीर्घावधि औसत का, उससे कम वर्षा रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत में 92% यानी कि 92% से कम वर्षा रहने की संभावना है, यानी कि वर्षा जो है वो सामान्य से कम रहने की संभावना है। हालांकि इसमें ये भी जरूरत समझने की बात है कि ये जो वर्षा है ये बहुत ही इवन तरीके से चारों महीनों में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहती है, कभी किसी समय में ज्यादा वर्षा मिल जाती है, इसके कई बार फ्लड की सिचुएशन भी देखने को मिलती है, कई बार मौसम ब्रेक कंडीशन भी आती है जब वर्षा काफी घट जाती है। तो इसके लिए भारत मौसम विभाग लगातार पूर्वानुमान देता रहता है। इसमें जैसे कृषि के लिए अगर हम बात करें तो सप्ताह में 2 बार जो अगले 5 दिनों का विवरण दिया जाता है, इसके साथ साथ हर बृहस्पतिवार को बारिश से संबंधित जो है एक्सटेंडेड रेन फोरकास्ट जारी किया जाता है। इसमें अगले 4 हफ्तों के लिए सप्ताहवार यानी कि हर सप्ताह में कैसा वर्षा रह सकती है उसका भी पूर्वानुमान जारी किया जाता है। इसमें मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि इसमें जो हमारा मुख्य रूप से जो मॉनसून कोर जोन है यानी कि वो क्षेत्र जो कि ज्यादातर मौसमी वर्षा पर जो निर्भर करता है कृषि के लिए, वहां पर जो है वर्षा का पूर्वानुमान भी जो हमारे अभी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है उसमें सामान्य से कम वर्षा की संभावना जो है वो दर्शाई गई है। तो जिसको देखते हुए जो मौसम की जो पूर्वानुमान किए जा रहे हैं स्थानिक स्तर पर भी और डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के लिए, यानी कि जो हर दिन दैनिक रूप में पूर्वानुमान किए जाते हैं, इसके साथ साथ

0: जो एक्सटेंडेड रेंज यानी कि विस्तारित रेंज का जो पूर्वानुमान भारत मौसम विज्ञान विभाग करता है उसका भी बहुत अच्छे से उपयोग होना बहुत जरूरी है, ताकि बहुत कुशल रूप से जो ये प्रिपरेटरी चीजें हैं उनको मैनेज किया सके, एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजों को मैनेज किया जा सके।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर डबास, आपने अभी कुछ देर पहले बताया कि जहां पर कम बारिश होने की आशंका जताई जा रही है वहां किसान किस तरीके से अपनी फसल का ध्यान रखें, और जैसा कि अभी डॉक्टर श्रीवास्तव बता रहे हैं कि कुछ राज्यों में ज्यादा बारिश की भी संभावना है, यदि मानसून के दौरान अचानक बहुत भारी बारिश होती है तो जल भराव से फसलों को बचाने के लिए किसानों को कौन से बुनियादी वैज्ञानिक उपाय पहले से कर लेने चाहिए?
2: हमारे जो किसान है वो हमें क्षेत्र वाइज हम उसको बांट सकते हैं, जैसे राजस्थान पूरा एरिया है, इसमें हम लोगों ने बहुत किसानों को आगाह किया हुआ कि उन्होंने खेतों पे टैंक बना रखे, तालाब बना रखे, उनकी कोशिश होती है जो भी ज्यादा बारिश हो उसको टैंक में जाए। और इसी तरह से हमारे पूरे देश में सभी नदियों पे बांध बने हुए हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि अपने आवश्यकता के अनुसार पानी को इकट्ठा रखें और पानी को पूरा कितना हमारे पास पानी है, कितने आगे बारिश होने वाली है, कितना भी छोड़ना है, तो ये बैराज से हम लोग नियंत्रण करने की कोशिश सरकार करती है। और इसी का फायदा उठा के किसानों को भी हम गाइड करते हैं कि जिन क्षेत्रों में अधिक बारिश होने वाली है वहां पे हम धान की फसल या जो फसलें ज्यादा पानी चाहिए उसका रिकमेंड करते हैं। और ये भी हम किसान को आगाह करते हैं कि जो पानी खेत से निकालना है, क्योंकि जल निकासी भी बहुत जरूरी है, अगर हमें फसल अच्छी लेनी है और बरसात ज्यादा है तो वहां पे जल निकासी का भी होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब जल निकासी किसान करे तो इस आधार पे करे कि उसकी जो उपजाऊ मिट्टी भी ना जाए, फसल को नुकसान ना हो, और मौसम विभाग को ध्यान में रखते हुए इन बातों के, क्योंकि किसान की जितनी भी कृषि क्रियाएं आगे जो पूरे चार मानसून के जो महीने रहेंगे वो हम लोग हर वीक में दो बार बताते हैं किसानों को, और सभी कृषि विज्ञान केंद्र भी और सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी, हम ये बताना चाहते हैं अगर बरसात की संभावना है तो उसमें किसान को क्या करना है, क्या नहीं करना है और कौन सी विधि अपनानी है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा धान का ही, अगर धान की सब क्षेत्र नीचे है जिसमें पानी खड़ा होता है तो हमारे पास धान के अलग अलग किस्में हैं जो अलग अलग ऊंचाई में भी और पानी को भी सहन कर सकती हैं। अगर बरसात कम हो रही है लेकिन हमें धान फिर भी पैदा करना, खासकर नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट में जहाँ, क्योंकि बासमती का हमारा एक्सपोर्ट लगभग 30,000 करोड़ से ज्यादा का है और इसमें हमें लगातार भी पैसा मिलता है और हमारा देश बासमती के नाम से काफी जाना भी जाता है, तो बासमती के में भी हमें एक तो डायरेक्ट सीडिंग के लिए बहुत सारी नई किस्में निकालनी है जिसमें 35% पानी बचता है। इसी तरह से SRI विधि से भी अगर हम बासमती के चावल की खेती करते हैं तो 30-35% पानी बचता है और साथ में फसल भी अच्छी होती है, कीड़े बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी हम किसान को पहले से एजुकेट करके रखें जिससे कि किसान अपनी बचत करते हुए, और जहां पानी की संभावना बहुत कम है तो वहां हम किसानों को कहेंगे धान जैसी फसल ना लगा के या तो मक्का लगाएं या मोटे अनाज लगाएं या दलहनी फसल लगाएं, लेकिन जो भी फसल लगाएं उनमें खरपतवार नियंत्रण और निराई गुड़ाई ये एक विशेष योगदान है, इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि खरपतवार तो पानी के साथ साथ में न्यूट्रिएंट भी चुराई करते हैं, मतलब किसान से फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जो निराई गुड़ाई है वो कई फसल की जड़ों को एक ऐसा एटमोस्फेयर प्रदान करती है जिससे कि पौधे की जड़ें काफी ग्रोथ करती हैं और वो दूर तक के पानी के खींच लेती है और पानी एकदम से सीधा वास्तविक रूप से उड़ता नहीं है बल्कि जमीन में बना रहता है। और कुछ क्रिटिकल अवस्थाओं पर हम किसानों को बार बार ध्यान देते हैं कि इस समय हमें पानी की वो विधि अडॉप्ट करनी है जैसे ड्रिप सिंचाई है या स्प्रिंकलर विधि है जहां पे हम कम पानी से भी ज्यादा लाभ उठा पाए, खासकर जब आपने दक्षिण भारत की बात या मध्य भारत की बात की जहां पे इस बार बारिश की थोड़ी संभावना कम लग रही है तो वहां पे हम किसानों को उस किस्म की सलाह देते हैं। तो हमारे जो कृषि वैज्ञानिक वो भी तैयार है, साथ साथ में भारत सरकार ने अभी लास्ट तो लगभग एक हफ्ता पहले ही एक मीटिंग ली है जिसमें सभी राज्यों के कृषि विभाग के जितने भी अधिकारी थे साथ साथ में हमारी क्या योजना होनी चाहिए, हमारे पास कौन सी चीजों के कितने सीड हैं और किसान को सही समय पे सीड भी मिले, साथ साथ में उसके पर हमारे उर्वरक भी पहुंचे और किसान को सब सुविधाएं मिले, तो उसके लिए सरकार पहले से तत्पर होके ऑलरेडी कार्य योजना बना रही है। और इस समय जो हमारी कृषि अनुसंधान परिषद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR जो है ये पूरे देश में इस महीने को किसानों को एजुकेट करने के लिए यूज कर रही है और कृषि वैज्ञानिक गांव में जा रहे हैं उनको एजुकेट कर रहे हैं, तो हमारी तैयारी पूरी है और तो वो हमारे प्रयास रहेगी किसानों को हम किस तरह से लागत को कम करने में मदद करें, कैसे पानी के संरक्षण में मदद करें, कैसे किसानों को तालाब और सब चीजों में गाइड करें, मल्चिंग इसमें एक बहुत बड़ा योगदान।
1: जी बिल्कुल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप,
2: तो उन सब चीजों को हम काफी जोर दे रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारा देश जो है तकनीकी के तौर पे और उसमें हमारा सक्षम है और आप लोगों के सहयोग से हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव, जब जलवायु परिवर्तन की हम बात करते हैं और जलवायु परिवर्तन के दौर में अल नीनो और ला नीना के जो संकेतक हैं वो तेजी से बदल रहे हैं, दो छोटे छोटे सवाल। पहले तो हमारे श्रोताओं के लिए अल नीनो और ला नीना को थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दें, और साथ ही उसी से जुड़ा एक सवाल यह है कि इस साल के मानसून पर इनका क्या और कितना असर देखने को मिल सकता है?

0: हम एल नीनो को बहुत ही सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये एक तरह से ऐसी सिचुएशन होती है, ये इस तरह का सिचुएशन डेवलप होता है जो कि काफी दूर से ही भारतवर्ष के जो मौसम को प्रभावित कर सकता है। भारतवर्ष के कहे या अगर उसको और बृहद रूप में समझे तो ये पूरे ग्लोबल जो वेदर सिस्टम्स है, जो वेदर के इवेंट्स हो रहे होते हैं उनको प्रभावित करता है। इसमें मुख्य रूप से अगर हम एलिनो की बात करते हैं तो जो प्रशांत महासागर, जो भूमध्य रेखा के पास का प्रशांत महासागर है, वहां पर जो समुद्र की सतह है उसमें जो टेम्परेचर है, उसका तापमान जो है, उसका धीरे धीरे वो बढ़ जाता है, यानी कि वो असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। जब प्रशांत महासागर का जो भूमध्य रेखा के पास समुद्र सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं अल नीनो। और जब ये समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से ये ठंडा हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं ला नीना। तो ये जो दो इवेंट है ये एक तरह से प्राकृतिक इवेंट है जो कुछ सालों के बाद जो हमें देखने को मिलते रहते हैं। जब समुद्र का पानी गर्म हो जाता है भूमध्य रेखा प्रशांत महासागर में, तो इसका सबसे बड़ा असर ये होता है कि जो हवाएं हैं, जो हवा की जो एक नेचुरल जो डायरेक्शन होता है उसमें उनका जो रुख होता है ये उसको बदलने का काम करता है। हवा जो भारत की में जो मानसून को खींच कर लाने वाली हवाएं हैं ये उनको कमजोर करने का एक तरह से कार्य करता है। इसलिए एल नीनो का बहुत असर जो है काफी हद तक भारत के मानसून पर देखा जाता है। इन जनरल अगर हम बात करें तो जब भी एल नीनो कंडीशन होती है तो भारत में जो वर्षा है उसमें जो है कमी देखी जाती है। हालांकि कुछ वर्ष ऐसे भी देखे गए हैं जब एल नीनो के बावजूद भी काफी अच्छी वर्षा भारतवर्ष में देखने को मिली है। इसमें हमें यही समझने की जरूरत है कि जब ला नीना कंडीशन होती है तब भारतवर्ष में जो वर्षा है उसका जनरल ट्रेंड अगर हम देखें, एक तरह जनरली हम बात करें उसके बारे में, तो वो वर्षा के लिए सहायक सिद्ध होता है। जबकि एल नीनो कंडीशन यानी कि जब समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है तो वो वर्षा के लिए निगेटिवली काम करता है, नकारात्मक रूप से उसको प्रभावित करता है। लेकिन जो मॉनसून सिस्टम है वो अपने आप में बहुत बृहद सिस्टम है। इसमें सिर्फ एक फैक्टर का जो है यानी कि एक जो इवेंट है जैसे एलिनो, सिर्फ इसका ही असर नहीं होता है, बहुत सारे अन्य कारक हैं जो भारत के मानसून को प्रभावित करते हैं। जैसे कि इंडियन ओशन डायपोल यानी कि जो हमारा जो हिंद महासागर में जो डायपोल स्थिति बनती है उसका भी असर होता है कई बार। तो सिर्फ एक कारक से भारत के मानसून का जो है डायरेक्शन तय नहीं होता है, लेकिन एलिनो को इन जनरल देखा जाता है तो ये एक काफी ज्यादा जो है प्रभाव डालता है भारत के मानसून के ऊपर। अगर हम बात करें 2026 की यानी कि जो आने वाले जो अभी मानसून का जो सीजन हमारा शुरू ही हो गया है लगभग, इसमें तो अभी जो एलिनो की कंडीशंस है वो अभी न्यूट्रल कंडीशंस से एलिनो की वीक कंडीशंस की ओर जो है ट्रांजिशन चल रहा है, यानी कि मॉनसून के दौरान एलिनो कंडीशन जो है डेवलप करने के गाइडेंस जो है वो सारे मॉडल्स दिखा रहे हैं और यही पूर्वानुमान भी दिया गया है। यानी कि मॉनसून के दौरान एलिनो कंडीशन जो है वो डेवलप हो सकती है। प्रशांत महासागर में समुद्र के जो सतह तापमान है वो असामान्य रूप से गर्म होगा जो कि हवाओं के रुख को निर्धारित तौर पर प्रभावित करेगा, और हम इसका असर भी मौसम की जो मानसून की जो वर्षा है इसमें भी हमें देखने को मिल सकता है। और इसी को देखते हुए यह भी कारक रहा है कि जो वर्षा का पूर्वानुमान है वो बिलो नॉर्मल यानी कि सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान में इसकी बहुत बड़ा योगदान रहा।
1: जी डॉक्टर डबास, उन किसानों के लिए आप क्या कहेंगे जहां पर जल संरक्षण, सूक्ष्म सिंचाई और वर्षा जल संचयन को लेकर कुछ किसान काफी सजग रहते हैं, उन किसानों को किन व्यवहारिक उपायों पर ध्यान देना चाहिए?
2: ये जो हमारे किसान हैं जिनके पास में जल सिंचाई की बहुत अच्छी विधियां हैं और साथ साथ में सजग हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा सबसे पहले तो एक अच्छी किस्म का चुनाव करना है, बीज का सही समय से प्रबंध करना है। प्रबंध करने के बाद में हमारे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि कुछ पोषक तत्व तो वैसे होते हैं जो हमारी फसल को सूखे से लड़ने की भी ताकत देते हैं और उसकी जड़ों के विकास को महत्वपूर्ण तो योगदान देते हैं जिससे कि उनको फायदा होता है। तो एक संतुलित मात्रा में खाद का उपयोग करना है, उसमें केवल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ही नहीं करने, साथ साथ में फास्फोरस, पोटास और दूसरी चीजों का भी देख करना है। और जो सरकार ने हमें एक योजना दी है सॉयल टेस्टिंग की, उसके आधार पर अगर खाद का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद आती है कि हमें किस्म का चुनाव, क्योंकि इस समय हमें उस किस्म का चुनाव करना है जो जल्दी पक्के तैयार हो, जिसका अनाज भी अच्छा हो, साथ साथ में कम पानी ले। हमें विधि भी वो चुननी है कि उसका प्रॉपर प्लांट पॉपुलेशन हो। कई बार हम जब बुआई करते हैं तो बीज की मात्रा ज्यादा होती है लेकिन पौधे काफी सघन हो जाते हैं, तो हमें अगर पौधों की संख्या सही रखेंगे तो कम पानी में हम ज्यादा पैदावार ले पाएंगे। और साथ साथ में खरपतवारों का प्रबंध बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्ले करता है क्योंकि खरपतवार काफी मात्रा में बीमारी भी फैलाते हैं, कीड़े भी फैलाते हैं, साथ साथ में पानी का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। तो अगर हम खरपतवारों का प्रबंध कर लेते हैं उससे भी

0: बड़े पानी की बचत होती है और साथ साथ में हमारी मिट्टी का वो अच्छा रहता है। और निराई गुड़ाई समय पर होना बहुत ही जरूरी है। और इसके साथ साथ में हमें जो पानी हमारे पास है वो सही टाइम है, मोस्टली अगर आपके पास अपनी इरीगेशन फैसिलिटी है तो पानी का सुबह और शाम इस्तेमाल करना है, और क्रिटिकल स्टेजेस पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि बाली निकलनी है, बाली आने वाली है, उग रहा है या फुटाव चल रहा है। और कई बार कुछ किसान भाई ज्यादा खेत में पानी खड़ा रखते हैं, उससे नुकसान भी होता है, खासकर धान की फसल में। तो अगर हम पानी सूखने दें और फिर पानी लगाएं तो उससे लगभग 30 से 35% पानी की बचत होती है और पैदावार भी अच्छी आती है, कीट और बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। तो मैं उन किसानों को ये कहना चाहूंगा कि उसका उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। इसी तरह से मक्का की फसल में भी कुछ खास क्रिटिकल स्टेजेस होती है, उसका विशेष ध्यान रखना है, खासकर जब उसमें फुटाव हो, जब टेस्टल बने, उसमें फ्लावरिंग आए, तो उस समय पानी की कमी ना हो तो बहुत अच्छा रहता है। और खरपतवार प्रबंधन यहाँ भी करना है, और साथ साथ में मक्का के में कीट प्रबंधन पे भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आजकल एक फॉल्स आर्मी वार्म आ रहा है जो काफी नुकसान करता है। तो उसको हम समय से पहले अगर टैकल कर लेंगे तो हम ज्यादा पैदावार ले पाएंगे। साथ साथ में जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक लगातार संपर्क में बने रहें, और जितना भी अधिक से अधिक मात्रा में देसी खाद का प्रयोग करेंगे उससे
1: जी
0: मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़ेगी, और साथ साथ में मिट्टी का जब उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तो हमारी फसल अच्छी पैदा होगी। तो वह हमें विशेष ध्यान रखना है और संतुलित मात्रा में खाद का प्रयोग करें, किसी भी हालत में घबराएं नहीं। और हमें अपने किसान पर पूरा विश्वास है कि किसान हमारा बहुत सक्षम है, सरकार की योजनाएं अच्छी हैं, और आपका जो विस्तार तंत्र है, खासकर मास मीडिया है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और
1: डुबाल
0: साथ
1: जी,
0: में जो हमारा मौसम विभाग का जो सहयोग है, तो इसके सहयोग का, हम इसकी सूचनाओं का, जानकारी का उपयोग करते हुए मुझे लगता है कि हम स्थिति में बहुत अच्छी तरह उभर के आएंगे और अच्छा काम कर पाएंगे।
1: जी डॉक्टर श्रीवास्तव, एक और बड़ा बदलाव ये दिख रहा है कि अब कम दिनों में बहुत भारी बारिश, जिसे एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स कहते हैं, वो हो जाती है, और शुष्क दिन यानी ड्राई स्पेल्स बढ़ रहे हैं। मौसम विज्ञान इस नए पैटर्न को कैसे देख रहा है?
2: तो इसमें हमें यह बात समझने की जरूरत है कि जैसे जैसे धरती का एटमॉस्फेयर का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है, तो इसके जो मॉइस्चर को होल्ड करने की, यानी कि ये कितनी अपने अंदर पानी को हवा के अंदर रहता वेपर या नमी को अपने अंदर रख सकता है, वो भी बढ़ जाता है। हर एक डिग्री राइज पर जो लेते ह्यूमिडिटी है उसको रिटेन करने की कैपेसिटी करीब करीब 7% जो है बढ़ जाती है। यानी कि अभी जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो अवेलेबिलिटी है पानी की, वाटर वेपर की, वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और जब इस तरह के जो गर्म एनवायरमेंट की कंडीशंस होती है, ये लगातार कन्वेक्टिव एक्टिविटीज को, जो कि सडनली गर्मी की वजह से एकदम से क्लाउड डेवलपमेंट को और एसोसिएटेड उसके साथ में बहुत ही इंटेंस बारिश को जो है काफी ज्यादा सहायक होता है। और क्योंकि ऑलरेडी इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है एटमोसफेयर में, तो इस तरह की जो घटनाएं हैं जहां पर बहुत सारी वर्षा एक बहुत ही सीमित समय में हो जाती है और उसके बाद में काफी कई दिनों तक फिर ड्राई स्पेल देखने को मिलता है, इस तरह की घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही है। तो जैसे कि ये सब मौसम बदलाव हो रहे हैं, इसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए ताकि जो भी ये वर्षा है, एक तो इकट्ठा इतनी वर्षा हो रही है, ये जो पानी जो हमें मिल रहा है इसका ये रन ऑफ के जरिए इसका थोड़ा वेस्टेज ना हो और इसको हम सदुपयोग कर सके, तो इसका एकत्रित करने के लिए भी उपाय पहले से
1: जी। डॉक्टर डबास, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक अच्छा मॉनसून ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर को कैसे बढ़ाता है और इसका असर ट्रैक्टर, एफएमसीजी और अन्य उद्योगों पर कैसे पड़ता है।
0: जैसे ही किसान की आमदनी बढ़ती है, किसान को अच्छी फसल मिलती है, किसान पहले से तत्पर होता है, क्योंकि उसको और आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ना है, अपने सपने देखता है, तो सपनों में वो चाहता है कि उसके पास अच्छी मशीनरी होनी चाहिए, अच्छी तकनीकियां होनी चाहिए और आगे के मौसम को रक्षा करने के लिए उसके पास सभी संसाधन होने चाहिए, तो वो पैसा जो है बाजार में लगाता है, बाकी चीजें बाजार में नहीं लगती हैं। तो जब भी किसी का उत्पादन बढ़ता है, किसान को पैसे ज्यादा जाते हैं, तो आपके जितने भी ट्रैक्टर हैं या मशीनरी है या फार्म इक्विपमेंट है या सीड है या दूसरी चीजें हैं, और इसके साथ साथ में हमारे जो उपभोक्ता को भी अच्छी किस्म का भोजन मिलता है और हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती है तो देश का नाम होता है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कोई कम से कम 20 साल से हमारी एक्सपोर्ट धान, बासमती धान में हम आप पूरे वर्ल्ड में एक बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं और इसके और भी अच्छा करने की संभावना है, क्योंकि किसान हमारा सक्षम है, हमारी खेती में भी जान है और गवर्नमेंट भी चाहती है। गवर्नमेंट ने काफी अच्छी परिस्थितियां बनाई है जिससे कि किसान एक्सपोर्ट कर सके। जो हमारे भारतीय किसान संगठन बने हैं, किसान उत्पादक संगठन बने हैं, वो भी इस तरफ काफी आगे बढ़ रहे हैं और सरकार ने पहले से डिसाइड कर रखा है कि कौन से जिले से कौन सा प्रोडक्ट की ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, उसमें क्या क्या प्रोसेसिंग हो सकती है, कैसे हम उसको जिले को सक्षम कर सकते हैं। तो उस

0: सरकार की जो योजनाएं हैं, किसान की मेहनत है और जो भी किसान का उत्पादन बढ़ता है वो सारा का सारा बाजार में आता है। जब बाजार में आता है तो पूरे देश में रौनक आती है। तो एक किसी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जो भी पैसा गवर्नमेंट अलॉट करती है तो उसका फायदा सबसे ज्यादा होता है। ये हमारे जितने भी अर्थशास्त्री कृषि अर्थशास्त्री हैं उन्हें काफी प्रेजेंट किया गया। अगर हम कृषि में 1 रुपया खर्च करते हैं तो हमारी आमदनी और बाकी क्षेत्रों से कहीं ज्यादा होती है। तो इसको देखते हुए मैं कहूंगा कि कृषि के क्षेत्र में सरकार को और अधिक ध्यान देने की जरूरत है और किसान को और अधिक सक्षम बनाने की जरूरत है। और साथ साथ में हमें ये देखना मंडी में भाव क्रैश ना करें। जब किसान कई बार मेहनत करता है, अच्छा उत्पादन लेता है तो जब भाव क्रैश कर जाता है तो किसान टूट जाता है। तो सरकार को जब भाव अधिक होते हैं तो उसको तो कम करने की कोशिश करती है, लेकिन सरकार को ये भी कोशिश करनी है कि किसान को उत्पादन लागत से अधिक पैसा मिले। और ये खाली हमारी वो नहीं मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाली फसलें ही नहीं, बल्कि जो सब्जियां हैं, फल हैं, फूल हैं, क्योंकि देश को हर चीज की जरूरत पड़ती है। तो हमें सरकार को उस तरफ भी थोड़ा सजग होने की जरूरत है।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव, दुनिया भर की तकनीकों पर चर्चा होती है। जब कोई भी नए गैजेट्स मार्केट में आते हैं तो हम चर्चा करते हैं कि अमेरिका में ये चल रहा है, यूरोप में ये चल रहा है, दुनिया के दूसरे देशों में ये चल रहा है। मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में आपसे समझना चाहेंगे कि दुनिया के अलग अलग देशों में किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है और भारत ने पिछले 1 दशक में पूर्वानुमान की तकनीकों में किस तरह का बदलाव किया है और उसके क्या प्रभाव दिख रहे हैं, बहुत संक्षेप में।
2: जी देखिए, पहले तो भारत मौसम में अगर हम पूरे वैश्विक स्तर बात करें तो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट जो हो रहा है वो ऑब्जर्वेशन के क्षेत्र में हो रहा है। अभी जितने भी तरह तरह के मैकेनिज्म है जो मौसम को ऑब्जर्व करने के, उसमें काफी ज्यादा जो है वृद्धि हो रही है। इसको साथ साथ में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है एटमोस्फेरिक प्रोसेस को लेकर के, कि वातावरण में एटमोस्फेयर में जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसमें काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे न्यूमेरिकल मॉडल्स हैं जिनको हम हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स पर रन करते हैं और हमें गाइडेंस मिलता है जिसके बेसिस पर हम लोग फोरकास्ट इशू करते हैं, तो इसमें भी काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। जहां तक बात है भारत मौसम विज्ञान विभाग की, तो पिछले 10 वर्षों में आप देखेंगे कि जो हमारा ऑब्जर्विंग नेटवर्क है, ऑब्जर्वेशन नेटवर्क है, बहुत ज्यादा उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। जो हमारे सैटेलाइट सिस्टम्स हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है, बहुत उन्नत हुए हैं। साथ साथ में जो रडार है उसका कवरेज भी काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो ये अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे जो काफी इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी को, उसको भी ट्रैक करने में काफी ज्यादा रियल टाइम में मदद मिलती है। इसके साथ साथ जो मॉडल्स हैं, जो न्यूमेरिकल मॉडल्स हम लोग यहाँ रन कर रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में भी, और साथ साथ में जो अन्य संस्थान है भारत सरकार के, वहां पर भी वो जो मॉडल्स रन किए जा रहे हैं उसमें काफी ज्यादा रिजोल्यूशन में परिवर्तन हुए, इम्प्रूवमेंट हुआ है, और काफी हाई रेजोल्यूशन मॉडल जो फ्रेमवर्क है वो डेवलप किए गए हैं और उनके बेसिस पे जो गाइडेंस मिल रही है उसको उपयोग करके पूर्वानुमान दिया जा रहा है।
1: जी
2: इसके साथ साथ में AI का भी काफी ज्यादा इस्तेमाल अब शुरू हो गया है, और AI ML को यूज करके, यानी कि जो कृत्रिम जो इंटेलिजेंस है इसका भी काफी भरपूर उपयोग किया जा रहा है ताकि पूर्वानुमान को और अधिक सटीक बनाया जा सके।
1: जी हाँ बिल्कुल, मॉनसून भारत के लिए केवल एक मौसम नहीं बल्कि जीवन, जीविका और विकास का आधार है। इसकी हर बूंद खेतों में अन्न, गांव में अवसर और अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा लेकर आती है। आज की चर्चा से ये साफ है कि मॉनसून का पूर्वानुमान केवल बारिश का अनुमान नहीं बल्कि कृषि उत्पादन, ग्रामीण रोजगार, बाजार की मांग और देश की आर्थिक गति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेतक है। साथ ही बदलती जलवायु परिस्थितियों में वैज्ञानिक पूर्वानुमान, आधुनिक कृषि तकनीकों और जल संरक्षण के उपायों का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। डॉक्टर श्रीवास्तव और डॉक्टर डबास, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे मॉनसून पूर्वानुमान कृषि क्षेत्र के लिए संभावनाओं और चुनौतियों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है।

मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती का ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनभावन। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कुलदीप खरे। आज का मनभावन कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूं। तो शुरुआत करते हैं मनभावन कार्यक्रम की।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर और कुमार शानू के युगल स्वर में। गीत के बोल लिखे आनंद बख्शी ने, संगीत जतिन ललित का है और फिल्म का नाम है जब प्यार किसी से होता है। पसंद आप सबकी। ग्राम बुड़गहन छत्तीसगढ़ से ये पत्र हमें भेजा है रामदुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकांता प्रजापति और शशिकांता प्रजापति ने। दादा बाबू रोड गिरडी झारखंड से यह पत्र में लिखा है मोहम्मद यासीन अजान, शायमा नवाज, हसन नवाज और बाबू अहद। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से ये पत्र हमें लिखा है अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और क्रिश श्रीवास्तव ने। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से इसी गीत को सुनने की फरमाइश हम तक लिख भेजिए दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव ने। ग्राम धुर्रा बांदा भाटापारा से ये पत्र हमें लिखा है प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नेत्राम साहू और भूपेंद्र साहू ने। इन्होंने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। जंडपुरा पनवाड़ी जिला महोबा से ये पत्र हमें लिखा है देवी दीना अहिरवार, सुनीता देवी, दिनेश, कपिल, पूजा देवी और समस्त अहिरवार परिवार ने। यादव बंधु बस स्टैंड लोहेड़ी महोबा से इसी गीत को सुनने की फरमाइश हम तक लिख भेजी है राजेश यादव, राम अवतार, दीपक, यदुवीर, राधिका और राम गोपाल जी ने। ग्राम बनगाय तहसील पटेरा जिला दमोह से यह पत्र में लिखा है प्रहलाद यादव, राकेश यादव, मनोज यादव, सुषमा, संगीता, गीता, कविता और गोविंद यादव। इन्होंने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से ये पत्र हमें लिखा है उदय भान पाल, जयंत पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, बिमलेश पाल, नीतू पाल, दिव्यांश बघेल और परिवार वालों ने। ग्राम मवैया तहसील नौगांव जिला छतरपुर से देवेंद्र कुमार राजपूत, राजेंद्र कुमार राजपूत, के इन्होंने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। दुर्गा चौक रायसेन मध्य प्रदेश से राजू नामदेव ने भी इसी गीत को सुनने की फरमाइश हम तक लिख भेजी है। शिवाजी चौक कटनी से ये पत्र लिखा है अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, संजीव वर्मा, रज्जन रजक, राजू ताम्रकार, दिलीप वर्मा, प्रकाश सोनी। यहीं से पवन यादव, सत्तू सोनी, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, लालू, सोना, मोना, हनी, यश, सौम्या और इनके मम्मी पापा ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। कुछ ईमेल भी इसी गीत को सुनने के लिए आए हुए हैं। यह पहला ईमेल हम तक आया है पोटिया कला दुर्ग से, संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू, इन्होंने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। ये अगला ईमेल हम तक आया है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से, लिखने वाले श्रोता हैं रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल, इन्होंने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। अगला ईमेल हम तक आया है रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से, प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, ऋषि शिंदे और कृष्णा धोड़के का। अगला ईमेल हम तक आया है पाकुड़ झारखंड से, लिखने वाले श्रोता हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु, तासु, अर्णव, आनंद, सत्यम आनंद। एक और ईमेल हम तक आया है इसी गीत को सुनने के लिए बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से, लिखने वाले श्रोता हैं मुन्ना भगत, गौर गुड्डी भगत।

अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर से ये ईमेल हमें किया है चंद्रेश गौहर, वंदना, मानवी, तन्वी गौहर, अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, स्वीट बेबी, ग्राम लोहेड़ी जिला महोबा से ईमेल भेजा है जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, रेनू, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव ने। गांव शोभापुर मेरठ कैंट से ये ईमेल हमें भेजा है दिग्दर्शन और कविता गौड़ ने, इन्होंने भी इसी गीत को सुनने के लिए ईमेल हम तक भेजा है। तो लीजिए इन सबकी पसंद पर सुनते हैं लता मंगेशकर और कुमार शानू के युगल स्वर में जब प्यार किसी से होता है फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं मन भावन कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ कुलदीप खरे। कार्यक्रम में लीजिए, आप सुनिए लता मंगेशकर और कुमार शानू के युगल स्वर में सावन कुमार का लिखा गीत। संगीत आदेश श्रीवास्तव का और फिल्म का नाम सलमा पे दिल आ गया। पसंद करने वाले श्रोता हैं मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद बकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर। यह अगला पत्र हम तक आया है ग्राम खकल तहसील कोंच जिला जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक सिंह गुर्जर, सत्यम सिंह गुर्जर, अंशराज सिंह गुर्जर और समस्त परिवार। ग्राम बुड़वा पथरिया से यह पत्र हमें लिखा है नरेन नेताम और कुसुम नेताम ने। इन्होंने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। छत्तीसगढ़ भाटापारा दत्तरेंगी से यह पत्र लिखा है द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जाविंद्र कुमार वर्मा ने। इन्होंने इसी गीत को सुनने की फरमाइशन तक लिख भेजी है। अगला पत्र हमें भेजा है महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर। इन्होंने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। ग्राम बरतला जिला महोबा से रामजीवन राजपूत, राममिलन राजपूत, सायना देवी, भूरा राजपूत और लोकेश। इन्होंने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। अगला पत्र हम तक आया है ग्राम ममना सरीला जिला हमीरपुर से। लिखने वाले श्रोता हैं रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। इन्होंने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। ग्राम पजौनिया जिला जालौन से ये पत्र हमें लिखा है सत्येंद्र चंसोलिया ने। इन्होंने भी इसी गीत को सुनने की फरमाइश हम तक लिख भेजी है। अगला पत्र हम तक आया है छत्तीसगढ़ बेमेतेरा से। लिखने वाले श्रोता हैं सुरेश कुमार सारथी, भाई कमलकांत सारथी, वीरेंद्र ब्रजकांत सारथी। नवागढ़ कटई से ये पत्र लिखा है नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा। इन्होंने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। सिंचाई कॉलोनी अनगढ़ की टोरिया छतरपुर से ये पत्र लिखा है हरि अहिरवा, रवि, सुनील, प्रमोद और इनके मम्मी पापा ने। अगला पत्र हम तक आया है बसारी गेट छतरपुर मध्य प्रदेश से। लिखने वाले श्रोता राकेश रोशन वर्मा, अमर रोशन वर्मा, दीपक शर्मा, कपूर सिंह घोष, कुमारी रागिनी सिंह घोष, श्रीमती सीमा वर्मा और संध्या वर्मा। छोटी माता मंदिर के निकट कोटरा जिला जालौन से ये पत्र में लिखा है अमित तिवारी, श्रीमती पूजा तिवारी, पंडित राम बिहारी शास्त्री, आशा तिवारी, राजा भैया, अभय, कार्तिक तिवारी और समस्त तिवारी परिवार।

उन्होंने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। गांधीनगर गुरसराय झांसी से ये पत्र लिखा है एस कुमार सिरोनिया, श्रीमती मिथिला सिरोनिया, सोनम, नितिन, मुकेश, रजनी, गौरव, रोशनी, नितेश, रितेश, आदर्श, चिंटू और कुमारी सौम्या सिरोनिया, इन्होंने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। कुछ ईमेल भी इसी गीत को सुनने के लिए हम तक आए हुए हैं। ये पहला ईमेल हम तक आया है, लिखने वाले श्रोता हैं पलेरा हाल टीकमगढ़ से राजेश कुमार अकेला, यशोदा यादव, राजीव यादव और संजीव यादव, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप ने ये ईमेल हमें भेजा है इसी गीत को सुनने के लिए। कालका से ये ईमेल भेजा है शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज ने। बागपत उत्तर प्रदेश से ये ईमेल हमें भेजा है संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया ने। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लिखने वाले श्रोता लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना हर्षित और खुशी गोस्वामी, इन्होंने ये ईमेल हम तक भेजा है इस गीत को सुनने के लिए। भाटापारा छत्तीसगढ़ से ये ईमेल किया है हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू, चंपा साहू ने। अगला ईमेल हम तक आया है नूरमहल महसौल सीतामढ़ी बिहार से, लिखने वाले श्रोता हैं मुसर्रत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज, इन सभी ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से ये पत्र माफ कीजिएगा ये ईमेल हमें लिखा है पीएस नवानकर, निर्मला नवानकर, विशाल सोपान, मलकापुर से ईमेल भेजा है नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे और आशीष मुहेरकर ने। पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से ये ईमेल हमें भेजा है मेहर अरोरा, ममता अरोरा, कीर्ति अरोरा और भूमिका अरोरा ने, इन्होंने भी इसी गीत को सुनने के लिए हम तक ईमेल भेजा हुआ है। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू ने भी मेल किया हुआ है। अगला ईमेल भेजा है डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। गोला बाजार बक्सर से ये ईमेल किया है श्रद्धानंद आर, अभयनंद आर और परमानंद आर ने। सारिमपुर बक्सर से राज एसडी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। तो लीजिए इन सबकी पसंद पर सुनते हैं लता मंगेशकर और कुमार शानू की आवाज में सलमा पे दिल आ गया इस फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए करण अर्जुन फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीत के बोल लिखे हिंदी पर ने, संगीत राजेश रोशन का है। पसंद करने वाले श्रोता हैं जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, रानी तबस्सुम, रुखसार और मोहम्मद आशिफ। रिंगनी छत्तीसगढ़ से ये पत्र लिखा है दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा ने। अलिका डब्बाली से ये पत्र लिखा है बसंत सिंह छन, राजकुमार, सुनीता, कुलदीप गांधी। गायत्री महल पनवाड़ी जिला महोबा से ये पत्र लिखा है शिवनारायण पांचाल।

देवनारायण, लक्ष्मी प्रसाद, मोहित, नीतू, विनय, नेहा, सत्यम, मोहिनी, पवन, अनुज, गुड्डी और अंकुश। नेपाल पैलेस सागर से ये पत्र लिखा है तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन ने। मोहाल दीवानपुरा राट से ये पत्र लिखा है विनोद कुशवाहा, नीरज, मयंक, घनश्याम, सावित्री देवी, प्रेम रानी, दिव्या, नीलम देवी। पटेरा तहसील पटेरा जिला दमोह से ये पत्र लिखा है प्रदीप ताम्रकार, श्रीमती राधा ताम्रकार, प्रतीक ताम्रकार, प्रिया ताम्रकार, पारस ताम्रकार और समस्त परिवार। अनारकली बाजार जगराओं से ये पत्र लिखा है सुनील पाठक और इनके परिवार वालों ने, जिनमें शामिल हैं श्रीमती कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा और नवासी बेबी गव्या। करुणा मुरादाबाद से यह पत्र लिखा है अयूब खान, इरम गुडिया, शुएब खान और नवेद खान ने, इन्होंने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। अगला पत्र हम तक आया है महेशवाड़ी तहसील मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीकि धाड़े, निनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े, अजय खिरोडकर और इनके परिवार वाले। डोगरगांव राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनुष्का और तन्मय गजभिये, इन्होंने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। कुछ ईमेल भी इसी गीत को सुनने के लिए हम तक आए हुए हैं। ये पहला ईमेल है डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर और कुमार गौरव मंदूरकर। मुल्लापुर ढाका से राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन, शुभचंद्र, इन्होंने भी इसी गीत को सुनने के लिए ईमेल हम तक भेजा है। गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह, इन्होंने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव ने भी इसी गीत को सुनने के लिए हम तक ईमेल भेजा हुआ है। संबलपुर कांकेर से ये दोबारा से एक ईमेल हम तक आ गया है। श्रोताओं से निवेदन है कृपया एक बार मेल भेजने के बाद दोबारा से ना भेजें। गाडगे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल और रक्षिता, इन्होंने भी इसी गीत को सुनने के लिए ईमेल हम तक भेजा है। मोताला महाराष्ट्र से ये ईमेल हमें भेजा है विजय सुरलकर, रतनमाला और ओम कुमार सुरलकर ने। गांव नथना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, इन्होंने भी इसी गीत को सुनने के लिए हम तक मेल भेजा हुआ है। ग्राम भदौरा गुड़ा तहसील महरौनी जिला ललितपुर से ये मेल भेजा है ब्रज किशोर, नामदेव, सुखवती, अमित, हेमलता, शिवम और इनके मम्मी पापा ने। अगला ईमेल हम तक आया है ग्राम चरौदा बार नवापारा अभ्यारण जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंदकुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, प्रियंका, दीपक, खुशबू और ज्योति ठाकुर ने। अगला ईमेल हम तक आया है ग्राम टोरोवाल जिला नवाशहर पंजाब से गगनदीप, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी बामिका और वाणी थांदी ने। अगला ईमेल आया है गांव हीरा वाली फाजिलका पंजाब से, लिखने वाले श्रोता हैं सुभाष गोदारा, बिमल गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु और इनके परिवार वाले। तो लीजिए इन सबकी पसंद पर सुनते हैं करण अर्जुन फिल्म का ये गीत।

बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा। बखतपुरा पलेरा टीकमगढ़ से ये पत्र हमें लिखा है रामाधीन प्रजापति, श्रीमती लच्छी, वर्षा, मनखुशी, सुमित, अमित और बाबूलाल प्रजापति, इन्होंने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। मनकारी जिला छतरपुर से ये पत्र हमें भेजा है फूलचंद्र पाल और उनके परिवार वालों ने, इन्होंने भी इसी गीत को सुनने की फरमाइश हम तक लिख भेजी है। औरंगाबाद से ये पत्र लिखा है राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश, ये अगला पत्र आया है बटिंडा रोड डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग ने। प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से लिखने वाले श्रोता बलवंत कुमार वर्मा, राजूभाई माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति और अतुल। बिरडी से यह पत्र में लिखा है हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक, प्राची और तनु करमरकर ने। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जाविंद्र कुमार वर्मा, इन्होंने भी इसी गीत को सुनने की फरमाइश हम तक लिख भेजी है। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल, इन्होंने भी इसी गीत को सुनने की फरमाइश हम तक लिख भेजी है। ग्रामा पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर से यह पत्र लिखा है मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल, हिमांशु पाल, यज्ञता पाल और निवेदिता पाल ने, इन्होंने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। वैष्णव कॉलोनी सनावत से यह पत्र लिखा है मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमस खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे, इन्होंने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। खुर्दी रोड मानपुर से यह पत्र लिखा है विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद ने। दिल्ली शहर मोरी गेट से यह पत्र लिखा है कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार, इन्होंने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। इसी गीत को सुनने के लिए कुछ ईमेल भी हम तक आए हुए हैं। यह पहला ईमेल हम तक आया है बहलोल नगर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से लिखने वाले श्रोता हैं भाई प्रेम सिंह बड़वाल, सुखबीर काजल, लखबीर, रानो कृष्ण, श्रीमती छिंदो, प्रवीण, शीतल, नवीन, रंगीला, निशान, अनमोल, चटकू, मटकू। अगला पत्र आया है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से लिखने वाले श्रोता हैं, माफ कीजिएगा मेल आया है सिद्धार्थ, अर्चना ताई, हिमा माफ कीजिएगा हीरामण और प्रणय प्रसिद्धि। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, इन्होंने भी इसी गीत को सुनने के लिए हम तक ईमेल भेजा है। अगला मेल आया है जनकपुरी सहारनपुर से लिखने वाले श्रोता हैं जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, विमला अनेजा, इन्होंने भी एक ईमेल हम तक भेजा है। रामचबूतरा कालपी से यह ईमेल आया है मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक, लुबना और यस मंसूरी, इन्होंने भी इसी गीत को सुनने के लिए हम तक ईमेल भेजा हुआ है। अगला ईमेल हम तक आया है दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नौखिलाल वर्मा। अगला ईमेल है एमएलबी रोड ग्वालियर से लिखने वाले श्रोता हैं सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरब खुराना और एसके पप्पी। तो लीजिए इन सब की पसंद पर सुनते हैं 100 डेज फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए कच्चे धागे फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और कुमार शानू की आवाज में। गीत के बोल लिखे आनंद बख्शी ने, संगीत उस्ताद नुसरत फतेह अली खान का है। पसंद करने वाले श्रोता हैं, इस्लामपुरा सनावत से ये पत्र लिखा है मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, रमेश गौण, बेबी मंतशा और मोहम्मद शादाब खत्री। सारणी मध्य प्रदेश से यह पत्र में लिखा है अमित खातरकर, निहारिका खातरकर, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारस मणिबाग, पंजाबराव निम्बालकर और संदीप पाटिल। ये पत्र हमें भेजा है नरसिंहगढ़ पुरवा छतरपुर से, लिखने वाले श्रोता हैं दयाशंकर कुशवाहा और भवानी देवी कुशवाहा। सादुल शहर से यह पत्र में लिखा है ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान, इन्होंने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। जुनवानी दुर्ग से यह पत्र में लिखा है सुरीत रमेश साहू, विद्या साहू, जितेंद्र किशन साहू, सुनीता रिसवंत साहू, हीरेंद्र नीलकंठ साहू, चंद्रहास संजीव, त्रिलोक साहू, रणजीत सिंह साहू, राजा जी, ग्राम भिलौरी 52 लाख, जिला बेमेतेरा छत्तीसगढ़ से पत्र में लिखा है रोशनी डागेश्वरी साहू।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में वंस फिल्म का गीत। गीत के बोल लिखे समीर ने, संगीत आनंद मिलिंद का है। पसंद करने वाले श्रोता हैं कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर, प्रियंका, जयप्रकाश, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत और गुरशब्द। सनावत से दिलीप मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान, योगेश, जितेंद्र और इनके परिवार वाले। दादरीगेट भिवानी से ये पत्र हमें लिखा है कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल और कुणाल ने। ग्राम पोस्ट खन्ना जिला महोबा से ओम प्रकाश नामदेव, श्रीमती पुष्पा नामदेव, कुमारी वर्षा, मेघा, घटा, रंबा, शिल्पा, अलका, परी, भूमि, अखंड और इनके परिवार वाले। ग्राम भड़भूजी जिला आगर से ये पत्र हमें लिखा है रघुनाथ मालवीय, रीना मालवीय, सुषमा, दुर्गा, परी, मधुबाला, मिलन और इनके परिवार वाले। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या, करिश्मा कामले। बिलसराय से रामकेश चक्रवर्ती, पुष्पेंद्र, सोनम, गोल्डी, दीप्ति, अनुज और ओमजी चक्रवर्ती ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। विजयनगर छतरपुर से ये पत्र में लिखा है वसीम अहमद खान, शबनम खान, शाहिद खान, अरमान खान, जुनेद खान, अलीशान खान, आरजू परवीन, इन्होंने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। रामगंज खंडवा से ये पत्र में लिखा है विजय महोबिया, संजय, कविता, विशाल, विवेक, सपना, शिवी, सलोनी, राजू और पेंटर बाबू। तुलजा भवानी माता बाड़ खंडवा से अनिल विंचुरकर, मंगला शोभित विंचुरकर। उदयनगर से मोहित रत्न पारखी, स्वाति मिस्टी, मनस्वी रत्न पारखी, इन्होंने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। ग्राम गौना कुसमान थाना सोंजना तहसील महरौनी जिला ललितपुर से ये पत्र लिखा है कैलाश नारायण नामदेव, दीपक कुमार, द्रौपदी देवी, राम देवी, ब्रजेश देवी, अखिल

देवी लखनलाल, चाहना आकाश रानी देवी और परी नामदेव, सुखी नामदेव। बनौसा दरियापुर जिला अमरावती से ये पत्र हमें लिखा है यश चौहान, अंश, संदीप, माधवी और इनके परिवार वाले। ग्राम गुना वार्ड नंबर 15 जिला टीकमगढ़ से राजा राम अहिरवार, राधेलाल अहिरवार, शारदा, दीपा, बेनीबाई, सीमा, निशु और प्रवीण अहिरवार। कुछ ईमेल भी इसी गीत को सुनने के लिए आए हुए हैं। ये ईमेल आया है हनुमानगढ़ राजस्थान से, लिखने वाले श्रोता हैं रज्जाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, जीसान खान, रोहेज चौक पंडरपुर सिटी से प्रशांत सिंधे, सुनीता सिंधे, यशराज सिंधे, ऋषि सिंधे और कृष्णा घोटके। तो लीजिए इन सबकी पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत जो हमने लिया है वंश फिल्म से।

इसी गीत के साथ मन भवन कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए अपने मित्र कुलदीप खरे को। नमस्कार। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। समाचार कुछ ही समय में हम दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय

0: विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैश्रम ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
2: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धरमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।